印度的李光不电台明天给曲播送完了，听众朋友们，下面我们播送一篇

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और

0: प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह

0: जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसद

0: के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट कन्वीन्स ऑल पार्टी मीटिंग टुडे अहेड ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिनिंग टुमारो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉर्न्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट सबमिटिंग फेक और AI जेनरेटेड OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency NTA has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
2: The Central Board of Secondary Education, CBSE,

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया ममुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट्स जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्राएं आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे मकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों का तआवुन चाहेगी। मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा, जो अगले माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा। दस्तावेजात में रद्दोबदल से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने सख्त तंबीह जारी करते हुए तलबा और वालिदैन को जांच पड़ताल के लिए ओएमआर शीट्स जमा कराने के बारे में एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में नजरसानी के लिए जमा कराई ओएमआर शीट्स जाली या मस्नूई जहानत से तैयार करदा पाई गई हैं, जिसके बायस तमाम शिकायत की मजीद सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं क्लास के दूसरे बोर्ड इम्तहानात 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतायज डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर URL results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। कौमी तालीमी इस पॉलिसी की सिफारिशात से हम आहंगी करते हुए सीबीएसई ने इस साल से 10वीं क्लास के दो बोर्ड इम्तहान शुरू किए थे। मेन बोर्ड इम्तहान 17 फरवरी से 11 मार्च और दूसरा बोर्ड इम्तहान 15 मई से 21 जुलाई तक मुनक़िद किया गया था। सीबीएसई के मुताबिक मेन और दूसरे बोर्ड इम्तहान के मजमूई पास फीसद को जोड़कर इस साल नतायज 96

4.78% रहे। CBSE के मुताबिक बैरून मुल्क तलबा भी अपने नतज डिजी लॉकर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से आज खराब मौसम की पेशगोई के पेश नज़र एहतियात के तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की पेशगोई की वजह से मुसाफिरों की सलामती और तहफ्फुज़ को तवज्जो में

0: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भारत के महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई खराब मौसम से मुतालिक एडवाइजरी के पेश नज़र वैष्णो देवी यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। श्राइन बोर्ड की तरफ से सरकारी तौर पर जारी की गई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। अकीदतमंदों को मशवरा दिया गया है कि वो तहम्मुल से काम लें और श्राइन बोर्ड के सरकारी मवासलाती चैनलों के जरिए जारी की गई मालूमात को अपनाएं। हुक्काम लगातार मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और यात्रा उसी वक्त फिर से शुरू होगी जब ये समझा जाएगा कि यात्रियों के लिए यात्रा पूरी तरह महफूज है। महकमा मौसमियात ने हसास इलाकों में अचानक सैलाब, मिट्टी के तोदे खिसकने और पानी जमा होने के इम्कान के साथ जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों में फिर से शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। इंतज़ामिया ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें और आबी इदारों से दूर रहें। वैष्णो देवी यात्रा ने इस साल एक अहम संग मील हासिल कर लिया है क्योंकि मुकदस गुफा के दर्शन करने के लिए यात्रियों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा पार कर गई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज़ बारिश के सबब रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के बहुत से हिस्सों में मुसलसल बारिश दर्ज की जा रही है जिसकी वजह से बड़ी नदियों की आबी सतह बढ़ती जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में आज बहुत तेज़ बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ज़िलों में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुतअद्दिद ज़िलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो हसास मकामात की सख्ती से निगरानी करें और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को दिन रात फ़ाल रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि राहत और बचाव टीमें बर वक्त तैयार रहें। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो तोदे खिसकने के ज़्यादा खदशात वाले रास्तों पर मशीनरी और दीगर ज़रूरी वसाइल को तैयार हालात में रखें। वहीं आफात से निमटने के रियासती सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने रिहायशियों, चारधाम यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हिमाचल प्रदेश में जुनूब मगरबी मानसून के सरगर्म रहने के साथ ही रियासत के बेशतर हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला के मौसमियात के मरकज ने मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश के मद्देनजर 21 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे, उड़ीसा और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली में IMD ने बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बारिश की पेशगोई की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जंजीबार के सदर और इनकलाबी कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मिनयी, जो भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा भारत तंजानिया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे और मुस्तकबिल में तआवुन के नए मौके तलाश करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी आज दौरे पर आए मेहमान से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी जुनूब में भारत और तंजानिया के दरमियान बहुत से शोबों में करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अमरीकी फ़ौज ने उर्दुन में एक हमले के लिए पासदारा ने इनकलाब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फजाई हमले किए हैं। पासदारा ने इनकलाब के हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी अहलकार हलाक, 1 लापता और 4 फौजी जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कम करने के लिए किए गए ताकि आबनाए हुरमुज के रास्ते तेल से लदे जहाज़ों की आमद रफ्त को रोका जा सके। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए सफ़र के सिलसिले में एहतियात बरतने की गरज से एडवाइजरी जारी की है। उसने खित्ते में अमरीका और ईरान की तरफ से जारी फौजी कार्रवाइयों के पेश नज़र बढ़ती हुई

0: हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना तआवुन दे सकें और ज़रिया मौश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तिहानात से मुताल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर
3: आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, शब्द जब संवेदनाओं की भट्टी में तपकर निकलते हैं तो वे केवल साहित्य नहीं बनते बल्कि समाज को रास्ता दिखाने वाली मशाल बन जाते हैं। हिंदी साहित्य के आकाश में विष्णु प्रभाकर एक ऐसा ही दैदित्यमान नक्षत्र है जिनकी लेखनी ने लगभग 8 दशकों तक भारतीय समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को बेहद करीब से छुआ और सवारा। वास्तव में विष्णु जी का साहित्य केवल शब्दों का ताना बाना नहीं बल्कि वह जीवन का एक मुकम्मल दर्शन है। उनकी हर रचना के केंद्र में मनुष्य और उसकी करुणा सबसे ऊपर रही। आइए सुनते हैं परिचर्चा विष्णु प्रभाकर एक समग्र दृष्टि। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर वेद मित्र।
4: हिंदी साहित्य में विष्णु प्रभाकर जी का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। वे कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, जीवनीकार, संस्मरणकार, बाल साहित्यकार और चिंतक सभी रूपों में समान रूप से प्रतिष्ठित हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना, सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीय चेतना और जीवन मूल्यों के प्रति गहरा विश्वास दिखाई देता है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा जैसी कालजयी जीवनी, सत्ता के आर पार नाटक और सबसे चर्चित कहानी धरती अब भी घूम रही है उनकी रचनात्मक ऊंचाइयों के प्रमाण हैं। आज हमारे सामने 3 विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। आदरणीय अतुल प्रभाकर जी, जो विष्णु प्रभाकर जी के पुत्र हैं, उनके अत्यंत निकट रहे हैं और उनके व्यक्तित्व के अनेक अनदेखे पक्षों से परिचित हैं। आप विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के संस्थापक सचिव हैं, साथ ही कहानीकार हैं और साहित्य की अन्य विधाओं में सक्रिय हैं। दूसरे हमारे अतिथि हैं वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर क्षमा शर्मा जी, जो कि नंदन पत्रिका की संपादक रह चुकी हैं और अभी अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप स्तंभ लेखन कर रही हैं, साथ ही कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक व संपादक कथाकार बलराम जी हैं, जो साहित्य अकादमी की महत्वपूर्ण पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक हैं और अनेक पुस्तकों के लेखक हैं। आप अनेक संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
5: नमस्कार।
4: आज इस चर्चा की शुरुआत मैं अतुल जी से करना चाहूँगा। अतुल जी, आपका स्वागत है। आपने विष्णु प्रभाकर जी को एक महान साहित्यकार के साथ साथ एक पिता, एक मार्गदर्शक और एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में निकट से देखा है। उनकी लेखन प्रक्रिया कैसी थी? क्या वे निश्चित समय पर लिखते थे? और सबसे बड़ी बात जो हम आपसे जान सकते हैं, क्या परिवार भी उनके लेखन अनुशासन का हिस्सा बन जाता था?
5: जी, निश्चित तौर पे परिवार उनका एक अपना साहित्यिक परिवार भी था। उनका जो विकास हुआ उसके पीछे कुछ कहानियां हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको पुरानी बातें बताना चाहूँगा कि उनके पिता जो थे वो थे कर्मकांडी सनातनी और उनकी माता जी खुले विचारों की थी। और फिर जब वो हिसार गए तो वो

0: समाज से जुड़ गए, और साथ साथ उस समय गांधी का बहुत प्रचार था, तो सनातन आर्य समाज, गांधी और उसके साथ साथ उनको पढ़ने का शौक था। जो पुराने लेखकों की कहानियां और सबकी रचनाएं पढ़ते थे, तो उन सब का जो विचार उनके मन में पहुंचे, उसने उनको स्थापित किया उनके मन के अंदर कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। उनकी जो विचारधारा थी, उस चीज ने उसको विकसित किया, और इससे उन्होंने एक अपने लिए एक अनुशासन अपने लिए स्वयं का गढ़ा, और उसी अनुशासन से वो पूरे जीवन में जिए। आप सब लोग मिले हैं उनसे, और जो उन्होंने देखा, उनका जो आपका व्यक्तित्व है उनका था, वो उसी अपने स्वयं के अनुशासन से बना हुआ था, किसी का आरोपित अनुशासन नहीं था, और उसी को लेके वो सारे जीवन चले। उसी से उन्होंने अपने परिवार को भी साथ में जोड़ा, और परिवार जुड़ा तो जो साहित्य जो रचते थे, तो पूरे परिवार में एक साहित्यिक धारा थोड़ी थोड़ी चलती रही। और साथ में जो एक उनके अंदर बहुत बड़ा गुण और था दूसरा, वो भावुक बहुत थे। किसी को चोट लग गई तो वो स्वयं चक्कर खा जाते, और छोटी सी बात पे किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम मन पे लग जाती थी वो भावुकता जो थी, और किसी ने कुछ अपनी व्यथा कही तो एकदम उसकी बात मान लेते थे। ये नहीं कि उसको सोचे कि क्या उसने कहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बिना सोचे से भी उसकी बात मान लेते थे। तो वो जब वो सारी चीज़ें थी, उसी से उनका सारा जो ये विकास, सब चीज़ें जो उनके अंदर गढ़ी गई, वो उसी से बनी हैं। जैसे वो कहते भी थे कि अविश्वास करके पछताने से ज़्यादा अच्छा है विश्वास करके ठगे जाओ। आपने विश्वास किया, उसने ठग लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने विश्वास करके बाद में पछताओ कि हम ये नहीं कर पाए, ये एक उनका एक मोटो बन गया था, उसी के तरह से वो चलते थे। अब लेखन प्रक्रिया में ये है कि वो जैसे हिसार में रहे, तो हिसार में जो आर्य समाज के साथ जुड़े, तो आर्य समाज की गोष्ठियों में जाते थे, और वहाँ उनको उनके मामा ने प्रेरित किया कि आप यहाँ भाषण दो, और उसमें वो हर रविवार को जो गोष्ठी होती थी उसमें हर रविवार को भाषण देते थे और लिख के ले जाते थे पूरा, और उसी आर्य समाज पद्धति से उसकी सारी धाराओं को समझ के उससे लिख के ले जाते थे। तो वो वहाँ से उनका उस तरह से जो लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी, वो उससे बढ़ी। और जैसा उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा भी है कि कहानियाँ जब पढ़ते थे लोगों की, औरों की रचनाएँ पढ़ते थे, तो वो कभी कभी कहते थे, मैं सोचता था कि जैसे इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया कहानी लिखी, क्या मैं भी कभी लिख सकता हूँ। तो वो जो मन में विचार आता था, उस सब से उनकी लेखन प्रक्रिया बनी, और 1931 में उनकी पहली कहानी मिलाप में छपी। लेकिन उसके 3-4 साल 34 तक कोई कहानी नहीं लिखी गई, कुछ नहीं लिखा गया। 34 में फिर कहानी लिखनी शुरू की, 34 में 4 कहानियाँ लिखी, फिर तो धीरे धीरे सिलसिला चलने लगा। फिर जैसे और संपादक लोग मिलते गए, सब लोग जुड़ते गए, क्योंकि उनको फिर घूमने का भी बहुत शौक था, सबसे मिलने जाने का, जहाँ भी अवसर मिलता था पहुँच जाते थे घूमने और बातचीत करते रहते थे। ये शुरुआत की बात है, बाद में तो धीरे धीरे फिर अपना विकास और बहुत तरह से होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है, तो ये एक प्रक्रिया रही है मोटे तौर।
1: निश्चित रूप से मैं मेरा समय और रचना प्रक्रिया करके वो एक इस शीर्षक से उन्होंने जो संस्मरण लिखा है, उस संस्मरण में वो चर्चा करते हैं किस प्रकार से यात्राएं उनके साहित्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं। जो आपने आत्मीय पक्ष बताया कि वह भाषण आर्य समाज की सभाओं में देते थे, लिख कर ले जाते थे, और फिर उनका साहित्य आगे बढ़ता गया और वो आगे लिखते गए। हम सब आवारा मसीहा के उस श्रम साध्य लेखन प्रक्रिया से परिचित हैं, जो ध्यान में आया 14 वर्षों का श्रम साध्य कार्य उनका, और उसके बाद आवारा मसीहा हम सबके सामने आई एक विशेष रूप में, एक जीवनी के रूप में। आज आवारा मसीहा को 50 वर्ष हो रहे हैं। विभिन्न साहित्यिक संस्थाएं आवारा मसीहा को लेकर के अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसी कालजयी जीवनी हम सबके साथ है। आदरणीय अतुल जी के माध्यम से हमें उनके आत्मीय पक्ष की जानकारी तो हुई, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ लेखिका क्षमा शर्मा जी हैं, जिन्होंने उनके साहित्य को पढ़ा और समझा ही नहीं, बल्कि एक संपादक के तौर पर उनके साहित्य से गुजरी हैं। उन पर आपने काफी कुछ लिखा है। मैं आवारा मसीहा के संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि आप कैसे उस जीवनी को समझते हैं, पढ़ते हैं, और आपकी क्या राय है उस पर?
2: शुक्रिया शुक्ल जी, और मैं अतुल जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, और ये बात बहुत जैसे दिल को छू गई कि अविश्वास करने से बेहतर है कि विश्वास करके ठगा जाना। ये दरअसल जो प्रभाकर जी का गांधीवादी सोच है, और गांधीवाद के साथ एक मानवतावादी सोच है, प्रगतिशील विचार भी है। उस समय जब वो थे, जब मैं उनसे मिली थी, तो वो समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो 1975 में UN ने शुरू किया, कहा कि ये है, तो उसके

0: बाद में मिली हूँ उनसे। और एक तरीके से हमारे देश को ये मान लिया गया ना कि यहाँ महिलाओं के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो हिंदी के कथाकार हैं उनकी रचनाओं का अनुवाद नहीं होता, तो विदेश में पता ही नहीं चलता कि हिंदी में भी क्या क्या लिखा जाता है स्त्रियों के बारे में। महादेवी ने क्या लिखा है या प्रभाकर जी, कुल उनकी रचनाओं का जो सोच है उसमें स्त्री स्वर प्रमुख है। और वो ये जब मैं उनसे पहली बार मिलने गई थी तो जो एक बचपना होता है ना मेरे अंदर बहुत था, मेरी उम्र बहुत कम थी, और मैं उनसे मॉनसून प्लेस में मिलने गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपके लेखन में या आपके जीवन में किन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया, तो उन्होंने कहा मेरी माँ और मेरी पत्नी। आम तौर पे उस पीढ़ी के लोग पत्नी को कोई श्रेय नहीं देते थे, पत्नी को भी उन्होंने श्रेय दिया। और जो उनकी माँ, उनका कहना था कि वो भी पढ़ी लिखी थी, तो इसमें मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस वक्त, क्योंकि माना जाता था कि स्त्रियां पढ़ती नहीं है, हमारे यहाँ तो स्त्रियों की शिक्षा का कोई महत्व नहीं। जब ये आया हमारा मसीहा, तो शरद चंद्र की मैं बहुत बचपन से बड़ी फैन जैसे कहते हैं, उनके लगभग सभी उपन्यास मैंने पढ़े हैं, तो मैं उनसे मिलने गई और हमारा मसीहा की प्रति भी ले गई साथ में। हमारे संपादक जी उनके पास भेज देते थे कि जाओ उनसे कहानी सुनकर आओ, फिर मैं लिख के ले जाती थी, फिर वो उसको करेक्ट करते थे या फिर खुद ही लिख देते थे, तो ऐसे करते थे। तो उन्होंने उस पर सिग्नेचर करके दिए मुझे, और मेरा दुर्भाग्य है कि वो जो प्रति थी वो किन्हीं ने पढ़ने के लिए मांगी और मुझे कभी नहीं लौटाई। तो हिंदी साहित्य में ये भी होता है
1: जी।
0: कि वो वापस नहीं मिली। और शरद चंद्र के बारे में जिस तरह से उन्होंने लिखा, 14 वर्ष का समय, और कब शरद चंद्र हुए, कब उन्होंने लिखना शुरू किया प्रभाकर जी ने, और हर जगह घूमना, हर जगह उनके पात्रों की खोज कि वो कहाँ से आए कैसे रहे। और जैसे कि शरद का है स्त्री स्वर प्रमुख है, उनकी रचनाओं में स्त्रियों के प्रति जो एक मानवीय संवेदना है वही प्रभाकर जी की रचनाओं में मिलती है। वो बार बार एक ही शब्द बोलते थे शरद जी के बारे में, अपराजेय कथा शिल्पी।
1: जी
0: और उन्होंने एक तरीके से जिसको इंट्रोड्यूस करना कहते हैं ना, शरद को इंट्रोड्यूस किया हिंदी में। हम जैसे लोग जो पहले से पढ़ते आए थे, मुझे लगा कि आवारा मसीहा पढ़ के और बहुत से लोगों ने शरद को पढ़ा होगा, ऐसा महसूस होता है।
1: आज का युवा पाठक अगर विष्णु प्रभाकर जी को पढ़ना शुरू करे तो कौन सी पुस्तक आप बताओगे कि पढ़ना चाहिए सबसे पहले?
0: मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पे आवारा मसीहा ही पढ़ना चाहिए। उसमें अनेक तरह के शेड्स हैं, अनेक तरह के रंग आपको मिलेंगे, और उनकी आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए।
1: जी
0: आज जब स्त्री स्वर बहुत प्रमुखता से है और सारी सरकारें, सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसी तरफ ध्यान दे रही हैं, अपने देश में भी तरह तरह से बातें हैं, तरह तरह का साहित्य है, बहुत बड़ी संख्या में रचना कर रही हैं। आज के बच्चों के तो वो दादा से भी बड़े उम्र के हैं, उन्होंने उस समय स्त्रियों के बारे में क्या लिखा, उन्हें कितनी संवेदनशीलता से देखा। उनका कहना ये था कि भाई हमारे समाज में लाभ के सारे स्रोत पुरुषों के लिए हैं और स्त्री की भूमिका पुरुष स्वामी और वो सेविका। तो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स तो बाद में कह रहा है, उन्होंने कब कहा ये,
1: जी
0: तो इसलिए रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो कब कह रहा है, उन्होंने कब कहा, तो उस नजरिए से भी प्रभाकर जी को देखा जाना चाहिए कि वो कितने प्रमुखता से, वो गांधीवादी हैं, वो प्रगतिशील हैं, वो राष्ट्रीय चेतना से भी भरपूर हैं, लेकिन स्त्रियां उनके लिए प्रमुख हैं।
1: आप कह रही हैं जो उनके साहित्य में स्त्री की उपस्थिति है, जो उनका दृष्टिकोण
0: उनको
1: है,
0: नहीं, उनकी अपनी भावनाएं भी,
1: अपनी भावनाएं हैं,
0: और मुझे लगता है कि जैसे वो शरद के साथ एकम एक हो गए,
2: एकाकार हो गए।
0: एकम एक,
1: जी आप उनको अपने समय से आगे के दृष्टिकोण।
0: बहुत बहुत
1: जी
0: आगे,
1: जी
0: बहुत आगे। और मैं तो जब जाती थी तो वो मुझे, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत कम थी जब मैं उनसे मिलने जाती थी, 20-21 साल की रही होंगी मैं, बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल गया था, मैंने अपनी सारी पढ़ाई भी जॉब के दौरान की, तो वो बिल्कुल मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। ये जान के कि मैं कहानियां भी लिखती हूँ तो बड़े खुश होते थे। आमतौर पर कहा जाता है कि लेखकों में बड़ा अहंकार होता है, लेखक नए लोगों को ज्यादा सहयोग नहीं देते, लेकिन वो इतने वरिष्ठ लेखक जिनके सामने हम कुछ नहीं थे, मामूली सी एक लड़की ना, लेकिन उनके सामने जाके मैं भी फिर वैसी ही हो जाती थी, उतनी शरारती। और वो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान आती हैं, और अफसोस है कि मोबाइल का दौर नहीं था, नहीं पता नहीं कितनी तस्वीरें खींची होती।
1: जी निश्चित रूप से उनके साहित्य की वैचारिक शक्ति और मानवीय दृष्टि को अत्यंत सुंदर ढंग से आपने हमारे सामने रखा। हमारे साथ बलराम जी हैं, हिंदी कथा साहित्य के गंभीर अध्येता हैं आप, समालोचक और संपादक होने के नाते

0: नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदी कहानी के इतिहास में विष्णु प्रभाकर जी को आप किस तरीके से देखते हैं।
1: देखिए, हम लोगों ने पहली बार ये जाना कि हिंदी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है। विष्णु प्रभाकर वो पहले कहानीकार हैं जिनको कहानी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार धरती अब भी घूम रही है। हमने बचपन में उनकी कहानी, छोटे थे पढ़ी कहानी, तो हमने कथाकार के रूप में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कथाकार मान के पढ़ना शुरू किया। और एक बार कानपुर में थे, मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि हम चाहते हैं आप कानपुर आएं। वो कानपुर गए। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, दो बड़े लेखक थे कामतानाथ और गिरिराज किशोर। वहाँ मोती झील एक जगह, सबसे अच्छी जगह, कनॉट प्लेस की तरह सुंदर जगह है, हरी भरी, बुलाया वहाँ गोष्ठी की, तो दोनों ही बड़े कथाकार नहीं आए, न गिरिराज किशोर आए न कामतानाथ आए। राजेंद्र राव तो आए और हम सारे नए लोग आए। तो मैंने उनसे पूछा, आप इतने बड़े हैं, दिल्ली से आए हैं और कानपुर के लेवल के दो बड़े आदमी, आप तो राष्ट्रीय करेक्टर हैं, तो लोकल उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आपके सम्मान में हमने किया, आए क्यों नहीं? उनका, बलराम जी अभी आप बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे, ये साहित्यिक राजनीति है। आप किसी एक को बुलाते, कामतानाथ को बुलाते तो आ जाते, गिरिराज को बुलाते तो वो आ जाते, आपने दोनों को बुला के गलती कर ली। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि इसको जीवन में और लेखन में ध्यान रखना, तुम संपादन में जाओगे, संपादक था मैं उस समय दैनिक आज में, तो ध्यान करना कि मध्य में खड़े होना, ये लोग आए ना आए, तुम दृढ़ता के साथ बीच में खड़े रहना। आपने हमें बुलाया, उन दोनों को बुलाया, वो नहीं आए, उनकी मर्जी।
0: निश्चित रूप से एक साहित्यकार के तौर पे सामाजिक, राजनैतिक और अन्य आयामों से एक साहित्यकार को परिचित होना चाहिए और वो सजग थे इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन इन सबसे बढ़ करके जो उनमें बात थी, मैं उनकी एक कविता के माध्यम से यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा। पाल ने भले ही दम्भ हुआ जीतने का पृथ्वी को, पाल ने भले ही दम्भ हुआ जीतने का पृथ्वी को, आकाश को, दिगंत को, पर वह मनुष्य है, मनुष्य ही रहेगा, यही उसकी जीत है, यही उसकी हार है, और इसी हार की जीत का नाम है मनुष्य। विष्णु प्रभाकर जी मानते थे कि साहित्यकार केवल अभिव्यक्ति के लिए ही साहित्य नहीं लिख पढ़ रहा है, बल्कि मनुष्यता को और आगे ले जाने के लिए एक साहित्य की कसौटी पर एक साहित्यकार को खड़े उतरना है। हमारे साथ अतुल जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी की डायरी पर आपका विशेष अध्ययन रहा है, मैंने जो संस्मरण पढ़े उसमें आपने उनकी डायरी पर और उनकी डायरी में क्या लिखा गया है इस प्रकार से बहुत सी बातें की है। एक स्वाभिमानी साहित्यकार थे वो, और किस प्रकार से महात्मा गांधी सहित अन्य महापुरुषों को वो अपने जीवन में उतार रहे थे, ये सब आपने चर्चा की है। आप उनके साहित्य में और उनके लेखकीय जीवन में कैसे इन दोनों बातों की समानता पाते थे?
2: देखिए, राजनीति और साहित्य में जो था कि उनके साहित्य में आपको राजनीति कहीं नहीं मिलेगी, कहानियों में, उपन्यास में कहीं राजनीति नहीं मिलेगी, उनके संस्मरण में, उनके बातचीत में, उनके इंटरव्यूज़ में आपको राजनीति खूब मिलेगी। वो राजनीति को और साहित्य को बिल्कुल अलग रखते थे, कभी उन्होंने मिलाने की कोशिश नहीं की। वो कहते थे कि साहित्य अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, हमें साहित्य करना है तो हम साहित्य करेंगे, राजनीति करनी तो राजनीति करेंगे। उनका आप कभी भी पूरा साहित्य पढ़ के देख लीजिए, आपको उसमें कहीं राजनीति नहीं मिलेगी। जो कहानियों में थोड़ी बहुत आती है राजनीति की बातें आएंगी, वो ज़रूर होंगी, लेकिन देश की राजनीति कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कौन प्रधानमंत्री किस तरह का है, क्या है, ये सब साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे, उसमें ज़रूर मिलेगा, उसमें खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो ये उनका एक अपना सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अनुसार वो हमेशा रहे, उस पर अडिग रहे हमेशा, और उसको उन्होंने हमेशा निभाया। और साहित्य में वो यही लेके चलते थे कि मनुष्य को हम लेके चलेंगे। मुझे साहित्य में अपने सिर्फ मनुष्य को रखना है,
0: मनुष्यता। जी,
2: मनुष्य राजनीति से बहुत परे है, वो राजनीति में कभी खप ही नहीं सकता, तो वो सिर्फ मनुष्य को लेके वो चलते थे साहित्य में। और जो भी पूरा साहित्य है उसमें आपको मनुष्य ही मिलेगा, आपका समाज मिलेगा, सामाजिक दृष्टिकोण मिलेगा, समाज की बातें मिलेंगी, और उसका मनुष्य का कैसा व्यवहार होता था, क्या उसका आचरण रहता था, वो उसमें।
0: निश्चित रूप से साहित्य में कैसे हम मनुष्यता को आगे ले जा सकते हैं, यह हमारा लक्ष्य होता है। आप सभी से एक साझा प्रश्न रखना चाहूँगा। विष्णु प्रभाकर जी की साहित्यिक विरासत को अगर हम संक्षेप में व्यक्त करना चाहें तो कैसे उनकी साहित्यिक विरासत को समझा जा सकता है, और हम उस थाती को कैसे संजो

0: और सहेज सकते हैं।
1: कथाकार बहुत बड़े थे, उपन्यासकार बहुत बड़े थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको उपन्यास पर ही मिला, लेकिन हमने अक्सर बहुत बार लिखा कि उनकी डिजर्विंग कृति साहित्य अकेडमी के लिए आवारा मसीह आई थी, उस पर उन्हें मिलना चाहिए था। अज्ञे को जो उनकी कृति शेखर एक जीवनी पर मिलना चाहिए था। हरिवंश राय बच्चन के साथ भी न्याय नहीं किया, तो बहुत सारे लेखकों के साथ साहित्य अकेडमी ने उस काल में न्याय नहीं हुआ। विष्णु जी ने हिंदी में सबसे बड़ा काम जो किया वो शरद को उनकी जीवनी देके एक बड़े बड़ी कृति उन्होंने हिंदी को दी। दूसरा काम, हिंदी लघु कथा को उन्होंने साहित्य में स्थापित किया, उसको विधा का दर्जा नहीं मिला था। विष्णु प्रभाकर ने लघु कथा को हिंदी में स्थापित किया और संभवतः उनके कई लघु कथा संग्रह आए, उनकी तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये दो लोग थे, एक रावी थे आगरा में, तो ये दो तीन लोग थे जिन्होंने लघु कथाएं लिखी। इनके लघु कथा संग्रह सबसे पहले छपे। एक और मध्य प्रदेश के एक आनंद मोहन अवस्थी, उनका संग्रह 1948 में संभवतः परसाई जी ने उसकी भूमिका लिखी। तो ये लोग विष्णु प्रभाकर और इन लोगों ने हिंदी लघु कथा की आधारशिला रखी। इतिहास में उनका नाम आरंभिक लोगों में लिखा जाएगा।
0: सच है, उन्होंने न केवल एक कथाकार के तौर पे यात्रा वृतांत ही नहीं, बल्कि बाल साहित्य में, आपने जैसे चर्चा की लघु कथा में भी, आपने ये भी चर्चा की कि अर्धनारीश्वर जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या फिर आवारा मसीहा कौन। अब इसमें साहित्यिक विरासत की जब बात आती है तो निश्चित रूप से एक चिंतन करने योग्य विषय है। मैं बात करना चाहूंगा इसी विषय पर आदरणीय डॉक्टर क्षमा शर्मा जी से।
2: बलराम जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और कल जब मैं अपने पति डॉक्टर सुधीश पचौरे जी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया जो मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने कहा कि जो बलराम जी कह रहे हैं कि आवारा मसीहा पर नहीं पुरस्कार मिला, तो उन्होंने बताया कि इससे लेखकों में बहुत नाराजगी पैदा हुई कि उनको आवारा मसीहा पर मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। तो लेखकों ने क्या किया कि फंड्स इकट्ठे किए, और साहित्य अकादमी जितने पैसे का पुरस्कार देती थी वो इकट्ठा किया, और वो बता रहे थे कि यहीं कहीं एनडीएमसी भवन के पास एक पूरा समारोह किया
1: जी जी।
2: और उसमें उनको सम्मानित
1: हाँ,
2: किया।
1: मैंने भी सुना है,
2: तो ये बात मुझे तो पता ही नहीं थी, क्योंकि वो फंड रेजर करने वालों में खुद भी थे। और एक उन्होंने मुझे बताया जो मुझे पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इवनिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, जाकिर हुसैन कॉलेज में, वो जा रहे होते थे कॉलेज, और प्रभाकर जी अपने घर से पैदल पैदल यहाँ टी हाउस या मॉनसिंग प्लेस में हमेशा आते थे पैदल चलना। तो सबसे बड़ा गांधी बात तो यही है, गांधी जी पैदल चलते थे तो वो भी पैदल चलते थे
0: जी।
2: और ये कितनी बड़ी बात है कि पैदल चलना चाहता है आदमी, अपने शरीर के लिए भी और अपने को जमीन से जुड़ा होने के लिए भी। तो वास्तविक रूप में वो जमीन से जुड़े साहित्यकार थे, और आवारा मसीहा को नहीं मिला तो लेखकों की भावना देखिए ना कि लेखकों ने कहा कि क्यों नहीं मिला, हम साहित्य अकादमी को जवाब देंगे।
1: जी जी, लेखकों ने जवाब दिया,
3: पाब्लो नेरुदा सम्मान लेखकों ने मिलके समारोह किया था, उसमें उनको दिया था।
0: जी जी, आवारा मसीहा का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है
1: जी,
0: हो रहा है अभी भी, विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आवारा मसीहा जो भारतीय जीवनियां लिखी गई हैं भारत में, उनमें सबसे अग्रणीय पंक्ति में सबसे अच्छी मानी जाती है, अग्रणीय पंक्ति में शामिल है।
1: बांग्ला भाषा के लोगों ने कहा कि वो बांग्ला भाषी राइटर हैं, लेकिन ऐसी जीवनी किसी बांग्ला भाषी ने उन पर नहीं लिखी जो विष्णु प्रभाकर ने लिखी।
2: जानते नहीं है
1: हाँ,
2: शरद जी
1: बहुत सारे जानते नहीं कि क्या है, तो उन्होंने हिंदी को ही नहीं बंगाल वाले लोगों को बताया कि ये आवारा मसीहा ये है तुम्हारा लेखक, इतना बड़ा था, और पूरे देश को बताया। और आपने जैसा कहा कि पूरी दुनिया में आवारा मसीहा का अनुवाद हुआ, विदेशों में भी वो किताब गई, बहुत महत्वपूर्ण किताब है।
0: आज की चर्चा ने हमें यह अनुभव कराया कि विष्णु प्रभाकर केवल एक साहित्यकार नहीं थे, वे भारतीय जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य है, मानवता है, संघर्ष है, आशा है, करुणा है, और सबसे बढ़कर मनुष्य के प्रति अटूट विश्वास है। उनकी साहित्य साधना हमें यह सिखाती है कि साहित्य केवल शब्दों का विन्यास नहीं, बल्कि समाज की नैतिक चेतना का निर्माण भी है। आज के इस सार्थक संवाद के लिए हमारे सभी सम्मानित अतिथियों श्री अतुल प्रभाकर जी, डॉक्टर क्षमा शर्मा जी और श्री बलराम जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।
4: नमस्कार। विष्णु प्रभाकर एक समग्र दृष्टि, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे विष्णु प्रभाकर।

0: के सुपुत्र श्री अतुल प्रभाकर, वरिष्ठ कथाकार श्री बलराम, वरिष्ठ कथाकार डॉ. शमा शर्मा, युवा साहित्यकार डॉ. वेद मित्र शुक्ल। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉ. वेद मित्र। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश वत्स।
1: उमस भरी गर्मी बेशक लोगों को परेशान करती हो, लेकिन साहित्यिक गतिविधियां, कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठी के आयोजन थमने का नाम नहीं लेते, क्योंकि साहित्यिक गतिविधियों की गर्माहट के समक्ष गर्मी की उमस बौनी नजर आती है। 11 जुलाई 2026 को ऐवाने गालिब माता सुंदरी रोड आईटीओ के सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अंतर्राष्ट्रीय शायर आजम दादा गुरु डॉक्टर गुलजार दहलवी, डॉक्टर पंडित आनंद मोहन जोशी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में डॉक्टर गुलजार दहलवी सत्साला जश्न कमेटी की ओर से आयोजन किया गया, जिसका संयोजन कमेटी के अध्यक्ष जनाब हसन जिया समाजसेवी एवं महासचिव जनाब शेख अलीमुद्दीन ने संयुक्त रूप से किया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सहपर रसूल साहब, पूर्व अध्यक्ष उर्दू अकेडमी दिल्ली, विशिष्ट अतिथि के रूप में देश के मशहूर शायर जनाब अफजल मंगरौली, एजाज मकबूल वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, अति गण्य मान्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय गीतकार गजलकार एवं सिने कलाकार डॉक्टर अशोक मधुप, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण सागर एडिशनल कमिश्नर GST बांदा तथा हसीम दैलवी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शायर जावेद नियाजी की नात से हुआ। इस मौके पर डॉक्टर गुलजार दहलवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जनाब शेख अलीमुद्दीन असदी द्वारा संपादित प्रकाशित पुस्तकों का मेहमानों द्वारा इजरा किया गया, जिसमें डॉक्टर गुलजार दहलवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर तमाम अदबी विद्वानों के लेख संस्मरण, गुलजार की गजलें नज़में रुबाइयां आदि संकलित थी। रुड़की उत्तराखंड के मशहूर शायर अफजल मंगलौरी द्वारा डॉक्टर गुलजार दहलवी की खिराजे अकीदत पेश करते हुए उन पर लिखी गजल का खूबसूरत अंदाज में सहस्वर पाठ किया। कायाकल्प साहित्य कला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मधुप ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में डॉक्टर वसीम राशिद, डॉक्टर वकार मानवी, फरीद अहमद फरीद, इकबाल फिरदौसी, जावेद अब्बासी, पवन कुमार तोमर ने अपने अपने अंदाज में गुलजार साहब को खिराजे अकीदत पेश की। 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा वरिष्ठ कवित्री सुश्री सरोज शर्मा की पुस्तक में अभिव्यंजना काव्य संग्रह का लोकार्पण, परिचर्चा एवं सम्मान समारोह का आयोजन अकादमी रोहिणी स्थित सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले, कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, श्री सुधाकर पाठक तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में सुश्री ममता किरण, डॉक्टर आरती लोकेश एवं डॉक्टर सविता चड्ढा की गर्मयमयी उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के सम्मान के बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से समारंभ किया गया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने कहा कि सरोज शर्मा जमीन से जुड़ी हुई एक संवेदनशील कवित्री हैं। उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली नगर निगम में सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और सेवानिवृत्त के बाद वे पूर्ण रूप से साहित्यिक साधना में संलग्न है। साथ ही वे हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार ममता किरण ने कहा कि भले ही यह सरोज जी की पहली पुस्तक है, किंतु वे लंबे समय से साहित्यिक कार्यक्रमों में सक्रिय रही हैं। आज जब डिजिटल युग में लोग रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और कुछ लाइक्स व्यूज पाकर वायरल हो रहे हैं, ऐसे समय में धीमी गति से अपने मनोभावों को लिखना और पुस्तक के रूप में लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अबू धाबी से शिक्षाविद एवं कवित्री डॉक्टर आरती लोकेश ने सरोज जी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अबू धाबी में हिंदी भाषा की स्थिति पर अपना सारगर्भित विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सविता चड्ढा ने सरोज जी की पुस्तक पर अपना समीक्षात्मक मंतव्य रखा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुविख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने कहा कि पुस्तक प्रकाशित करना एक चुनौती भरा काम है। सृजन करने में हम सभी को आनंद आता है, किंतु संकलित करके पुस्तक के रूप में लाना एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए कई रचनाकारों की पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती। सरोज जी ने अपने अनुभवों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया, जो कि सराहनीय है, किंतु यह जानकर हैरानी होती है कि यह उनकी पहली पुस्तक है। लिखने के लिए तो वे काफी वर्षों से लिख रही हैं, किंतु जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने रचना कर्म को समय नहीं दे पाते। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने कहा कि सरोज जी की पहली पुस्तक है और पहली पुस्तक का स्वागत किया जाना चाहिए, उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कविता की जादू पर बात करते हुए कहा कि कविता सीधे सपाट शब्दों में नहीं बल्कि

0: कविता इशारे इशारे पर अपनी बात कहती है। और यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कविता लिख रहा है, बल्कि कविता महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर भावना शुक्ल के संचालन में आयोजित इस समारोह के उपरांत काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन कवि श्री विनोद पाराशर ने किया। समारोह में अकादमी की पदाधिकारी सुश्री सुरेखा शर्मा, सुषमा भंडारी, प्रकाश कंवर, विजय शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, ध्रुव शिवहरे, द्वारका पांडे, किशोर कुणाल के अतिरिक्त कई वरिष्ठ साहित्यकार और कवि उपस्थित रहे। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी की तरफ से डॉक्टर संजीव कुमार जी की पुस्तक संयोगता परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार शशि सहगल, मनोज अबोध, डॉक्टर जगदीश व्योम, डॉक्टर संजीव कुमार संस्थापक अध्यक्ष वामा अकादमी, संतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्यकार, शकुंतला मित्तल वरिष्ठ साहित्यकार निदेशक वामा अकादमी सहित अन्य गणमान्य साहित्यकार उपस्थित रहे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश वत्स। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: नमस्कार, मैं काजल सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल पेशा ही नहीं बल्कि मानवता की साधना बना दिया। अपने समर्पण, सादगी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में जाना माना नाम है। सर्जरी में हासिल की गई उपलब्धियों को देखते हुए उनका नाम लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं सामाजिक उपलब्धियों के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। पद्मश्री से सम्मानित है। वर्ष 2005 में हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की उत्तराखंड शाखा के वो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। आजकल एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब की पहचान केवल एक कुशल सर्जन के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील और विनम्र इंसान के रूप में भी है। आज हम उनसे उनकी शख्सियत, जीवन मूल्यों और प्रेरणादायक अनुभवों पर विशेष बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, आपकी सादगी की चर्चा अक्सर होती है, आप अपने व्यक्तित्व को किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिसे आप अपनी सफलता का आधार मानते हैं, क्या कहेंगे?
4: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया काजल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और आपने जो सवाल किया वो इतना है, वो हमारे लिए नहीं, आपने कहा कि हमारी सफलता का, एक मंत्र दे रहा हूँ, वो हमारी सफलता का नहीं, वो आपकी सफलता का और जो लोग सुन रहे हैं वो सबकी सफलता का है।
3: बहुत शुक्रिया।
4: सबसे अच्छे सफलता के लिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा।
3: क्या बात।
4: उसके बाद हम जिस काम में भी करें, जिस क्षेत्र में भी है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: और यदि आपके पास ज्ञान आ गया है तो व्यवहार के माध्यम से इसको आप अपना प्रयोग कीजिए, जिसको स्किल कहते हैं। तो हम सब लोगों को इन तीन चीजों को हमेशा रखना चाहिए, व्यवहार, ज्ञान एंड कौशल। उसको हम अंग्रेजी में कहें तो बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल।
3: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब। आप एक संवेदनशील इंसान तो हैं ही, इतनी खूबसूरत बात कही। और जितना मैंने आपके बारे में जाना है, तो मैंने ये भी अभी आपसे बातचीत हो रही थी कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ, जाने माने सर्जन होने के साथ साथ, आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए और हमारे श्रोताओं को जरूर आपसे कुछ सुनाइए।
4: देखिए, कविताओं का तो मुझे ऐसे है कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, वो बचपन से रहा है। किताबें खरीदने का और किताबें पढ़ने का। मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों से कहूंगा कि जो पुस्तकें हैं वो सबसे अच्छी दोस्त हैं।
3: वाह।
4: मैं लिखता भी रहता हूं। मेरी एक पुस्तक आई है उपहार संदेश का, जिसको पहले ज्ञानपीठ ने छापा हुआ था, प्रकाशित किया था, अब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। उसमें हमने कई कविताएं लिखी और कविताएं किसी एक डॉक्टर के नाते नहीं लिखी है, एक समाज के व्यक्ति के नाते मैंने हर समस्या

0: के लिए कहें या हर घटना के ऊपर कोई ना कोई कविता लिखी है जो दर्शक या जो श्रोता कभी इसको पढ़ेंगे, तो मैं ये बिल्कुल उनसे निश्चित तौर से कहता हूं कि उन कविताओं में कम आपको एक कविता ऐसे लगेगी जैसे आपने खुद वो कविता अपने बारे में लिखी हो।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही, और इसीलिए तो कहा जाता है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। और डॉक्टर साहब, कविता तो मैं आपसे जरूर सुनेंगे हमारे श्रोता। तो एक सवाल मेरे जहन में आया, कहते हैं कि जो आपकी बॉन्डिंग है, आत्मीयता है जो मरीजों के साथ, वो आपकी पहचान है, तो इसके पीछे आपका जीवन दर्शन क्या है?
0: देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लोग समाज की उत्पत्ति है,
1: बिल्कुल,
0: और हमें समाज को कुछ देना चाहिए। ये हमारा अब कर्तव्य भी नहीं रहना चाहिए, जो हमारी उम्र के हैं उनका कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए, उनका दायित्व भी होना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं हमारी उम्र के लोग, अपने बच्चों को, नाती पोते पोतियों को तो आप पढ़ाते ही हो, उनके बारे में तो सोचते ही हो, कभी आप दूसरों के नाती पोतों के बारे में सोचिए। और हम लोगों को इतना ज्ञान है, यदि हम अपनों को दे सकते हैं तो वो ज्ञान आप दूसरों को दे दिए, और हो सकता है वही दूसरे आपके अपने बन जाएंगे ना।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने कि अपना अपनी चीजें बांटिए।
0: क्यों नहीं? और वैसे भी कहते हैं कोई भी चीज है ना, बांटने से दुगनी होती है।
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी कि एक सर्जन होने के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान बने रहना, ये बैलेंस आप कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि लेखन के लिए संवेदनशीलता की जरूरत होती है।
0: आपको मैं दो चीजें कहूं कि संवेदनशीलता हर व्यवसाय में आनी चाहिए, हर प्रोफेशन में आनी चाहिए, लेकिन दो प्रोफेशन एक ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ही जरूरी है, यदि इसको कहें तो बहुत। एक है शिक्षक का
1: जी,
0: और दूसरा है वो है चिकित्सक का
1: जी। कहते हैं ना कि ये जरूर सोचे कि हर आंख का आंसू हमारा है, इंसानियत के शहर की कोई सीमा नहीं होती, हर जख्म की पीड़ा हमारी है, तभी हम दूसरों के दर्द को
0: समझ सकते हैं
1: जी। बिल्कुल, तो यहाँ मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, तो एक कविता तो जरूर बनती है।
0: मैं आपको जरूर सुनाऊंगा
1: जी।
0: कविता का शीर्षक है सपने हमारे और आपके, ये हमारी कविता की एक पुस्तक है उपहार संदेश का, उसमें से एक कविता ली गई है। वही यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते।
1: वाह,
0: मैं कहता हूं कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते।
1: क्या बात,
0: सपनों को देखना सीखो रात के नहीं बल्कि दिन के। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांशता। कवि कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वासुदेव कुटुम्बकम।
1: वाह, क्या बात,
0: जिसका मतलब है पूरी एक दुनिया।
1: वाह,
0: धन्यवाद,
1: बहुत खूबसूरत,
0: धन्यवाद। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे आपके जीवन के, इन सपनों की नींव पर तो आज इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग।
1: बहुत खूबसूरत,
0: धन्यवाद,
1: बहुत खूब,
0: क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को समाने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को समझने के लिए हमारी शुभकामनाएं।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अभी जैसे आपने कहा कि सहयोग की, अभी आपने बात की, इतनी खूबसूरत कविता जो आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं ने सुनी, तो यहाँ मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि आप जब एक टीम को हेड करते हैं, जब आप टीम के साथ काम करते हैं, तो आपकी जो नेतृत्व शैली होती है वो कैसी रहती है?
0: मैं ये अपनी ही बात नहीं कहता हूँ, मैं बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मंचों से, विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, किसी तरह के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं ये समझता हूं कि हर व्यक्ति को एक टीम की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, और यदि अकेले हो सकता तो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि एक टीम के साथ होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं विनिंग, वर्किंग टुगेदर मीन्स विनिंग।

0: कहता है। मैं कई लोग जो सुन रहे हैं और जो खास तौर से उन लोगों को जैसे लेते हैं या अपने सहयोगियों को रखते हैं, तो मैं उन सहयोगियों के लिए 5 चीज़ों को बताऊंगा, वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी का सबसे भय कि उस जिस व्यक्ति को आप टीम में रख रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंस होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पहला उसका गुण है कॉम्पिटेंस होना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए। दूसरा उसका गुण है कमिटमेंट होना चाहिए
1: जी।
0: तीसरा उसका गुण जो है वो कर्टियस होना चाहिए
1: जी।
0: और चौथा उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए,
1: बहुत जरूरी।
0: और 5 में जो सबसे बड़ी चीज है उसमें कॉम्पिटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, 5 चीजें होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी टीम को बना सकते हैं। हम लोग किसी के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से काम ना करें। जब हम किसी टीम में होते हैं या किसी दफ्तर में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि हम लोगों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करने चाहिए कि जो आप में कमी है वो मैं पूरा करूँगा, जो मुझ में है वो आपको पूरा करना चाहिए।
1: बहुत ही खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिला पद्मश्री, तो उसके मिलने के बाद आपके भीतर क्या भावनात्मक परिवर्तन आया?
0: देखिए, मैं ये कहूँ कि बिल्कुल आया है। हमें जो कहने के जो प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गए हैं, पहले जैसे हम कहते तो उसको मानते नहीं थे, आज हम जो बातें आज मैं आपके माध्यम से जो श्रोता सुन रहे होंगे वो लोग भी, उनमें से मुझे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कुछ लोग हमारी कही हुई बातों को
1: मानते हैं।
0: तो जब किसी भी काम के लिए कहते हैं कोई मार्क लग जाता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है
1: और जिम्मेदारियां और बढ़ जाती
0: है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है
1: जी। सर, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण जिसने आपको भीतर तक बदल दिया।
0: कई, देखिए, सबसे ज्यादा तो जो मुझ में बदलाव आया है कि मैं डॉक्टर बनने के नाते कई तरह के लोग आते हैं
1: जी।
0: कई तरह के लोग आते हैं, और मैंने एक ये भी कहा कि हर किसी में भी, मतलब हर व्यक्ति का विकास वातावरण से होता है, और मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। तो मैंने बहुत बदलाव आया, खासतौर से जैसे मरीज लोगों को देखते हैं। मैं एक सड़क सुरक्षा का या रोड सेफ्टी का मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। अभी हमने एक पुस्तक भी लिखी है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं
1: जी, आपने लिखी है।
0: मैंने
1: जी,
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: आज मैं अपने उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट करके भी आया हूँ
1: जी,
0: और वो सिर्फ इसीलिए लिखी है कि मैंने बहुत नजदीकी से इन लोगों की जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक इस तरह की इनकी परेशानियों को देखा है। तो उसी के लिए मैं कहता हूँ कि लोगों को सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा वो नहीं है, आपको यातायात के नियमों को सीखना चाहिए और मानना चाहिए, और सरकारों को यातायात के नियमों को सिखाना चाहिए और मनवाना चाहिए।
1: अंत में आप श्रोताओं के लिए अपने जीवन मूल्यों से जुड़ा कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सब लोगों से ये कहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए, जो मैंने पहले बताया है, आप हर किसी में अपने व्यवहार में सुधार लाइए।
1: बिल्कुल।
0: एक दूसरा में ये कि जब आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप विद्यार्थियों से कहेंगे कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जब आपको विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन वाले काम करिए। आप वो काम ना करिए जो ग्रस्त वाले लोग काम करते हैं। इस बात को बच्चों को जरूर ध्यान देना चाहिए।
1: सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और बहुत आपसे के साथ जो चर्चा रही बहुत ही सार्थक रही, लेकिन इतनी खूबसूरत कविता आपने हमको सुनाई, तो अब जी चाह रहा है कि हमारे श्रोताओं को हम एक आपकी एक कविता और सुनाए, तो आपसे गुजारिश की एक और कविता।
0: मैं जरूर सुनाऊंगा। देखिए, कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो।
1: क्या बात।
0: कविता हमारी एक नई पुस्तक आने वाली, उसका एक हिस्सा है
1: जी, जी।
0: इसको ध्यान दीजिए, एक हमने समाज के एक वर्ग के लिए लिखा हुआ है कि कुछ लोग बड़ी बात को सुनते रहते हैं, हर बात को सुनते हैं। आपको हर बात को सुनने की जरूरत नहीं है, कहाँ आपको मुखर होने। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सर से सबसे लड़िए झगड़िए, ऐसा भी नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती तो आप अपने मन की तो बात बताइए। खास तौर से जो आज समाज में दुर्घटनाएं घटनाएं हो रही हैं वो अच्छी बात नहीं है। कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो। मौन भी एक भाषा है। यह एक कविता का शीर्षक है। हाँ, मौन भी एक भाषा है, जो कभी भाव की स्वीकृत है तो कभी भाव की अस्वीकृत की स्थिति में हमेशा मौन नहीं बेबाक होना जरूरी है। ऐसे में ढुलमुल नहीं मुखर होना जरूरी है।
1: क्या बात, वाह,
0: धन्यवाद। मुखरता की जरूरत है। मुखरता संचार का माध्यम है, संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुखरता केवल ज्ञान ही नहीं, एक कौशल है जिसको सीखा सिखाया बेहतर

0: बेहतर बनाया जा सकता है।
1: वाह,
0: पर मुखरता है क्या? सम्मान के साथ प्रभावी ढंग से बिना आक्रामक हुए आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना की क्षमता मुखरता की परिभाषा है। हाँ, मौन भी एक भाषा है, पर जीवन के द्वंद में यदि अन्याय या अमंगल की आशंका है तो ऐसे में मौन नहीं मुखरता की आवश्यकता है। इसलिए डर नहीं निडर हो, मौन नहीं मुखर हो।
1: वाह, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब आपने। अपने अनुभवों और विचारों को आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने भी मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी सादगी, सेवा भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण निश्चित ही हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेंगे। आपने बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानवता के प्रति समर्पण में होती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम आज के इस विशेष कार्यक्रम को, हमारे अतिथि को यही विराम देते हैं। हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि रहे जाने माने आर्थोपेडिक

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: بهذه القطعة الموسيقية أيها السادة، الآن نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 حسب التوقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री

0: किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट, सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को राम राम, राम राम।
1: और कैसे हैं आप सब? जब हम ये बात पूछते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं कि आते ही हमारा हालचाल पूछा। हालचाल के साथ साथ ये भी कहेंगे कि भई इस समय 12:11 हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि शायद आपने कुछ खाना भी खा लिया होगा या अभी तक आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, अरे खाना बाद में खा लेंगे, एक कप चाय और आने तो अच्छा, कोई कहेगा कि हम आधा कप चाय मेरे पीने का दिल कर रहा है, आप पियोगे या पियोगे, चलो तुम बना रहे हो तो आधा कप चाय और पी लेते हैं। और इस चक्कर में जो है कम से कम 2 बज जाते हैं खाना खाते खाते।
0: बिल्कुल। और देखो कमलेश जी, जो संडे का दिन होता है, रविवार का, वो उस दिन बहुत सारी जो पूरे हफ्ते की या पूरे देश विदेश में जो भी खबरें चल रही होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, चाय के साथ साथ उनको जानने की भी उत्सुकता होती है और हमारे बहन भाई उन पर नज़र भी रखते हैं। और देखिए आज क्या है, आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई को बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे, जैसे दिन भर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ऐसे ही देश में विदेश में कुछ ऐसे दिवस मनाए जाते हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं।
1: और जब हमारा कार्यक्रम सुनते सुनते इन चीज़ों की और इन बातों का उनको पता चल जाता है तो देखो सोने पर सुहागा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं और अपना काम भी कर रहे हैं और काम के साथ साथ हमें सुनकर और अपना जो है जीके जनरल नॉलेज वो भी वो बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: बिल्कुल।
1: आज जैसे आपने बात करी 19 जुलाई है, रविवार का दिन है, लेकिन खास या विशेष क्या है?
0: देखो खास विशेष बहुत है, खास विशेष भी बताएंगे आज 19 जुलाई को जो महत्वपूर्ण बातें वो बता देते हैं। जैसे कि हमारे एक स्वतंत्रता संग्रामी रहे थे मंगल पांडे, उनका जन्म 19 जुलाई को हुआ था। और इसी तरह से अंतरिक्ष में अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने बाहर निकलकर चंद्रमा की जो चहलकदमी थी वो भी 19 जुलाई को की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, तो ये दिन हमें याद दिलाते हैं। और इसके साथ ही
1: महत्वपूर्ण दिन क्या है वो तो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और भी तो बात कर लेना कि देखो हमारी बहन हो या भाई हो, पैसा हर किसी की ज़रूरत होती है और हर कोई यही चाहता है कि अपने पैसे का सदुपयोग करे, कोई भी पैसा इधर उधर खर्च ना करे। हम बच्चों से भी जब कोई चीज़ पूछते हैं वो कहते हैं कि हमें इतने रुपये का पेन चाहिए, क्यों इतने का क्यों चाहिए, कम में भी तो कर सकते हो। हम क्यों कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनको हम ये बताना चाहते हैं कि भाई बचत भी बहुत ज़रूरी है और अपने पैसों को कहीं पर संभाल कर रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। अब पहले ज़माने में तो देखो हमारी जो दादी नानी थी वो पोटलियाँ बना बना कर रखती थी, कहीं किसी डब्बे में पैसे रखे, कहीं कुछ रखे, कहीं कुछ रखे, और वो कई जगह रखते थे और कई बार ऐसा होता था कि रख कर वो भूल भी जाती थी। उस समय जब ज़रूरत पड़ती थी वो बिल्कुल भूल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम तरक्की के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि पहले जहाँ पर वो पोटलियों में बंद करके रखा जाता था खजाना कि बुरे वक्त में काम आएगा, अब उसका स्वरूप, उसका रूप बदल गया है और अब उस पैसे को बैंकों में रखा जाता है।
1: बिल्कुल। और जब बैंकों में हम अपना पैसा रखते हैं तो वो बिल्कुल सुरक्षित होता है, एक दिमाग में रहता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है और आप आराम से चैन से सो सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखो कमलेश, ये बात हम अपनी बहनों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, आज 19 जुलाई है और इसी दिन भारत सरकार ने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को एक नया आकार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, जो उन्होंने बैंकों का 14 बड़े जो निजी राष्ट्रीयकरण बैंक थे, वाणिज्यिक बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण बैंक कर दिया गया था। और ये वो बैंक थे जिनकी जमा राशि जो थी वो 50 करोड़ से अधिक थी।
1: और इसका फायदा भी तो हुआ ना, इसका फायदा क्या हो कि जो हमारे

0: ग्रामीण शाखाएं थी उनको विस्तार मिला। कैसे मिला कि पहले वो साहूकार से पैसा उधार लेते थे और उसके बाद में उनका उधार कभी चुक ही नहीं पाता था। या हम फिल्मों में देखें या हम कहानियों में पढ़े तो लगता था कि अरे उसने तो इतने से पैसे लिए थे और इतने साल क्या पीढ़ियां गुजर गई और अभी तक उसका पैसा ही नहीं उतरा, तो ये उनको कितना फायदा हुआ। अच्छा, इससे हरित क्रांति को प्रोत्साहन मिला, कृषि क्षेत्र में जो ऋण मिलने से खाद्य उत्पादन में जो है भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा।
1: और देखो कमलेश, जब पैसे बैंकों में जमा होने लगे तो इसके साथ साथ जो हमारे किसान बहन भाई थे जो उनके अंदर ये वाली बात आई कि वो अब अपने स्वरोजगार के लिए ऋण भी ले सकते हैं, क्योंकि बैंकों ने ये सुविधा भी प्रदान की, विशेष ऋण योजनाएं शुरू की गई। और सबसे बड़ी और अहम बात जो आपने पहले भी कही थी कि बचत की आदत लगी, क्योंकि हम सारे पैसे खर्च कर देंगे तो बचत कैसे होगी।
0: और ये रहता ना कि देखो घर में अगर पैसा रखा है ना चाहते हुए दिमाग पैसे तो चलेंगे कर आ जाती है, और अगर पता है कि भाई बैंक में पैसा रखा तो भी अब पहले बैंक जाना पड़ेगा, उसके बाद अपना पैसा निकाल कर वापस लाना पड़ेगा, उसके बाद खरीदार के तो ठीक है ना, पैसा वहां जमा है तो कोई बात नहीं, तो इससे एक अच्छी आदत तो पड़ी हमें।
1: बिल्कुल, तो इसी तरह से वित्तीय समावेशन की नींव पड़ी और यह कदम जो था आधुनिक दौर को लेकर आया, जिससे कि हमारे बहन भाइयों ने शिक्षित होकर अपने अपने खाते बैंकों में खोले और बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाया, उठा भी रहे हैं।
0: बिल्कुल, और आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और विकास की तरफ हम तेजी से अपना जो कदम है वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब भी जब हम पैसा खर्च करते हैं तब भी सोचते हैं कि जो थोड़े से पैसे हैं ना, ज्यादा कोई नहीं बोलता, अगर पूछे अरे हम तो बस मात्र एक छोटे से प्राणी है, थोड़ा सा पैसा है हमारे पास, तो उस थोड़े से पैसे को कैसे खर्च करें।
1: और देखो कमलेश, कई बार ये भी तो आती है कि हमें चीजें बहुत सारी लेनी होती हैं, जब हम अपना बटुआ अपना पर्स देखते हैं कहते हैं अरे इतने थोड़े से पैसे, अब इसमें क्या क्या कैसे खर्च करें,
0: अपने अपनी कौन सी चीज मैं हटाऊं और फिर परिवार के लिए लेकर आऊं। तो चलो इस गीत में सुनते हैं कि ये क्या कह रही है।

0: और ये देखो, एक ये छोटा सा जो बच्चा है ना, नन्हा मुन्ना सा, भाई ये क्यों रो रहा है? ये यूं रो रहा है कि मम्मी मेरे को आज ना कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा खाना चाहिए था। अब आज तक ना मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि वो अच्छा सा बढ़िया सा कौन सा खाना
1: सही बात
0: है।
1: है।
0: क्योंकि हमारी माएँ, हमारी बहनें हमेशा बच्चों से पूछ पूछ कर देखो बनाती रहती हैं, और ये आप अपने घर में भी करती होंगी,
1: बिल्कुल
0: लेकिन बच्चे क्या कहेंगे, हम ये भी कोई खाने की चीज़ है अगर और घिया तोरई टिंडे, भाई इनका अगर नाम ले दिया तो समझ लो कि घर में जो है भूकंप या तूफान जरूर
1: और
0: आएगा।
1: कमलेश पता है क्या होता है कई बार कि ना,
0: हाँ
1: जो बच्चे हमारा खाना बेकार बता रहे हैं ना,
0: हाँ
1: जब किसी दोस्त की या मित्र की माता के हाथ का खाना खाएंगे या किसी संबंधी के या खाएंगे, बोलेंगे मजा आ गया, बड़ा स्वाद है। माँ के हाथ के खाने में मतलब वो वाली बात नहीं आएगी, वही, क्योंकि वही वाली बात है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, चाहे
0: बिल्कुल
1: माँ के हाथ का खाना उससे ज्यादा स्वादिष्ट हो।
0: वही तो। अब उनसे पूछे कि भाई उसमें ऐसा क्या खास था, खास नहीं पता लेकिन अच्छा था। और मजे की बात है कि जब
1: बिल्कुल
0: हम बच्चे को टिफिन में जो खाना देते हैं, अपना तो खाएंगे नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा लेकर आए उसका खाना वो खा कर आएंगे।
1: और यही चीज दूसरा भी करता है,
0: और
1: वो भी यही
0: ये
1: करेगा, वो अपना उसे दे देगा और उसका खुद ले लेगा।
0: हाँ। और देखो अब पता कब चलता है, जब पीटी मीटिंग होती है तब मिलते हैं आपस में, तब
1: बिल्कुल
0: पता चलता है अच्छा ये इसका खाना खाता, अच्छा ये आपने बनाया था, ये आपने
1: बिल्कुल
0: बनाया था। और ये बात देखो बच्चों, आप ना परेशान मत हो ना, हमें सब बातों का पता होता है, क्योंकि देखो हम भी तो अपने घर में रहते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे घर में भी बच्चे हैं। केवल मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आपकी माँ इतने प्यार मनुहार से खाना बनाती हैं, तो कभी
1: बिल्कुल
0: उनकी भी तारीफ कर दिया करो, या फिर भी सुबह ही बता दो कि आज मुझे क्या खाना है।
1: बिल्कुल
0: हैं माए, मैंने देखा रात को पूछती रहेंगी क्या बनाना, कुछ अच्छा सा बना देना, कोई कुछ नहीं बताएगा। जब सुबह जाएंगे वापस आएंगे स्कूल से, क्या बना के दिया था, मैं तो भूखा रह गया या मैं भूखी रह गई।
1: बिल्कुल
0: और किसी दिन उनको बोलो कि भी थोड़ा सा जो है अपना काम खुद कर लो, तो फिर क्या कहेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो ना थक जाते
1: बिल्कुल सही बात है, जैसे
0: हैं।
1: माए तो थकती नहीं है।
0: बिल्कुल। तो आज मैं इसीलिए थोड़ी सी भी देखो, अगर माओं की हम खिंचाई कर सकते हैं तो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की भी हमें
1: और
0: करनी चाहिए
1: क्या,
0: ना, भाई पूरा अधिकार है हमारा, क्योंकि सही को सही कहना बहुत अच्छी बात होती है,
1: बिल्कुल
0: और सही को सही मान लेना उससे भी
1: उससे
0: बढ़िया
1: भी अच्छी
0: बात
1: बात होती
0: है।
1: है। और कमलेश, ये जो सारी बातें आपने बच्चों की खिंचाई की, मैं समझ भी गई, मैं आपका इशारा कि आप ये वाली बात आपने इसलिए कही कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अगर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो अपनी माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो हमारा घर आंगन
1: बिल्कुल
0: चहकता महकता रहेगा।
1: बिल्कुल सही बात
0: ये
1: है,
0: देखो अगर माँ को जरा सा भी बुखार हो जाता है ना, तो जो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा,
1: बिल्कुल
0: एकदम जो परेशानी है ना, भाई उसके माथे पर पता चल जाते कि हाँ भाई, बार
1: बिल्कुल
0: बार जाके पूछेगा मम्मी आप जग रहे हो, हाँ उठती हूँ अभी थोड़ा सा उठते, मम्मी आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, इतना धीरे तो
1: सही
0: बोलते
1: बात
0: नहीं हो,
1: है,
0: तो तब
1: बिल्कुल
0: उन्हें पता चलता है। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बहनें हमेशा स्वस्थ
1: स्वस्थ
0: रहें।
1: रहें। बिल्कुल, और देखो बच्चों आप भी अपनी अपनी माताओं का ध्यान रखें, और जैसे जैसे कमलेश महिलाएं बढ़ती जाती हैं, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां आक्रमण करना शुरू कर देती हैं अगर महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, पोषण युक्त भोजन नहीं लेती।

0: कुछ समस्याएं जो होती हैं वो उम्र संबंधी भी होती हैं और कुछ सही खान पान ना होने के कारण, अच्छी जीवन शैली ना होने के कारण भी होती हैं। तो जैसे आज हम जिस बीमारी का जिक्र करेंगे, अपनी महिलाओं को जो बातचीत सुनवाएंगे वो है थायराइड। ये जो समस्या है महिलाओं को बहुत परेशान करती है, तो थायराइड और महिलाओं का स्वास्थ्य, इस विषय पर आज हम अपनी बहनों के लिए एक बातचीत लेकर आए हैं और डॉक्टर अंशिता अग्रवाल से बातचीत कर रही हैं हमारी बहन कमलेश मुदगल।
1: महिला ये चाहती है वो स्वस्थ रहे, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि पूरे परिवार की धुरी होती है हमारी महिलाएं। अगर महिला को बुखार भी हो जाता है तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और अगर कोई उसको ऐसी बीमारी आ जाती है, बहनों मैं आपको डरा नहीं रही ऐसी बीमारी से, हमारा मकसद केवल यही होता है कि अगर कोई आपके पास बीमारी आ गई है तो उसका इलाज भी होता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियो में थायराइड और महिलाओं का स्वास्थ्य ये विषय रखा है बातचीत के लिए, और अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अंशिता अग्रवाल को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंडोक्राइन विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। देखिए, कोई भी बीमारी होती है उसका पहले तो हमें पता चलता नहीं है, चाहे वो बच्चा छोटा हो या चाहे वो बच्ची छोटी हो, चाहे वो महिला बन चुकी हो
2: जी।
1: और जब हम बात करते हैं आजकल थायराइड की, सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि थायराइड है क्या।
2: थायराइड ग्लैंड एक तितली के आकार का अंग या ग्लैंड होता है जो कि हमारी गर्दन में स्थित होता है। अभी होटा छोटे साइज का है पर ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स बनाता है जो हमारे शरीर में होने वाली भिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। महिलाओं की बात करें तो बचपन से लेकर रिप्रोडक्टिव आयु से लेकर वृद्धावस्था तक इसका बहुत जरूरी रोल होता है। बचपन में बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ, मतलब लंबाई और प्रॉपर वेट बढ़ना, दिमाग का डेवलपमेंट होना, प्रॉपर IQ होना, ये सारी चीज़ें थायराइड ग्लैंड पे निर्भर होती हैं। बड़ी उम्र में, मतलब कि प्यूबर्टी के बाद, महावारी में, पीरियड्स के नॉर्मल होने में और गर्भावस्था धारण करने में नॉर्मल तरीके से इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी बच्चे को दूध पिला पाना और बाद में फिर साइकिल्स नॉर्मल रहना, ये सब चीज़ें थायराइड ग्लैंड पे निर्भर होती हैं। ना सिर्फ ये हमारे शरीर में, हमारे दिल पे, हमारी पाचन प्रक्रिया पे, हमारी खून बनने की प्रक्रिया पे, हड्डियों पे, इन सभी पे इसका बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये पूरे ही लाइफ स्पैन में बहुत ज़रूरी एक रोल प्ले करता है, स्पेशली महिलाओं की।
1: जब आपने बात की थायराइड ग्लैंड की तो ये तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात है कि हमें पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई महिला ये चाहती है कि उसके बच्चे भी स्वस्थ रहें, वो खुद भी स्वस्थ रहे। तो ये जो थायराइड रोग आता है वो हमें कैसे पता चलेगा, यानी उसके लक्षण कौन कौन से आएंगे कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं।
2: मोटे तौर पर देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला, जिसको मोटा होने वाला थायराइड प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं
1: जी।
2: हाइपो मतलब कम। तो जब T3 और T4 नाम के हार्मोन बनने कम हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। इसके जरूरी नहीं है कि कुछ लक्षण हो, ये जरूरी चीज है। कई बार कुछ लक्षण सामने नहीं भी आते, पर जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है उस टाइम पे बहुत कब्ज रहना, अत्यधिक ठंड लगना, दिमाग से बहुत ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई में कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना, ये भी एक संबंध हो सकता है। बच्चों में ग्रोथ पे असर आ सकता है, हाइट एकदम बढ़नी अगर कम हो जाए, या वेट एकदम बढ़ने लगे बच्चों में, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं। बड़ों में जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन या पाचन प्रक्रिया में प्रॉब्लम होना, ठंड लगना। जहां तक वजन बढ़ने की बात है बड़े लोगों में, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आम तौर पे ये वजन को उतना बढ़ाता नहीं है जितना कि इसको ब्लेम किया जाता है, है ना। कुछ हद तक 2 से 3 किलो का अत्यधिक वेट गेन बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, ज्यादा पानी भरने के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है, पर ये आम या कोई बहुत स्ट्राइकिंग जरूरी लक्षण नहीं है। इसके अलावा महिलाओं में पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, पीरियड्स काफी महीनों तक ना आना, या गर्भ धारण करने में परेशानी होना, इस तरह से भी कई बार ये सामने आती है हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम। और दूसरा जो हम बोलते हैं, जिसको आम जनता बोलती है पतला होने वाला थायरॉयड, उसको हाइपर थायरॉयडिज्म बोला जाता है। हाइपर मतलब ज्यादा। तो अगर T3 और T4 हार्मोन अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगे तो इसमें कई बार जो लक्षण होते हैं वो ज्यादा ऐसे होते हैं जो स्ट्राइकिंग हो या ज्यादा उभर के

0: आते हैं
1: जी
0: कंपेयर्ड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें वजन एकदम कम हो जाना, शरीर में कपकपाहट रहना, बार बार शौच के लिए जाना और फिर से पीरियड्स में प्रॉब्लम होना या पीरियड्स होने बंद हो जाना, अगेन गर्भावस्था धारण करने में प्रॉब्लम होना और अत्यधिक गर्मी लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
1: जी जब हमने थायराइड की आपने इतनी बातें बता दी कि ये इसके लक्षण होंगे, तो क्या इसके लिए कोई हमें टेस्ट कराना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि इसमें जो है वो कौन सा थायराइड निकल कर आया है?
0: एक अच्छी बात यह है कि थायराइड से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका पता लगाना आसान है। इसके लिए एक सिंपल सरल टेस्ट होता है जो आमतौर पे हर जगह अवेलेबल होता है, इसको TSH हार्मोन का टेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम TSH का टेस्ट करते हैं जब हमें स्क्रीन करना है, या मतलब हमें ऊपरी तौर पे देखना है कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर TSH के लेवल्स जितने होने चाहिए उससे ज्यादा या कम हो, तब हम T3 और T4 हार्मोन लेवल्स के टेस्ट भी कराते हैं, और तीनों रिपोर्ट जब हमारे पास होती हैं उससे पूरी स्थिति है वो सामने आ जाती है कि थायराइड के काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म तो नहीं है।
1: ये टेस्ट हमारी बहन ने करवाए, तो क्या ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है या उनको ये टेस्ट बाहर से कराने होंगे?
0: ये सभी सरकारी अस्पतालों में, जैसे कि हमारा दिल्ली में RMS अस्पताल जो है, वहां पे बिल्कुल कम से कम रेट पे अवेलेबल होता है इजीली। ज्यादातर जगहों पे इसको कराने में ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता आएगी।
1: और जैसे हम बात करें कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं उम्र के हिसाब से आती हैं, कुछ ऐसा होता है कि वृद्धावस्था में ही बीमारियां आएंगी, जो थायराइड की क्या कोई ऐसी उम्र है कि भी इस समय पर हमें थायराइड जो है वो चेक करा लेना चाहिए?
0: जब हमने हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करी, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से ज्यादा कॉमन होता है वैसे, तो हमारा जो डिस्कशन है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में ज्यादा होगा। तो इसका कारण सबसे कॉमन होता है ऑटो इम्यून, मतलब शरीर जो है वो अपने आप ही थायरॉयड ग्रंथि को एक तरह से उस पर हमला करने लगता है, हम ऐसे समझ सकते हैं।
1: जी
0: तो जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है वो अक्सर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब कि 20s से लेकर 40s की उम्र में आम तौर पे सामने आती है। तो ये सबसे आम एज ग्रुप हो गया जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये किशोर अवस्था में भी पाई जा सकती है, इवन छोटे बच्चों में। और इसका एक बिल्कुल ही अलग तरह का रूप है जो होता है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब नवजात शिशु में थायरॉयड की प्रॉब्लम होना, ये भी इसका एक प्रकार है। तो ये नवजात शिशुओं में देखा जा सकता है, और इसके लिए अब जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस समय जरूरी नहीं है कि कोई लक्षण हमें दिखाई दे। जिन लक्षणों को हमने डिस्कस किया वो तो होंगे ही नहीं। उसके अलावा उसमें ये हो सकता है कि बच्चे को अगर बहुत लंबे टाइम तक पीलिया रहे, या पेट का फूल जाना, या बच्चे में बहुत ज्यादा कब्जी रहना, ये हम न्यूबॉर्न बच्चे की बात कर रहे हैं, तो
1: जी
0: उनमें हम सस्पेक्ट करते हैं। पर क्योंकि ये लक्षण कई बार नहीं भी होते, इसलिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का रोल होता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग मतलब सभी बच्चे जो जन्म ले उनका हम थायरॉयड टेस्ट करें। अभी ये एक हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट नहीं है, पर जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का रोल होता है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का पता लगाने के लिए।
1: तो क्या ये आनुवंशिक रोग है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, या पापा से बच्चों में आ गया या मम्मी से बच्चों में आया, क्या ऐसा है? या घर में भी किसी को नहीं है लेकिन एक बच्चे को हो गया, दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है?
0: जब हम कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब नवजात शिशु में होने वाले थायरॉयड की प्रॉब्लम की बात करें, तो यह जेनेटिक या हेरिडिटरी आमतौर पे नहीं होता है। इसका सबसे आम कारण होता है कि बच्चे का ही जो थायरॉयड ग्लैंड है वो विकसित नहीं हुआ। अब इसमें जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, पर ये आमतौर पे इनहेरिटेड नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर माता को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चे को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ये
1: जी
0: समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम किशोर अवस्था या बड़ी उम्र या मिडिल एज में होने वाले थायरॉयड के प्रॉब्लम की बात करें, तो हाँ, हमने बताया कि ऑटो इम्यून होता है, और जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है वो अक्सर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकती हैं।
1: जी
0: पर मैं ये भी कहना चाहूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है तो ऐसा 100% है ही कि उसकी जो बेटी है या बेटा है उनको किशोर अवस्था या बड़ी अवस्था में थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही। हाँ, पर
1: जी
0: ये है कि आम जनता के मुकाबले उसका रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा। और सेम चीज जो है वो हाइपर थायराइडिज्म, जिसका सबसे आम कारण ग्रेव्स डिजीज नाम का ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है, उस पर भी लागू होती है।
1: अब हमें पता चल गया कि हमें कौन से थायराइड है, और थायराइड की जब दवाइयाँ शुरू करते हैं तो
0: जी
1: उसमें फिर पहला जो उपचार करते हैं, एक तो होता है कि आरंभिक उपचार हो गया, तो ऐसे में आप हमारी बहनों को क्या कहना चाहेंगी कि जब उसका इलाज कराएं तो घबराएं नहीं और बच्ची का प्रॉपर इलाज ही करवाएं?
0: हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका

इलाज ना किया जाए तब तो ये बहुत खराब तरीके से हमारे ऊपर असर कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इलाज बहुत ही सरल है। अगर आप सही टाइम पे और सही डॉक्टर के पास चले जाएं और उनकी देख रेख में सही इलाज लें। इलाज का क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म में सिर्फ रोज सुबह नियमित रूप से एक गोली आपको लेनी है और बीच बीच में थायराइड का टेस्ट कराते रहना है जो आपके डॉक्टर बताएंगे, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से एक नॉर्मल

0: तरीके से हो सकती हैं, तो इसमें कोई स्टिग्मा या कोई शर्माने या घबराने की बात नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, पर ट्रीटमेंट सरल है और बहुत ही कामयाब ट्रीटमेंट है।
1: जब हमें ये पता चल गया कि हमें थायराइड तो हो ही गया है, उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, और
0: जी
1: आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना, हम क्या देखते हैं कि हमें थायराइड है, हाइपर है, या दूसरे वाले, तो चलो हम ऐसे करते हैं उसके, देखते हैं कि और उसके नुस्खे क्या हैं, कि इन दवाइयों से छुटकारा मिल जाए और हम उस नुस्खे से अपने आप को ठीक कर लें। तो ऐसे में आप हमारी बहनों को क्या समझाएंगे?
0: सोशल मीडिया मुझे लगता है ये एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसमें हो सकता है काफी हद तक अच्छी बातें भी बताई जा रही हो, बट काफी ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें देखे हैं जहां बिल्कुल गलत एडवाइस दी जाती है। ऐसी गलत एडवाइस को देख के जो हमारे किशोर या यंग लोग हैं वो उनपे गलत प्रभाव पड़ता है, वो दवाइयां लेना छोड़ देते हैं। अब ये बिल्कुल ही गलत है। सोशल मीडिया पे मिलने वाली जो सीख है उसमें कितनी सही है कितनी नहीं, इसका पता लगाना मुश्किल है। इसीलिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने डॉक्टर को संपर्क करिए,
1: जी
0: उनकी देखरेख में इलाज लीजिए, और अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ देखा भी है तो उसको आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। उसको अंधाधुंध या ब्लाइंडली फॉलो करना ये बिल्कुल गलत है।
1: हम कहते हैं कि दवा तो हमें तब असर करेगी जब हम अपना खाना अच्छा करेंगे, तो क्या थायराइड में भी ये बात है कि हमें कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना जो वो नहीं खाना चाहिए, कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए जिससे कि हम लाइफ लॉन्ग जो है अच्छा जीवन बिता पाएं?
0: जी, हाइपोथायरॉयडिज्म में काफी हद तक खाने पीने का भी इम्पोर्टेंट रोल है। पहली बात, अगर हम अनियमित रूप से खाना खा रहे हैं जिस वजह से हमारा वजन अत्यधिक बढ़ रहा है, तो वो चीज ही अपने आप में TSH हार्मोन के लेवल को बढ़ा सकती है, तो वो एक चीज है। दूसरी चीज क्या, जब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई, हम दवाइयां ले रहे हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं, ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि कुछ चीजें हैं जो कि थायरॉयड ग्रंथि के काम करने को गलत तरीके से इफेक्ट कर सकती हैं, जिनको गोइट्रोजेंस भी बोला जाता है, जिनमें आमतौर पर गोभी, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इस फैमिली की सब्जियां आती हैं। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम ये सब खाना बंद कर दें, तो इसका सरल जवाब यह है कि खाना बंद नहीं करना है, उसको आपको अच्छी तरह से पका के अच्छी से कुक्ड फॉर्म में लेना है और बहुत अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसी खाने की चीज है जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी डाइट लीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि थायराइड की जो आप टैबलेट खाते हैं उसके 1 घंटे बाद तक आपको कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी चाय कॉफी को अवॉइड करना है, मतलब नहीं लेना है, उसके बाद आप ले सकते हैं। ये चीज हमको ध्यान रखनी है।
1: तो बहनों, अगर पता चल गया है कि थायराइड है तो घबराना नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब कहें वैसे ही आपको काम करना है, और आप पूरी उम्र जो है वो स्वस्थ रहेंगी, और इस डर से दूर रहिए कि मुझे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारी बहनों को इतनी अच्छी और उत्तम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कमलेश, अभी हमारी बहनों ने बातचीत सुनी थायराइड और महिलाओं का स्वास्थ्य है, और डॉक्टर अंशिता अग्रवाल से बातचीत कर रही थी हमारी बहन कमलेश मुद्गल। और डॉक्टर अंशिता अग्रवाल ये सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। इन्होंने हमारी बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस दवाइयों का ध्यान रखना होता है, फिर उसके बाद जीवन जो है वो सहज रूप से चलने लगता है।
1: बिल्कुल, और जीवन के साथ साथ जब हमारे घर परिवार में खुशियाँ रहती हैं और परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते
2: बिल्कुल
1: हैं तो बहुत ही अच्छा
2: अच्छा
1: लगता
2: लगता है।
1: है।

0: और यमुना हमारी बहनें जो हैं, अब जैसे कि हर चीज़ में क्रांति आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। और जैसे कि आज 19 जुलाई है, हमने बहनों को शुरू में ही बताया था कि आज के दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो देखो, बैंकों में खाते खोलने के साथ साथ अब जो हमारी बहनें हैं वो सिर्फ इतना ही सीमित नहीं रही हैं, वो बहुत आगे तक बढ़ गई हैं। और ये जो बदलाव आया है, ये नई नई तकनीक आने के कारण आया है, उसमें से जो ई कॉमर्स है वो भी एक ऐसा ही क्रांतिकारी बदलाव बनकर उभरा है।
1: और
0: अब
1: जब हम क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं तो जो हमारी बहनें हैं जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करती हैं
0: बिल्कुल
1: अपना जो उनका स्मार्टफोन है उसके माध्यम से, पहले तो देखो बच्चों को जब हम करते देखते थे तो ये बोलते थे क्या तुम सारे दिन फ़ोन पर लगे
0: बिल्कुल
1: रहते हो, उंगलियाँ घुमाते रहते हो, कभी ऑनलाइन कुछ आपको देना है, कभी ऑनलाइन कुछ मंगवा रहे हो घर पर, ये तुम मतलब क्या कर रहे हो।
0: बिल्कुल
1: लेकिन अब धीरे धीरे उसकी महत्ता जो है हमारी बहनों को भी समझ में आ गई, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं उनके लिए तो ये बहुत ही वरदान साबित हुआ है।
0: बिल्कुल। और देखो कमलेश, जैसे जो हमारी बहनें हैं या जो थोड़ी बड़ी उम्र की हमारी बहनें हैं, जब वो बच्चों को ऐसा करते हुए देखती थी ना, तो उनको ये लगता था पता नहीं क्या बवाल है, कितना कठिन काम होगा। मगर कहते हैं ना कि जब आप उस तरफ खुद कदम बढ़ा देते हो तो पता चलता है बहुत ही आसान है।
1: और जब हम धीरे धीरे अपने बच्चों से सीखते भी हैं तो बच्चे कहते हैं ठीक है हम आपको भी चीज़ मम्मी सिखा देते हैं
0: बिल्कुल
1: ताकि आपको बार बार किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े, या ऐसा ना सोचो आपके भी मेरे को तो ये चीज़ आती नहीं है। और हमारे
0: बिल्कुल
1: बच्चे भी बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही समझदार है। देखो अब मैं तारीफ़ कर रही हूँ, पहले खिंचाई करी अब तारीफ़ हो
0: सही
1: रही है
0: बात
1: आप
0: है,
1: लोगों
0: बिल्कुल
1: की
0: बिल्कुल
1: कि वो इन चीज़ों में बहुत ही आगे हैं। और जब उनसे सिखाने की बात करते हैं तब भी वो हम लोगों को सिखाते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: देखो कितना अच्छा लगता है कि भाई जितने भी आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही मिल गए हैं और ऑनलाइन ही आपको पता चल जाए कि भाई हमारा जो अचार है वो कौन सी जगह चला जाएगा, जो हमने इतनी अच्छी पारंपरिक जो साड़ी पर एक कढ़ाई करी है वो हमारी कहाँ जानी है, तो वो भी हमारा
0: बिल्कुल।
1: चला जाएगा।
0: और देखो कमलेश जी, जो बात आपने कही, तो महिलाएं जो अचार पापड़ बना रही हैं, अब उनको वो ई कॉमर्स के जरिए सीधा ग्राहकों तक भी भेज पा रही हैं।
1: बिल्कुल
0: अब उसमें बिचौलिए नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको जो आय है वो अधिक हो जाती है और उनको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बिचौलियों का खात्मा हो गया। और देखो ई कॉमर्स ने, ये जो नई नई चीज़ें आई हैं, सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुलभता, डिजिटल क्रांति, इन्होंने घर बैठे महिलाओं को रोजगार भी दिया है। तो जो महिलाएं घर, मतलब घर में ही रहकर काम करना चाहती हैं, वो भी अपना व्यवसाय बहुत अच्छे से चला पा रही हैं। और इसी तरह से सरकारी और गैर सरकारी पहल, जैसे आप बता ही चुकी हैं हमारी बहनों को कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, उसमें तो ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: हमारी बहनें इन सब से जुड़कर एक नई शुरुआत कर रही हैं, सीख रही हैं, सीखने के साथ साथ कमा भी रही हैं और एक तरह से अपनी पहचान बना रही हैं, अपने हुनर को एक नया नाम दे रही हैं।
1: और इससे पता चलता है कि जो महिलाओं की जो क्षमता है, उनका स्वाभिमान है और जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता है
0: बिल्कुल
1: उसकी एक ये नई लहर है, तो
0: बिल्कुल
1: हम बड़े ही मतलब इतने खुश हो जाते हैं। और कई बार कहते हैं इसे अपने कॉलर ऊपर कर लेते हैं क्योंकि
0: बिल्कुल
1: अब तो हम भी धीरे धीरे इन
0: सही
1: चीज़ों की
0: बात
1: तरफ
0: है,
1: आगे
0: बढ़ते
1: बढ़
0: हैं।
1: रहे हैं।
0: और देखो फिर हमारे मन में क्या आता है, आज मैं ऊपर और आसमान नीचे।
1: क्या बात है।

0: और कमलेश, अब देखो जैसे कि मौसम बदल रहा है और वर्षा जो है बारिश होने वाली है, तो अब इस समय देख ही रहे हैं कि जैसे कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है, कई जगह पर कम होती है। तो ऐसे समय में हमें अपनी फसलों को बचाए रखना है, वो तभी हो सकता है जबकि हम जल को बचाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके लिए एक अभियान है, कैच द रेन अभियान।
1: और इसमें हम ले जल संचय का संकल्प, क्योंकि जल है तो हम है, और
0: बिल्कुल
1: हमें करना क्या है, जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाना
0: बिल्कुल
1: है, सही जगह चुननी है, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाने हैं, और जो अन उपयोगी बोरवेल है उनको ठीक कराकर जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको
0: बिल्कुल
1: रिचार्ज होने में हमें मदद करनी है, जो हमारे कुएं या जो पारंपरिक जल संरचनाएं जो थी ना उनको हमें संवारना है और इस्तेमाल के लायक उनको
0: बिल्कुल।
1: बनाना है।
0: और देखो, मानसून के जल का अधिकतम संचयन करने से क्या होगा कि जो आसपास के तालाब जलाशय होंगे वो पूरी तरह से भर जाएंगे और हमारी जो जल क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जल ग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इसको ग्रीन कवर को हमें करना है, बढ़ावा देना है, जिससे कि जो हमें पानी की कोई समस्या ना हो, क्योंकि जल है तो हम हैं।
1: बिल्कुल, और जल है तो हमें, इसके साथ साथ तो मैं अपने बहनों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है इसका भी हमें ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल
1: और ये क्यों आरंभ की गई है, इसका उद्देश्य है जो हमारे रासायनिक उर्वरक डालते हैं जैसे यूरिया है, डीएपी
0: बिल्कुल
1: है, उसका हम कई बार अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो उसको उपयोग को कम करने में, कहते हैं ना अति तो हर चीज़ की
0: बिल्कुल
1: बुरी
0: सही
1: होती है,
0: बात है,
1: तो उस अति को जो है वो हमें संतुलित करना है।
0: बिल्कुल सही बात है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो सब्सिडी है उसका बोझ भी कम हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सरकार द्वारा रासायनिक खादों पर दी जाने वाली भारी भरकम जो सब्सिडी है वो नियंत्रित रहती है, और फिर वैकल्पिक खादों को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि आपने कहा कि जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना है, जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं उनको ऑर्गेनिक खाद और नैनो यूरिया डीएपी के प्रयोग को प्रोत्साहित भी करना है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और इससे क्या होगा कि जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बल मिलेगा, और जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुकूल ही टिकाऊ कृषि जो है तकनीक है उनको भी अपनाएंगे, और जो हमारी कृषि जो है वह उन्नति करेगी, और सबसे बढ़िया कि जो हमारी धरती माता है उसका जो स्वास्थ्य है वो
0: बिल्कुल
1: भी तो सही लगेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि कम लागत होगी तो बेहतर फसल होगी, पर्यावरण और जल संरक्षण अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सुरक्षा रहेगी, क्योंकि रासायनिक अवशेषों से

0: और कमलेश जो हमारी बहनें हैं वो हर चीज में बहुत आगे हैं। इसके साथ साथ प्रारंभ से ही जो हमारा देश है यहाँ से ऐसी वीरांगनाएं निकली हैं जिन्होंने हम सभी को प्रेरणा दी है और यह बताया है कि सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। आज हम जिस वीरांगना के बारे में अपनी बहनों को बताएंगे वो एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने 21 साल की उम्र में पढ़ते हुए ही ऐसा दुस्साहस दिखाया था जो आज भी हमें न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि हमें यह बताता है कि देश के लिए हमें कुछ भी करने के लिए हर क्षण तैयार रहना चाहिए,
1: और वो है वीरांगना बीना दास।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम बात करते तो देखो रोंगटे खड़े हो जाते कि उस समय कम उम्र में भी सभी लोगों के मन में एक भाव था अपने देश के लिए, देश प्रेम था और देश के लिए एक मर मिटने की जो एक बात होती वो थी। और बीना दास जो थी कोलकाता के बैथुन और डायोक्सिन कॉलेज की मेधावी छात्रा थी। पढ़ाई के दौरान ही वे क्रांतिकारी संगठन युगांतर और छात्राओं के संगठन छात्री संघ से जुड़ गई थी।
0: और देखो 21 साल की उम्र में जब ये डिग्री लेने के लिए गई तो इन्होंने गवर्नर पर गोली चलाई थी और बच गए। और तब इन्होंने कहा था कि मेरा उद्देश्य अपने देश को और देशवासियों को बचाना है जो कि ब्रिटिश सरकार उनका शोषण कर रही है, और इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
1: तो इन्हें हम नमन करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: और जो ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं इसके पीछे भी ये हमारी बहुत ही मेहनत होती है, और हमारे साथ साथ जो हमारी पूरी टीम होती है उसकी पूरी मेहनत होती है। और ये बात हम इसलिए कहते हैं कि आप अपने उपयोगी विचार हमें दीजिए, आपको ये कार्यक्रम कैसा और इसमें क्या चाहिए वो आप हमें बताएंगे, तभी तो इस कार्यक्रम को और अच्छा हम बना पाएंगे।
1: तो इसीलिए हमारी जो बहनें हमें ईमेल करना चाहती हैं वो हमें मेल कर सकती हैं feedback@gmail.com पर, और अगर हमें पत्र लिखना चाहती हैं तो आप हमें भेज सकती हैं कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
0: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल। और ये बातें हम बार बार अपनी बहनों को इसलिए बताते हैं कि जो हमारी बहनें हमसे जुड़ती हैं, कुछ बहनें तो काफ़ी सालों से हमसे जुड़ी हैं, कुछ जब हम बताती हैं कि देखो इस समय पर ये कार्यक्रम आता है तो आपको ये कार्यक्रम सुनना चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने हमें सुनना आरम्भ किया है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि यदि आप अपने छोटा सा सुझाव हमें देंगी, और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारी कमियां हैं उनको भी बताएंगे ताकि हम अपनी कमियों को सही कर लें।
1: और इसके साथ साथ आप हमें जानकारी भी दे सकते हैं जिससे हम उसे कार्यक्रम में जोड़कर कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बना सकें।
0: बिल्कुल, और इसी अच्छी शुभकामना के साथ अब अपनी बहनों को कहें
1: बहनों राम राम, राम।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध

दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुबिनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। गीत की धुन सुनकर हमारे बहुत सारे श्रोता जान गए होंगे कि आज हम आपके लिए कौन सी फिल्म लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसने प्रेम, परिवार और परंपराओं की नई परिभाषा लिखी। एक ऐसी फिल्म जिसने सिनेमा घरों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और आज भी

करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की, जो 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई।

साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम लाए हैं आपकी अपनी मन पसंद हर दिल अजीज फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यानी DDLJ। फिल्म का निर्देशन किया था आदित्य चोपड़ा ने। ये उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी। जी हाँ, पहली निर्देशन की फिल्म जिसमें मिली उनको अपार सफलता। फिल्म का निर्माण यश चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले किया। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में पर्दे पर नजर आए शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, अनुपम खेर, परमीत सेठी आदि।

बताओ, आप सुन रहे हैं अपनी मन पसंद फिल्म DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अपने मन पसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। और आज ये फिल्म लेकर आई है आपकी मन पसंद दोस्त तृप्ति जौहरी, आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आइए जल्दी से फिल्म की कहानी की बात कर लें। फिल्म की कहानी कुछ संक्षिप्त में इस प्रकार है। लंदन में रहने वाली सिमरन अपने सपनों की राजकुमार की कल्पना करती है। यूरोप यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात होती है राज से। शुरुआत में दोनों के बीच में तकरार होती है, लेकिन धीरे धीरे यही नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। दूसरी ओर सिमरन के पिता ने बचपन में ही उसका रिश्ता पंजाब में अपने मित्र के बेटे कुलजीत से तय कर रखा है। राज चाहता तो सिमरन को लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने फैसला किया वो सिमरन के परिवार का दिल जीत कर ही उसे अपने साथ ले जाएगा। यही बात, जी हाँ, यही बात इस फिल्म को अन्य प्रेम कहानियों से अलग बनाती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने भारतीय सिनेमा में रोमांस का नया दौर शुरू किया। इस फिल्म ने ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि परिवारों के सम्मान और विश्वास को साथ लेकर चलने का नाम है। आज भी नई पीढ़ी इस फिल्म को उतने ही उत्साह से देखती है जितना 1995 में दर्शकों ने देखा था और चाहा था। इसकी गवाही देता है मुंबई का मराठा मंदिर सिनेमाघर, जिसमें ये फिल्म वर्षों तक लगातार प्रदर्शित होती रही, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड माना जाता है।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आप और भी समझदार बन गए होंगे, क्योंकि आप हैं ही हमारे इतने समझदार श्रोता। आपने ट्यून किया है अपना समझदारी भरा, जानकारी भरा, रोचकता से भरपूर चैनल इंद्रप्रस्थ, और जुड़े हुए हैं इस वक्त अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से और सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और हमारी आज की फिल्म है DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें अगर हम करें तो इस फिल्म से आदित्य चोपड़ा ने निर्देशन की शुरुआत करी और बेहतरीन शुरुआत हुई, ये तो आप सभी जानते हैं। क्या आपको पता है पहले राज की भूमिका के लिए टॉम क्रूज का नाम भी विचार में आया था, लेकिन बाद में ये किरदार शाहरुख खान को मिला। जी हाँ, शाहरुख खान शुरुआत में रोमांटिक भूमिका करने

को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे, लेकिन बाद में यही किरदार उनके करियर की पहचान बन गया। फिल्म ने कई राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसा डायलॉग आपको याद आ गया होगा ना? और जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये भी डायलॉग आपको याद आ गया होगा ना? आज भी ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं अधिकतर जुबान पर आ ही जाते हैं। आप बताएं आपको कौन कौन सी बातें इस फिल्म से जुड़ी खास लगती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी तो आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनको चलिए मैं बता देती हूँ। हमारी ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल जो इस फिल्म को और भी खास बनाता है, अपना बनाने में खास योगदान दिया था, वो था इस फिल्म का कर्णप्रिय संगीत, जिसे तैयार किया जतिन ललित ने और गीत लिखे आनंद पक्षी ने। फिल्म के सभी गीत सुपरहिट रहे, ऐसा आप भी मानते हैं ना?

शाबा शाबा तो हम भी कर रहे हैं स्टूडियो में, और उम्मीद करते हैं शाबा शाबा आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि गीत और संगीत ही इतना कर्णप्रिय है आज की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, क्योंकि आज की फिल्म है ही ऐसी। और देखिए ना, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन भर चुका है आपकी ईमेल से, लगातार आ रहे हैं आपके संदेश। तो चलिए ले लेते हैं सबसे पहला संदेश। सबसे पहला संदेश हमको मिला है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और आप लिखते हैं शुक्रिया धन्यवाद आपका। तो शुक्रिया तो हम आपका अदा करना चाहेंगे साथी, कि आपने प्रोग्राम सुना और उसके साथ ही तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया भेजी। इसके साथ ही हमारे को जो संदेश मिला है, ये हमारा संदेश आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। आप हमारे साथी हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और उनके साथ हैं खुशी गोस्वामी, और आप लिखते

हैं हमारे साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से पेश करता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बहुत अच्छा लग रहा है एक फिल्म की स्टोरी सुनकर, धन्यवाद आपका। और अगला का जो संदेश है वो कार्यक्रम में हम ले रहे हैं, ये हमारा संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल पूजा परिहार जी का, और ये लिखते हैं बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, बेहतरीन नगमे रोचक किस्से कहानी नगमे के साथ बेहतरीन जानकारी आप दे रहे हैं, हम भी प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। तो इससे बेहतरीन बात क्या होगी कि आपको कार्यक्रम बेहतरीन लग रहा है। और ये हमारे जो अगले साथी हैं राम राम जी प्लीज़ एनी सॉन्ग जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित, तो ये साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे और जो साथी जुड़े हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष खड़गे और विनोद खड़गे, ये साथी हमारे जुड़े हैं और ये लिखते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आपने अपने समय की सबसे लोकप्रिय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्टोरी गीत और अनसुने फैक्ट्स पर बहुत सुंदर जानकारी दी, सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका तहे दिल से संतोष खड़गे और विनोद खड़गे जी कि आपने इतने ध्यान से कार्यक्रम को सुना। अगला संदेश आया है ये है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, आप हमारे साथी हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख डॉक्टर प्रशांत राजे पोता कुमार संचित वायल पोता कुमार प्रथमेश देशमुख हर्षद प्रणाली सर्वत देशमुख सानवी देशमुख और हर्षद देशमुख, और ये लिखते हैं एक ही फिल्म से प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है और ये प्रोग्राम हम हर दिल ना ही इस प्रोग्राम में फिल्म के बारे में ज्ञानवर्धक मालूमात दी जाती है, धन्यवाद साथी कि आप इतने गौर से प्रोग्राम सुनते हैं। इसके साथ ही अगली जो मेल आई है वो है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, और ये लिखते हैं आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज की फिल्म का बेहतरीन जानकारी दिलचस्प किस्से और दिल को छूने वाले गाने बहुत ही सुकून दे रहे हैं, आपको उत्कृष्ट उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद कोटि कोटि आपका दिग्दर्शन गौड़ जी। और अगली जो मेल है ये है हमारे साथी सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से, और आप लिखते हैं आदरणीय तृप्ति जौहरी जी, तो आप आदरणीय नहीं भी लिखेंगे प्यार से तृप्ति लिखेंगे वो भी हम कबूल करेंगे, सादर प्रणाम कार्यक्रम सुन रहे हैं और जिसमें आज आप बात कर रही हैं फिल्म DDLJ की मधुर प्रस्तुति मोहक जानकारी और मन भावन गीत मस्त कार्यक्रम मन से बड़ी वाली बधाई ओ धन्यवाद, आपका दिवस और जीवन बहुत मंगलमय हो कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और अगला संदेश है संदीप मक्कड़ जी का, ये ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत कमल पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से आप साथी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और अगले जो साथी हैं रोजी डिकेस्ट्रो ये लिखते हैं नमस्कार जी हम भी आपके प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पल डिकेस्ट्रो विलिस डिकेस्ट्रो, साथियों एक गुजारिश हम भी आपके दिल से करना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट हमारी भी दिल से एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़ कि बहुत सारे साथी हमारे बार बार संदेश भेजते हैं जिसके कारण हम बहुत से साथियों की रिक्वेस्ट को ईमेल्स को हम पढ़ नहीं पाते और उनकी जानकारी रह जाती है, तो प्लीज़ उनकी भी ईमेल हम शामिल कर पाएँ अधिक से अधिक संदेश हम शामिल कर पाएँ तो उनको भी जगह दीजिए और बार बार ईमेल्स ना भेजें। अगली जो ईमेल आई है आदरणीय प्रसारक जी को प्यार भरा नमस्कार, और ये हैं हमारे साथी अनिल बुरांडे जी, और अगली जो आई है ये आई है प्रकाश वर्मा झगाराम साहू राजकुमार डूडी राम शरण, और बहुत सारी ईमेल हम शामिल भी कर चुके हैं। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं इस फिल्म का अगला।

तो श्रोताओं, यही थी हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कहानी और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी तरह फिल्मों के सुनहरे सफर और उनसे जुड़े अनकहे किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज के कार्यक्रम से अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए इजाजत, लेकिन छोड़े जाती हूँ इस फिल्म के एक खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। कल शुरू हो रहे पार्लीमेंट के मानसून इजलास तो पहला अज सर्व पार्टी मीटिंग हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोलदोवा उत्तरी मैसेडोनिया ते रोमानिया के दौरे लई रवाना हो गए ने। जम्मू कश्मीर च अज सवेरे पुंछ जिले च भारी मीह ते जमीन खिसकण कारण घट्टो घट चार लोगों की मौत हो गई ते कई होर लापता ने। दो वार दी ओलंपिक तमगा जेतु पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट का खिताब जीत लिया है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल अज रात अर्जेंटीना ते स्पेन विचकार होगा। संसद के मानसून इजलास तो पहला सरकार वालों बुलाई गई सर्व पार्टी मीटिंग अज संसद कंपलैक्स विच शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग की प्रधानगी कर रहे ने। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ते राज्यसभा विच सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मीटिंग विच मौजूद ने। श्री रिजिजू ने विरोधी पार्टियां नूं कार्रवाई च सहयोग देण लई कहा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं

0: से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: पहला मीटिंग शुरू होने तो तुरंत बाद विरोधी पार्टियां विरोध विच वॉकआउट कर गईयां। मीडिया नाल गलबात करदिआं तृणमूल कांग्रेस के संसद मैंबर महुआ मोहित्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी समेत सारियां विरोधी पार्टियां ने मीटिंग का बायकाट किया। उन्होंने इल्जाम लाया कि सर्व पार्टी मीटिंग विच बुलाई गई नैशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद विच मानता प्राप्त पार्टी नहीं है।
2: Opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPT have all walked out of all party meeting in protest. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest.
1: हालांकि विरोध दर्ज कराने तो बाद कांग्रेस संसद मैंबर जय राम रमेश, सीपीआईएम दे जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा दे संसद मैंबर महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस दे संसद मैंबर महुआ मोहित्रा समेत विरोधी धिर दे नुमाइंदे मीटिंग विच शामिल होए। आने वाले मानसून समागम दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों ते चर्चा ते पास होने की संभावना है। इस मीटिंग राही सरकार संसद दे दोवां सदनां दे सुचारू कामकाज नूं यकीनी बनाउण लई सारियां सियासी पार्टियां तों सहयोग मंग रही है। संसद का मानसून समागम कल तो शुरू होगा ते अगले महीने की 13 तरीक तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज मालदोवा, उत्तरी मैसेडोनिया ते रोमानिया के दौरे ते रवाना हो गए ने। दौरे के पहले पड़ा ते श्रीमती मुर्मू मालदोवा पहुंचणगे। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मालदोवा का पहला दौरा होगा। दौरे दौरान वह मालदोवा के राष्ट्रपति माइया सैंडू नाल वफद पदरी गलबात करनगे। वह मालदोवा की संसद के स्पीकर नाल भी मुलाकात करनगे। इस तो अलावा राष्ट्रपति मालदोवा भारत संसदीय दोस्ती समूह के मैंबर भी गलबात करनगे। वह भारत मालदोवा व्यापार फोरम संबोधन करनगे ते भारतीय भाईचारे के मैंबर मुलाकात करनगे। दौरे के दूजे पड़ा ते राष्ट्रपति मुर्मू 21 तो 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया च होणगे। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का भी पहला दौरा होगा। दौरे दौरान वह मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिलियानोवस्का दावकोवा नाल दुवल्ली गलबात करनगे। वह प्रधानमंत्री ते संसद दे मुखी नाल भी मुलाकात करनगे। अपने तीन देशों दे दौरे दे आखिरी पड़ा विच राष्ट्रपति मुर्मू 23 तो 25 जुलाई तक रोमानिया का दौरा करनगे। इस दौरे दौरान वह रोमानिया के राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री, सैनेट के प्रधान ते रोमानिया भारत संसदी दोस्ती समूह के मैंबर नाल मुलाकात करनगे। वह भारत रोमानिया व्यापार फोरम नूं भी संबोधन करनगे ते भारतीय भाईचारे के मैंबर नाल गलबात करनगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज सवेरे नवी दिल्ली विच ज़ांज़ीबार दे राष्ट्रपति दे रेवोल्यूशनरी कौंसल दे चेयरमैन डॉ हुसैन अली मबनी नाल मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि मुलाकात दौरान दोहां नेतावां ने उच्च सिख्या, समर्था निर्माण, पानी सप्लाई, सेहत, एआई, डिजिटल तकनालोजी अते होर तरजीही खेतरां विच भारत तंजानिया सहयोग नूं वधाउण ते चर्चा की। ज़ांज़ीबार तंजानिया दा एक नीम खुद मुख्तियार इलाका है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा ते झंडा है। यह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्सटेंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर ते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। जम्मू कश्मीर विच अज सवेरे पुंछ जिले विच भारी मीह कारण जमीन खिसकण ते अचानक हड़ आउण कारण तीन औरतां समेत घट्टो घट्ट 4 लोकां दी मौत हो गई ते कई लापता हो गए ने। साडे जम्मू वाले पत्रकार ने खबर दित्ती है कि सारियां मौतां सब तों वध प्रभावित सुरनकोट तहसील च होईआं, जिथे अधिकारियां ने बचाव टीमां तैनात कीतीआं ने ते फसे हुए लोकां तक पहुंचण, प्रभावित इलाकिआं नूं साफ करन ते भारी मीह तों प्रभावित लोकां नूं तुरंत सहायता प्रदान करन लई राहत कार्य तेज कर दित्ते गए ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगातार मीह ते हड़ां तों बाद राजौरी ते पुंछ विच बचाव ते राहत कार्यां दा जायजा लिया है। उपराज्यपाल स्थिति ते नेड़े नजर रख रहे ने। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरां अते सीनियर अधिकारियों नूं सारे प्रभावित परिवारां नूं तुरंत सहायता प्रदान करने के निर्देश दिते ने। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ विच अचानक हड़ां अते जमीन खिसकण कारण होए जानी नुकसान ते डूंघा दुख प्रगट किया है। उन्होंने दुखी परिवारां नाल दिलों संवेदना प्रगट की ते जख्मियां दे छेती ठीक होने की प्रार्थना की। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਪੁਲਿਸ

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मदऊ किए जाने पर अलामती वॉक आउट किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोर शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल नई दिल्ली में सरकार की जानिब से बुलाई गई सभी पार्टियों की मीटिंग जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जनाब किरण रिजिजू ने

0: मीटिंग से पहले इजहार ख्याल करते हुए सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो मानसून इजलास के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने के लिए ताउन करें।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ के अरकान कानून साजी के कामकाज में तामीरी अंदाज से हिस्सा लेंगे। इधर मीटिंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद अपोजिशन पार्टियों ने शुरू में मीटिंग से वॉकआउट किया। मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूरी अपोजिशन की पार्टियों ने एहतजाज में मीटिंग से वॉकआउट किया। मोहतरमा महुआ मोइत्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि आज की मीटिंग में शिरकत करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया कोई तस्लीम शुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। अलबत्त अपना एहतजाज जाहिर करने के बाद अपोजिशन के अरकान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रिटस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से तीन ख्वातीन समेत कम से कम चार अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि ये सभी अमवात सबसे ज़्यादा मुतासिरा सूरनकोट तहसील में हुई हैं। हुकाम ने फंसे हुए लोगों तक पहुँचने के लिए इमदादी कार्रवाई तेज़ कर दी है। पुंछ के नूनाबांदी गांव में एक मकान के गिरने से एक खातून की मौत हो गई। उनके शौहर और 2 साल से लेकर 6 साल तक के 3 बच्चों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और अचानक सैलाब आने के तनाजुर में राजौरी और पुंछ में बचाव और इमदादी कार्रवाई का जायज़ा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून रहें और सरकारी ज़राए से हासिल होने वाली ताज़ा जानकारी पर अमल करें। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक सैलाब आने से लोगों की मौत होने पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद राजौरी कस्बे में अचानक सैलाब आ गया। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने के तनाजुर में सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। दरियाओं के किनारों में शगाफ पड़ गए हैं और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर बहने की वजह से दर्जनों मोटर गाड़ियाँ या तो पानी में बह गईं या जेरे आब आ गई हैं। सरकारी और प्राइवेट इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की मुआवनत से बचाव और इमदादी टीमों ने मुतासिरा कुंभों को बचाकर बाहर निकाला है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की और राजौरी ज़िले में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब अमित शाह ने मुतासिरा लोगों की सलामती और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। मौसमियात महकमे ने अगले चंद रोज़ के दौरान खित्ते में दूर दूर तक बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज़ बौछार पड़ने की पेशगोई की है। दूसरी तरफ कटरा की सब डिविज़नल इंतज़ामिया ने बारिश के मौसम के दौरान तेज़ी के साथ कार्रवाई करने और बेहतर तालमेल के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वहां के बाशिंदे कटरा मानसून कंट्रोल रूम से रुजू करके इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला दे सकते हैं या मदद हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर इस तरह है 01991295681। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा हिल्स में ख़राब मौसम के मद्देनज़र श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब भी मुअत्तल है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि नामुवाफिक मौसम के तनाजुर में अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर एहतियाती इकदाम के तौर पर यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा दोबारा शुरू होने के ताल्लुक से सरकारी वसीलों के तवस्सुत से ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیہ کے

दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया मोलदोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने हमनसब मया संधु के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोलदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मोलदोवा का ये अव्वलीन दौरा है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मंगल के रोज़ शिमाली मकदूनिया जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में जुमेरात को रोमानिया पहुंचेंगी। आज अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे का योम पैदाइश मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंगल पांडे ने मादर वतन की शान और अजमत को सरबुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने हेरा फेरी करके बनाई गई दस्तावेजात के मामले पर बढ़ती हुई तश्वीश के तनाजुर में सख्त वार्निंग दी है और जांच के लिए ओएमआर शीट्स जमा कराने के बारे में तलबा और वालिदैन के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने बताया है कि जांच के लिए हाल ही में जो ओएमआर शीट्स दाखिल की गई हैं उनमें से कई फर्जी या एआई की मदद से तैयार की गई हैं। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ियों और ओलंपिक में दो बार तमगे जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। वो जापान में बड़ा टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो में खेले गए फाइनल में सिंधु ने आलमी नंबर 3 जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से हरा दिया। आज रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला यूरोप की मजबूत टीम स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन एक रोज़ा मैच आज लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। अपोजिशन ने मीटिंग में एनसीपीआई को मधु किए जाने पर अलामती वॉकआउट किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और अचानक सैलाब आने से कई अफराद की मौत हुई है और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। मरकज ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोलदोवा शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन का टाइटल जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: पर्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने

0: आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब

0: जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, आपने हमें याद किया और हाजिर हो गए हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है एक ही कलाकार। और आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

दोस्तों, आप इस गाने को सुन रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आपने पहचान ही लिया होगा कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं। जी हाँ, वे हैं जाने माने और समानांतर सिनेमा के साथ साथ कमर्शियल सिनेमा में अपनी शानदार एक्टिंग से, अभिनय से हम सभी का दिल जीतने वाले नासिरुद्दीन शाह साहब। ये हैं हमारे आज के कलाकार।

खय्याम साहब के संगीत में और भूपिंदर सिंह साहब की आवाज़ में आप सुन रहे हैं बाजार फिल्म का ये दिल को छू जाने वाला नगमा।

दोस्तों, नसरुद्दीन शाह साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक नवाब परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एंसलप अजमेर में और सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल से पूरी किया। इसके अलावा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इसके बाद दिल्ली आ गए और यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनको अभिनय सीखने का मौका मिला और उन्होंने वहाँ से अपने अभिनय करियर की एक तरह से कहें कि शुरुआत की, क्योंकि इस NSD से कोर्स करने के बाद ही उन्होंने अपने करियर का डेब्यू जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल साहब की प्रसिद्ध फिल्म निशांत से की, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। और अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से नासिर साहब समानांतर सिनेमा यानी पैरेलल सिनेमा और व्यवसायिक सिनेमा यानी कि कमर्शियल सिनेमा में बराबर की पकड़ रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी समानांतर सिनेमा

में काम किया, जैसे कि आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अर्ध सत्य, बाजार और जाने भी दो यारो। इसके अलावा अगर कमर्शियल सिनेमा की बात करें तो उन्होंने त्रिशूल, मोहरा, सरफरोश, इश्किया, द डर्टी पिक्चर जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनाई, किस फिल्म के साथ जरूर आपको बताएंगे, लेकिन

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्होंने लिखा है, अरुणेश भाई नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और आपने लिखा है कि आपके ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बेहद ही प्यारे से गाने आप जो सुनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश आया है और ये आया है रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और किशु विधान। इन्होंने लिखा है कि आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत खयाम साहब के संगीत में किया और जो आपने नगमा सुनाया करोगे याद तो हर बात याद आएगी, और इसके बाद आप ओए ओए यानी अभी जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं तिरछी टोपी वाले, उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। ये बहुत ही ध्यान से आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी तारीफ के लिए, आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, नासिर साहब की फिल्मों में जो उन्होंने किरदार निभाए हैं वो हमें और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो उनकी फिल्मों को देखते हैं वो बेहद ही यादगार किरदार उन्होंने निभाए हैं अलग अलग फिल्मों में। और जब भी नासिर साहब की बात होती है तो एक फिल्म मासूम जो कि 1983 में आई थी, इसका जिक्र ज़रूर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में शबाना आज़मी के साथ नसरुद्दीन साहब ने बेहद ही दिल को छू जाने वाला अभिनय किया है। और इस फिल्म के गीत के बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसी फिल्म से एक बेहद ही प्यारा सा दिल को छू जाने वाला गाना आपको सुनवाते हैं अनूप घोषाल साहब की आवाज़ में।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में समय के साथ मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक दोस्ती का रिश्ता जाने माने अभिनेता ओम पुरी साहब और नसरुद्दीन साहब के बीच में दोस्ती का बहुत ही शानदार रिश्ता हुआ करता था। अपने एक इंटरव्यू में ओम पुरी साहब ने बताया था कि जब वे FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो उनके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे और तभी नसीर साहब ने उन्हें अपनी एक बहुत ही शानदार शर्ट पहनने को दी थी। इसके अलावा उन्होंने कई बार अपने दोस्तों की मदद की है। तो ऐसे प्यारे इंसान हैं हमारे नसीर साहब।

संदेश आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता का, और इन्होंने लिखा है कि हम आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप जो गाने सुना रहे हैं वो बेहद हमें पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

इसी बीच कुछ और संदेश आपके हमारे पास आए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि वेरी गुड आफ्टरनून सर जी, बहुत बहुत नमस्कार। और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपकी प्रस्तुति बेहद ही शानदार है और आपकी आवाज़ तो लाजवाब है, क्या बात है। ऐसा कह करके आप हमारी जो तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपना फीडबैक ऐसे ही दिया कीजिए। और इसके अलावा एक और संदेश आया है हमारे पास, ये है नरवेल महाराष्ट्र से, नलेश्वर PS न्यावकर, निर्मला और विशाल जी का। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस कार्यक्रम में कुछ और संदेश आपके जरूर लूं, जैसे कि एक बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार का मैसेज आया है, और जो नसीर साहब पर मैं जानकारी दे रहा हूं वो उनको बेहद पसंद आ रही है, और साथ ही में उन्होंने शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद भी दिया है। जी आपका धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताते हैं नसीर साहब के बारे में, कि जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि नसीर साहब हमारे हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं जो कि समानांतर यानी पैरेलल सिनेमा के साथ साथ कमर्शियल सिनेमा में भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। और ऐसी ही एक आमिर खान साहब के साथ उन्होंने फिल्म किया था जिसका नाम था सरफरोश, और इस मूवी में बहुत ही शानदार एक्टिंग का परिचय दिया था नसीर साहब ने। और इसी फिल्म से हम जगजीत सिंह साहब की मखमली आवाज़ में एक प्यारा सा, आपको एक प्यारी सी गज़ल सुनवाते हैं, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा।

एक और संदेश ले लेते हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अल्ताफ, आफरीन और नीलोफर का। इन्होंने लिखा है कि आपके इस कार्यक्रम को सुनकर बेहद ही मजा आ रहा है। आपकी प्रस्तुति का अंदाज बेहद ही सटीक और शानदार है। आपकी मधुर और मीठी आवाज दिल को छू जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत

दोस्तों, नसीर साहब को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। जी हाँ, साल 2001 में आई थी एक फिल्म मॉनसून वेडिंग और एक हॉलीवुड फिल्म आई थी द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। और इन फिल्मों में भी नसीर साहब ने शानदार अभिनय किया था और उन्होंने थिएटर में तो बहुत सारे नाटकों में अभिनय भी किया और साथ ही में दो निर्देशन भी किया। इसके अलावा एक फिल्म भी उन्होंने एज ए डायरेक्टर किया था, 2006 में आई थी और उस फिल्म का नाम था यूं होता तो क्या होता। और अब तक उनको 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल एवार्ड से नवाजा जा चुका है। और कला क्षेत्र में योगदान के लिए 1987 में उन्हें पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जानी मानी अभिनेत्री रत्ना पाठक से उन्होंने 1982 में शादी किया था और उनके 2 बेटे हैं, इमाद शाह और

0: दोस्तों एक और संदेश ले लेते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल और पूजा परिहार का। इन्होंने लिखा है कि अभिनेता नसरुद्दीन शाह के बारे में बेहद ही अच्छी जानकारी मिल रही है, उनकी फिल्मों के गीत जो आप हमें सुनवा रहे हैं ये भी हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में गीत संगीत के साथ साथ नसीर साहब के बारे में बातें यूं ही रहेंगी जारी। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद, बने रहिए हमारे साथ।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ, और आज के हमारे कलाकार हैं नसरुद्दीन शाह साहब, और हाल ही में उनकी एक फिल्म आई है मैं वापस आऊंगा। इस फिल्म में नसीर साहब ने बंटवारे का वो दर्द पर्दे पर उतारा है जिसे देखकर हर दर्शक की आंखें नम हो रही हैं। ये फिल्म याद दिलाती है कि किस तरह से

बॉलीवुड के फिल्म मेकर भले ही उनसे यानी नसीर साहब से थोड़ा बचकर चलते हों, लेकिन हम दर्शकों को नसीर साहब का स्क्रीन पर होना भारतीय सिनेमा के लिए बेहद यादगार पल होता है, क्षण होता है, क्योंकि इम्तियाज अली साहब की जो फिल्म मैं वापस आऊँगा हाल ही में रिलीज़ हुई है, और इस फिल्म में नसीर साहब ने उन इमोशंस को बाहर निकाला है जो हम सबके दिल के किसी कोने में छुपी हुई है। और इस फिल्म के अलावा नसीर साहब ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है जिसके बारे में हमने अपने इस कार्यक्रम में चर्चा भी किया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको, उनकी एक ही कमर्शियल सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी द डर्टी पिक्चर, इसमें बप्पी लाहिड़ी साहब और श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

और दोस्तों इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर किसी न किसी मोड़ पर आपसे इसी चैनल में होगी मुलाकात। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार फिल्म सुन रहे थे। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुन्ने बारे सबै श्रोताको वन्दना जोहरीको
1: और वन्दनाको
0: प्रेम भरो अभिवन्दन।
1: वन्दना सखी, वर्षा ऋतु आरम्भ होते ही तरिया तरिया के फल फूल की बहार आ गई है। कहूँ जामुन आम लीची मिले तो कहूँ प्रचुरता में फूलन की बहार है। और सखी, प्रकृति से प्राप्त इन पदार्थन को हम अपने ठाकुर जी को अर्पित करके उपासना करें, है ना? और संगे अपने शरीर को स्वस्थ बनावे।
2: हाँ देखो बहना, ये जो प्रथाएं है ना हमारी, प्रकृति से जुड़ाव ही तो दिखावे। प्रकृति की दिव्यता की अनुभूति हम हर सांस में करें, और यही हमारी सनातन परंपरा है कि हम हर प्रथा में हर परंपरा में प्रकृति से जुड़े रहे हैं। जैसे ब्रज में ग्रीष्मकालीन उत्सव में हम फूल बंगला की बात करें तो ठाकुर जी को शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करवे के काजे फूल बंगला में कुंजन के उपवन के दृश्य बनाए जामे, तो जे प्रकृति को ही तो उत्सव है बहना।
1: हाँ सखी, और श्री कृष्ण की तो संपूर्ण लीलाएं काऊ न काऊ रूप में प्रकृति के चारों ओर ही केंद्रित रही। ब्रज की गऊ, यमुना को तट, गिरिराज पर्वत, वृंदावन, इन सब प्रकृति के रूपन ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन में विशेष भूमिका निभाई है सखी।
2: हाँ।
1: और हमारे वेद पुराण में तो प्रकृति के रूप की पूजा करी गई है।
2: हाँ बिल्कुल, मैं ना प्राचीन काल में ग्रंथ ने यही संदेश दियो है कि जितने हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतने ही स्वस्थ बनेंगे, और जे प्रकृति भगवान को दियो बहुमूल्य उपहार ही तो है। बहना, भक्ति आंदोलन के समय जब साधु संत ब्रज में आए तो बिनन ने ब्रज के अनेक कुंज वाटिकाएं और वन उपवन देखे, तो इनते प्राप्त फल फूल बेल लता पता और लकड़ी इनको दैनिक अनुष्ठान को

0: अंग बनायो और ब्रज की पारंपरिक कलान को विस्तार कियो, जिनमें ते फूल बंगला एक ऐसी ही कला है।
1: हाँ सखी, आजकल ब्रज के मंदिर मंदिर में फूलन ते बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल बंगलान को आयोजन किया जाए। कहूँ तो फूलन के महल बनाए जाए, कहूँ कुंज और कहूँ फूल भवन। और बहना, मंदिरन में इन फूल बंगला के दर्शन ते एक दिव्यता की अनुभूति होवे।
0: हाँ
1: फूलन की सुगंध ते मन वहीं ठहर जाए, वहां ते तो आयवे को मन करे ही ना। इते एक सुंदर फूल बंगला बनाए जामे सखी वहां।
0: बहना जी, बात तो है, बड़े अनूठे अनूठे फूल बंगला ब्रज के कलाकारन द्वारा बनाए जामे। पतो है बहना, प्राचीन ग्रंथन के अनुसार पुष्प सज्जा 64 कलान में ते एक है और या कला को वर्णन ब्रज के मध्यकालीन ग्रंथन में मिले है। इन ग्रंथन में हरि भक्ति विलास, केली माल, हित 84 हैं, जिनमें पुष्प सज्जा करके ग्रीष्म की तपनते ठाकुर जी को शीतलता को सुख प्रदान करबे को वर्णन मिले है।
1: हाँ सखी, ब्रज में अक्षय तृतीया से लेके हरियाली तीज तलक यानी वैसाख जेठ आषाढ़ तक फूल बंगला के दर्शन लगभग नित्य ही ब्रज में हो कर रहे हैं।
0: बहना, इन 3 माह में प्रकृति में तरिया तरिया के फूल प्रचुरता में उपलब्ध है जा में। बेला, मोंगरा, गुलाब की सुगंध की जो बयार चले हैं ना, जो सचमुच मन को छू जाए है।
1: हाँ सखी, और फूल बंगला में केलन के तना और छाल को प्रयोग होवे और इनको चौखटन पे लगाया जाए।
0: और बहना, इन चौखटन को थाट कहे जाए है,
1: हाँ
0: जो लकड़ी की अस्थाई संरचना होए, इन पे पुष्प अलंकृत करके मनमोहक फूल बंगला बनाए जामे।
1: और इन बंगलान में सखी ठाकुर जी को बिठाए के बड़ी मनमोहक झांकी तैयार करी जाए।
0: और बहना, या छटा को देखवे के काजे भक्त नाचे हैं, गामे हैं, सुनो तो कहा कहमे हैं माधुरी शर्मा के स्वर में।
1: हाँ हाँ सुनाओ।

0: सखी, श्याम सुंदर की छटा के दर्शन तो आजकल पूरे ब्रज में बड़े ही मनोहारी हूं मैं।
1: पूरा ब्रज चातुर्मास में पल्लवित जो है जाए, और या समय कभी धूप कभी छां कभी बदरान के बीच ब्रज यात्रा को बड़ो आनंद होए।
0: हाँ सखी, तो सखी चौनाए हम घर बैठे ही ब्रज 84 कोस को दर्शन अपने श्रोतान को करवाए दें।

0: वो कैसे?
1: अरे सखी, ब्रज 84 कोस में आए बारे प्रमुख स्थानन की जानकारी देगी। और याके काजे हमारे स्टूडियो में कुलभूषण सोनी जी आए हैं। वार्ता को विषय है ब्रज 84 कोस पे आए बारे प्रमुख स्थान।
2: ब्रज आखर के उच्चारण होते ही श्री कृष्ण की ललित लीलानुअरविंद के महाभारत के उपदेशन को स्वतः स्मरण है उठे है। इतो ही ना, ब्रज भाषा को मिठास और श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि के दर्शन की लालसा हृदय को झकझोर देवे है। जा को कारण है ब्रज को शाब्दिक अर्थ प्रस्थान करवो बतायो गयो है। जा को उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के उपदेश देत भये श्री कृष्ण जी ने या तरह सो कहो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। हिंदी शुद्ध भाषा में ब्रज को बेरज हूँ कहे हैं, या शब्द में विश्लेषण में भी लगे हुए है, या कारण से विशुद्ध शब्द रजु है। तीनों आकरण में इनको अर्थ विशेष प्रकार की माटी है। श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में या रज माटी को अपने चंद्रमुख में धार के मैया यशोदा को भयभीत अचंभित कर रहे हो तो कारण के मुख में बारे से लाला के तीन लोक निरख के डर गई हसी। या तरह सो रज को आनंद अपने या मत गंध सवैया में लिखो गयो है, चाटत चाटत पेट भरे अरु मौज करे नित चाट निहारो, और चाटन में बहु बिंज मिले अरु स्वाद मिले घर रोज करारो। कि भूषण मोगनु रेनु चटी जी में जसुदा नित तिहु लोक निहारो, कि धन्य अरि ब्रज की रज तू नृपतिस चढ़ी नहीं नेक बिचारो। ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के संग संग बिन की क्रीड़ा स्थली उ रही है। साईसों बिन ने अपने ब्रज क्षेत्र की याद करते भाई सखा उदो सो कहो है, उदो मोही ब्रज विसरत नाही, कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई मोही ब्रज विसरत नाही। वे अपने प्रिय गाम स्थानन के नाम हु बतावत कहे। ब्रज के वनन में बिन ने 11 वर्ष 52 दिना गौचारण विहार किए हो और अनेक वनन में बाल क्रीड़ा करत भय महारास और बाल लीलन के संग संग अपनी 16 कला अवतारी कन्हैया ने 6 दिना की आयु में ही राक्षसी पूतना को वध, 5 की आयु में गोपी चीर हरण लीला नागनाथ लीला, लगभग 6 साल की उम्र में ही इंद्र देव को दर्प दमन करे हो तो गोवर्धन लीला धारण करती हती। बिन्ने 11 वर्ष की आयु में ही मामा कंस को वध और अनेक महाबली राक्षसन को वध कर बिन को उद्धार कियो हो तो श्री कृष्ण जी ने अपनी युवावस्था में बे कौरवन को मान मर्दन करते भय अर्जुन को आत्मा शरीर और परमात्मा के विषय में पूर्ण विवेचना ज्ञान को या प्रकाशों प्रकाश सवन शब्दन के हित में उपदेश रूप में कियो हतो। श्री कृष्ण की लीलान को महत्व और वेने के ज्ञान उपदेशक तथ्यन को अनवरत निरूपण करत भय यहाँ की ब्रजभूमि में निर्मित प्राचीन स्मारक धर्म के बुनियादी प्रतीक देव मंदिर सरोवर भवन वर्तमान में वो देखे जा सके हैं, जो सभी चिन्ह ब्रज 84 कोसीय परिक्रमा के मध्य अवस्थित हैं। और द्वापर युग के अंतिम राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय द्वारा जगह जगह वे तीर्थ यात्रा स्थलन पे निर्माण कराए गए थे। लगभग 5,500 वर्ष पुराने ये प्रतीक मौसम और के प्रभाव से अपनी जीर्ण अवस्था में देख के कई दर्शनार्थी नैनन सो लाभ प्राप्त करें। या ब्रज भूमि में जन्म लेवे वाले धन्य हैं, जहाँ देवता मुनि अपनो जन्म लेवे को तरसे हैं। ब्रज भूमि में जन्म लेवे के लिए तो श्री राम के ब्रही अयोध्या वासी इनको श्री कृष्ण राम जी सो वरदान मिलो हतो के वे स्वयं कृष्ण रूप में द्वापर में अवतार लेंगे, तभी सवन को वेद रिचान को और गाय आदि को रूप धारण करके लिए जन्म मिलेगो और मेरे दर्शन तो उद्धार है जाएगो। जहाँ तानी ब्रज क्षेत्र है तहाँ ब्रज भाषा कहन और सुनबे में बड़ी प्यारी और मीठी लागे। या पे एक दोहा यात्रा सो है, ब्रज भाषा मीठी लगे सग भाषण की।

ई मात हास्य व्यंग तीखे रहे फिर वो ये होल साथ या ब्रजरज की मीठी होली के कारण मुख्य रूप से अपनी बाल लीला में रज को खाए चाट के पवित्र और रसयुक्त भगवान श्री कृष्ण ने कर दया हतो जाई कारण हर प्राणी सो घनो नेह करे या को माथे पर चंदन लगाए गए और या में लोट पोट हो के मन मस्त हो जाए तो इनाए पावन ब्रज स्थली रमन रेती गांव में तो यहाँ की रेत में भक्त जन शरीर में मलमल के स्नान करत भय देखे जामे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अंतर्गत अनेक मंदिर प्राचीन बने भये हैं जिनमें भगवान के अति सुंदर मनमोहक विग्रह दृश्यमान है। ब्रज 84 कोसीय परिक्रमा की यात्रा लगभग 300 किलोमीटर की परे जाए भक्तगण अपने अपने मनभाव सो भक्ति सो देश भय देखे जा सके। यात्रा में भक्तजन गाते बजामते भय आनंदित है के या परिक्रमा को लाभ और जीवन को धन्य करें। एक युवक ने अपनी बूढ़ी माया को पीठ पे लाद के धूप में ही नंगे पाम के यात्रा करके और भक्त श्रवण कुमार की सेवा जैसो भाव दिखाया हतो। या यात्रा के मध्य 1300 तीव अधिक गांव पर है 12 मुख्य वन 24 उपवन पर है जो कि कृष्ण और राधा के संग ग्वाल बालन संग की गई रास लीला और बाल क्रीड़ा सो संबंधित बताए गए हैं। ये 12 वन जा प्रकाश सो हते मधुवन जी महाराजा ध्रुव जी की पावन तपस्या स्थली है। दूसरा तालवन यहाँ श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलदाऊ संग धेनुकासुर को वध किया हतो। तीसरा खाद्रवन चौथो कुमदवन और पांचवा बहुलावन यह वन यमुना जी की पूर्व दिशा में स्थित है। छठो भद्रवन सातवा बेलवन आठवा लोहवन नौवा महावन यावन में भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालन संग गाय चराई जो कि पश्चिम मध्य इस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। दसवा भांडीर वन है या में भगवान श्री कृष्ण संग राधा जी का ब्याह ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया हो तो। ग्यारहवो काम्यक वन या वन कस्बा को कामा नाम से जानो जाए है या को कामचंद राजा द्वारा बताया गया हो तो। ई राजस्थान प्रदेश के डीग लठावन जिला अंतर्गत है या में अनेक प्राचीन मंदिर सरोवरन में विमल कुंड बहुत जग प्रसिद्ध है जो कि श्री कृष्ण ने बक्षासुर को वध करके नहीं है यहाँ स्नान कुंड के लिए पवित्र है के और कुंड को निर्माण किया हो कलयुग पाप नाश हरि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। बारहवा वन है वृंदावन यहाँ अनेक मंदिर हैं जिनमें प्रसिद्ध बांके बिहारी को है और हरदास मंदिर भी है। आज ऐसे विशिष्ट मंदिर श्रद्धा के रूप में दर्शनार्थी मूर्ति इनको दर्शन करके अपने मनोरथ पूर्ण करें। इनके अलावा मथुरा में आप श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी जेल मंदिर द्वारकाधीश रंगदेव महादेव विश्राम घाट जो कि कंस वध के उपरांत श्री कृष्ण द्वारा विश्राम किए जाए वाले स्थान है जो कि यमुना जी के किनारे स्थित है। इन सवन सो अलग मथुरा वृंदावन मार्ग में गीता मंदिर अवस्थित है जाकि हर दीवारन पे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक उत्कीर्ण किए हुए हैं। इन सभी स्थानन और प्रतिष्ठित देव मंदिर आदि को यही कारण सो पौराणिक और ऐतिहासिक अधिक महत्व बढ़ गया है। ब्रज 84 कोसी यात्रा की परंपरा हमारे यह ब्रज में क्यों आरंभ भई या की एक कहानी गर्ग संहिता में या प्रकार सो कही गई है। वृद्धावस्था में नंद बाबा अरविंद की पत्नी यशोदा रानी की ब्रज 84 कोसी पद यात्रा की एक बार मन में अबला सा भई जाए सुन के श्री कृष्ण ने तीर्थराजन को बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री जी को निमंत्रण कर दयो वे ब्रज वृंदावन में स्वयं प्रकट भये तो कृष्ण जी के कहवे पे युगल माता पिता ने बा जगह की परिक्रमा दई और कहो बाबा और मैया आपको अब कहूँ जाए की जरूरत ना हते त्यारी या परिक्रमा 184 कोसीय परिक्रमा को जीवन लाभ प्राप्त है जाए वो यही कारण ये चार धाम को फल मिल गयो है। पूर्व जन्म में नंद बाबा एक बसु हते जिनमें राजा द्रोण हो उनको नाम हतो और मैया इनकी पत्नी जसोदा जो हती वो पहले बा को नाम धरा हतो जिनके
श्री कृष्ण हरि तो दर्शन करने की इच्छा घनी आती कि दर्शन वे भगवान श्री विष्णु जी की बाल लीलान को देखना।

0: चाहे है, तो भगवान ने प्रकट होकर ये कहो कि मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा और तभी तुम मेरी या आनंद को मेरी सूरत को दर्शन कर सकोगे। और ये ब्रज यात्रा हमारे देश में तभी सो प्रचलन है गई है। आज बाहुल्य भक्त जन संख्या के रूप में तभी सो प्रचलित या भक्ति भाव भरी परिक्रमा को देत भय देखे जा सके है, या परिक्रमा के अंतर्गत बसे भय विश्राम स्थल गांव जहां विश्राम किया जाए, चलस में रस्ता में रात को रुके हैं, वे वर्तमान में गांव और सरोवर मंदिर आदि रूप में प्रचारित हो गए हैं, जिनके ये 32 नाम है। मधुवन, सांतवन कुंड, तोष बिहार, वन कुसुम सरोवर, किलोल कुंड, चंद्र सरोवर, आन्योर गांव, गोवर्धन जतिपुरा, डीग लठावन, परमद्रा, परम भद्र श्री कृष्ण सखा की जगह, कामबन कामा, बरसानो, संकेत, नंदगाम, करहला, कोकलावन, बठेन, कोटवन, शेषसाई, कोसी, पैगाम, शेरगढ़, कीरघाट, बच्छवन, वृंदावन, लोहवन, अलीपुर, बलदेव, ब्रह्मांड घाट, गोकुल और मथुरा जी। इन स्थानों में विश्राम के लिए जो रात्रि को स्थान कहे हैं, इनमें श्री कृष्ण ने राधा और ग्वाल बालन संग अनेक बाल क्रीड़ा और रास लीला करी। कलयुग में जो भगत अपनी श्रद्धा भाव भक्ति सो इन मंदिरन में जाए के मनोरथ रखे हैं, जिनकी गिरधारी कन्हैया राधा प्रिय अवश्य इच्छा पूर्ण करे हैं।
1: अभी आपने कुलभूषण सोनी जी ते वार्ता सुनी, विषय हो ब्रज 84 कोस में पड़वे वारे प्रमुख स्थान। मैं ना आषाढ़ शुक्ल द्वितीया ते उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा की भव्यता देखते ही बने हैं। और हमारे ब्रज में हूँ तो रथ यात्रा निकसे है। वृंदावन में प्राचीन जगन्नाथ घाट की रथ यात्रा बड़ी ही मनोहारी लगे है।
2: हाँ सखी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, मतलब रथ यात्रा को आनंद ब्रज में हूँ देखवे को मिले। चंदन ते सजे रथ पे बैठ के ठाकुर जी भ्रमण करे हैं। सखी, एक तो सुहावनो मौसम, दूजे भक्ति बाप को दर्शन। सुनो, यह लोकगीत में कितना सुंदर वर्णन है रथ यात्रा को।
3: रथ

0: ब्रज की रानी और ब्रजराज मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में अभी आपने आनंद लियो या लोकगीत को बहना।
1: हाँ सखी,
0: देखो आजकल वर्षा ऋतु में मौसम तो बड़ा सुहावना है, ये बात तो आपने सही कही है, पर संगई जे मौसम बीमारी हूँ तो लेके आवे है।
1: हाँ सखी, ये बात तो है।
0: याई ते अगर हम अपने खान पान को ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे, तो या मौसम को आनंद भरपूर ले पाएंगे।
1: हाँ सखी, सही कह रही हो तुम। पर लेकिन जी रहे हैं कि बरसात के मौसम में ले धर के समोसा खा ले और पकौड़ा खा ले, स्वाद स्वाद में तो खा ले, मैं फिर बाद में पेटन में दर्द मारे हैं।
0: जे सही कह रही हो बहना। देखो कबो कबो तो चले है, क्योंकि जब बारिश होए ना तो मन करे, पर वाके संगे ही मौसमी फलन को सेवन हो जरूरी है। देखो बहना आजकल जामुन की कैसी बहार आई भई है ना, जगह जगह ठेलन पे दुकानन पे जामुन मिल रहे हैं।
1: हाँ, और धरती पे पड़े हुए मिल रहे हैं।
0: हाँ तो या समय में जामुन को सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि या में निरो आयरन होए, पोटेशियम होए।
1: और सखी नोनदार के जब खावे तो कितना स्वाद लगे।
0: तो सुनवाए दे अपने श्रोतान को शालिनी शर्मा के स्वर में जे प्यारो सब लोकगीत, के पिया मोहे जामुन खिलाए दे।
1: हाँ सखी सुनवाओ ना।

0: श्रोताओ, शालिनी शर्मा के स्वर में यह लोक गीत को आनंद लियो। अब यही के संगे हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न होवे है। मोको यानी के वंदना को
1: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाएवे की अनुमति देव।
0: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी आप ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आशी और हमारे साथ है हमारे दोस्त मोक्ष, दर्शिता, वंशिका, आरवी, रोहानी और राजर। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम।
1: रेडियो प्लेस।
0: तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो दोस्तों अपनी मुस्कान बनाए रखिए और तैयार हो जाइए आज के मजेदार और ज्ञान से भरपूर सफर के लिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार कार्यक्रम रेडियो किड्स। आरवी बताओ, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है?
2: मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। ठंडी ठंडी हवा, काले बादल और रिमझिम बारिश, कितना मजा आता है।
0: बिल्कुल, बारिश होते ही पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिल उठते हैं और चारों ओर ताजगी फैल जाती है।
2: हाँ, और हम बच्चों की तो बात ही अलग है। हम कागज की नाव बनाते हैं, रेनबो देखते हैं और गरम गरम कॉर्न खाते हैं, कितना मजा आता है।
0: लेकिन दोस्तों, बारिश के मौसम में हमें सावधान भी रहना चाहिए।
2: क्या दीदी?
0: जैसे गंदे पानी में नहीं खेलना चाहिए, भीग जाए तो सूखे

0: कपड़े पहन लेने चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए।
1: बारिश किसानों के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अच्छी बारिश से फसलें लहरा उठती हैं और हमें भरपूर अनाज मिलता है।
0: इसीलिए हमें बारिश का आनंद लेने के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए।
1: साथ ही हमें अपने घर और स्कूल के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसमें मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियां फैल सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरवी।
1: दीदी, मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊं?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं।
1: रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, धरती पहने हरी सी साड़ी, नाचे मोर चहके पंछी, खुश हो जाए दुनिया सारी।
0: वाह, कितनी प्यारी कविता थी। तो दोस्तों, बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अच्छा आरवी, तुमने तो कविता सुना दी, मैं भी सुनाऊं?
1: हाँ सुनाओ, क्यों नहीं।
0: बादल आए झूम झूम कर, बूंदे बरसी धूमधाम कर, धरती ने मुस्कान सजाई, संग हरियाली भी ले आई। नाचे मोर पंख फैलाकर, चिड़िया गाए गीत सुनाकर, कागज की नाव चली इठलाकर, बचपन हंसा खिल खिलाकर। बारिश देती जीवन सारा, नदियों का भर देता किनारा, आओ मिलकर प्रण ये ले, पानी बचाए पेड़ भी लगाए।
1: वाह, कितनी अच्छी कविता सुनाई आपने।
0: धन्यवाद।
2: अब मेरे को ना एक बाल कविता याद आई है, मैं सुनाऊं?
1: हाँ सुनाओ।
2: आ गई बारिश, मच गया शोर, काले काले बादल आए, अपने साथ डमरू लाए, गड़गड़ शोर मचाए, टिप टिप करके पानी बरसाए, चिंटू भागा छाता लेकर, हवा चली तो वो उड़े ऊपर, छाता बन गया पैराशूट, कीचड़ में जा गिरे उनके बूट। पिंटू ने जब नाव चलाई, मम्मी को फिर याद दिलाया, मम्मी जी अब छोड़ो काम, लाओ पकोड़े गर्मा गर्म, मेंढक भैया गाते तराना, भूल गए वो सुर ताल पुराना। टर सुन चिंटू बोला, लगता है इनके गले में चोला, भीग गए सब कपड़े लत्ते, पेड़ों से भी झड़ गए पत्ते, स्कूल की छुट्टी का मिल गया बहाना, अब तो बस है मौज मनाना, अब तो बस है मौज मनाना।
0: अच्छा आरवी, बारिश की बातें तो बहुत होगी, कुछ गीत सुनना चाहोगी?
1: हाँ, मेरा तो चक दुम दुम सुनने का मन कर रहा है।
0: तो चलो सुनते हैं।

0: अच्छा आरवी, बारिशों के मौसम में हमें वैसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए।
1: क्यों दीदी?
0: क्योंकि ज्यादा जंक फूड खाने से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता, इससे बहुत तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है।
1: दोस्तों, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी जरूरी पोषण तत्व हो, जैसे दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, रोटी, चावल आदि।
0: आरवी, क्या केवल अच्छा खाना ही काफी होता है हमारे लिए?
1: नहीं, समय पर खाना खाना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही, और हमें धीरे धीरे अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए, इससे भोजन आसानी से पचता है।
1: याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
0: अच्छा आरवी, तो मैं एक कविता सुनाऊं?
1: हाँ, सुनाओ।
0: फल खाओ, सब्जी भी खाओ, दूध दही से ताकत पाओ, दाल रोटी चावल खाओ, स्वस्थ शरीर और मन बनाओ, जंक फूड कम पानी ज्यादा, यही है सेहत का इरादा, अच्छा भोजन अच्छी आदत, यही है खुशियों की असली दौलत।
1: अरे वाह, क्या अच्छी कविता सुनाई है आपने।
0: थैंक यू।

0: और आज हमारे साथ हमारे तीन और दोस्त मोक्ष, दर्शिता और वंशिका हमें चंद्रशेखर आजाद पर कुछ जानकारी और कविताएं सुनाना चाहते हैं। तो सुनते हैं।
1: आज मैं आप लोगों को चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या तुम लोग भी जानना चाहते हो?
2: हाँ, हम जानना चाहते हैं।
1: तुम्हें पता है, जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। उनके दिल में देश के लिए बहुत प्यार था। जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जब जज के सामने पेश किया तो जज ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताप दिया, सीना तानकर शेर की तरह धारते हुआ कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल खाना है। यह सुनकर अंग्रेज जज सन रह गया। उन्हें कोड़ों की सजा दी गई, पर हर कोड़े पर वो वंदे मातरम और भारत माता की जय चिल्लाते रहे। उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज पुलिस उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी और उन्होंने अपनी कसम आखिरी सांस तक निभाई। जब अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली और देश के लिए शहीद हो गए, पर वो आजाद ही रहे।
3: मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर आजाद पर। देशभक्ति सबसे ऊपर उनके लिए देश

0: पहले अपनी जान बाद में हमेशा कहते दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है आजाद ही रहेंगे। बहुत अच्छे निशानेबाज थे, इसी वजह से अंग्रेज भी उनसे डरते थे, हार नहीं मानते थे। कितनी भी मुश्किल आई, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आखिर तक लड़ते रहे।
1: मैं भी एक कविता सुनाना चाहती हूँ चंद्रशेखर आजाद पे। चंद्रशेखर आजाद वीर महान, देश के लिए दिए अपने प्राण, अंग्रेजों से कभी न डरा, आजाद बनके वो जीता जग सारा।
2: अरे वाह, क्या अच्छी जानकारी और कविता सुनाई आपने।
3: अच्छा आरवी, अब मैं भी एक कविता सुनाऊं?
2: हाँ क्यों नहीं।
3: चंद्रशेखर आजाद थे वीर, देशभक्ति थी उनकी तकदीर, अंग्रेजों से डटकर लड़े, कभी नहीं वे पीछे हटे, भारत माँ के सच्चे लाल, हिम्मत थी उनकी बेमिसाल, आजाद रहना था उनका प्रण, देश के लिए किया जीवन अर्पण। आओ उनसे सीखे हम सच्चाई और साहस हर दम, देश का मान बढ़ाएंगे, मिलकर भारत सजाएंगे।
2: अरे वाह आसवी, क्या अच्छी कविता थी।
3: थैंक यू।

0: अच्छा आरवी, आज हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, तो चलो जानते हैं उनका नाम।
1: मेरा नाम राजन बड़होता
0: आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं
1: है, नसी बी फोर।
0: और आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं?
1: एक कविता
0: सुनाइए।
1: हम

0: जीते देख भाग पिता एक भालू, उसका नाम था कालू, कालू खाता था आलू। हमने तीन चीजें देखी पापा, तीन चीजें दे हमने तीन चीजें देखी पापा, तीन चीजें दे। बाग में था एक लकड़ी, उस पर बैठा मकड़ी, मकड़ी खाता था ककड़ी। हमने तीन चीज देखी पापा, तीन चीज देखी हमने तीन चीज देखी पापा, तीन चीजें देखी। बाग में था एक मोर, उस पर बैठा चोर, चोर मचा रहा था शोर। हमने तीन चीजें की पापा, तीन चीजें देखी हमने तीन चीजें देखी पापा, तीन चीजें देखी।
1: अरे वाह राजन, आपने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। और राजन आपने तो तीन नहीं बहुत सारी चीजें सुना दी हमें।

0: और दिखा भी दी।
1: तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
2: उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को भी मिला होगा।
1: हम फिर मिलेंगे नई जानकारी और ढेर सारी मस्ती के साथ।
2: तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना परिवार का भी। तो सुनते रहिए
3: रेडियो किड्स।
1: बाय।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो के घड़े के मुताबिक शाम के

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं खेलों से संबंधित बड़ी खबरों पर, उसके साथ ही आपको बताते हैं मैदान पर क्या चल रहा है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कपिल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी
1: वसीम अहमद।
0: वसीम के साथ मैं अभिषेक। हम आज बात करेंगे जापान ओपन बैडमिंटन की, जो एक भारत के लिए बड़ी खबर है। पीवी सिंधु ने इतिहास रचा है।
1: जहां रैकेट बोले, शटल उड़ान भरे और हर पॉइंट बने जोश की नई कहानी। हर स्मैश में ताकत, हर ड्रॉप में नजाकत और हर मैच में रोमांच। पेश है बैडमिंटन का शानदार मुकाबला। आइए सुनते हैं जापान ओपन 2026 पर एक रिपोर्ट।
0: बैडमिंटन की दुनिया में टोक्यो में आयोजित प्रतिष्ठित जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF वर्ल्ड टूर का ये टूर्नामेंट सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में गिना जाता है और यहां दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी रैंकिंग, अंक और खिताब के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रतियोगिता में आज की सुबह करोड़ों भारतीय खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए जापान ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनने का गौरव जो हासिल किया। उन्होंने सुपर 750 के फाइनल में जापान की अकानी यागागुची को 21-17 से हराकर 2 साल के खिताबी सूखे को खत्म किया।
2: It's out.
0: सिंधु ने पूरा टूर्नामेंट बिना एक भी गेम गंवाए पूरा किया और 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद अपना पहला खिताब जीता। फाइनल में लोकल फेवरेट पूर्व विश्व नंबर 1 अकानी यागागुची का सामना करते हुए सिंधु ने फाइनल में संयमित प्रदर्शन किया। उन्होंने पहला गेम 21-17 से लिया और दूसरे को भी उसी अंतर से जीतकर अपना पहला जापान ओपन का ताज अपने नाम किया। जीत के बाद सिंधु ने कहा,
3: Well, actually, the last point was, out, and I had to take a judgment, like I had to challenge that. And I knew it was out, but, you know, still until the last minute, you never know what is going to happen and you cannot take it easy because, you know, in the second game, even though I was leading like 8-3, 14-8, some of the mistakes like tap or mid-court smashes were going out. So for me, it was very important to just stay calm and focus on each point because there were games where I was leading and, you know, there were games which changed the other way as well. So after winning the first game especially, I just had to control and make sure that, you know, each point mattered to me a lot until the end. Yeah, I think it was very important for me to make sure that, you know, I stay, you know, positive all the time. I mean, even though, you know, the first game I was leading and then she came close because, you know, with the top at least you cannot take it easy even.

0: though you're, you know, even though you're leading. So it is very important. It was very important, even though I was leading, that, you know, each point mattered and I maintained the same aggressiveness. And even in the second set, it was the same. But, you know, in the end, I mean, I couldn't control my emotions. But I think it was a really good game because there were really, really long rallies and I won some of those big rallies. So it was important that way. Yeah, I think this will definitely give me a lot of confidence. I need to keep up the same tempo and maintain the same calmness and stay confident and keep going. That is the aim. And I think it's really good to win at this time.
1: सिंधु का ये सफर बेहद शानदार रहा. क्वार्टर फाइनल में उनकी प्रतिद्वंदी और जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा चोट के कारण मुकाबले से हट गई, जिससे सिंधु पहली बार जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची. सेमीफाइनल में सिंधु का सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन चीन की चेन युफेई से हुआ. सिंधु ने पहला गेम 21-19 से जीता और दूसरे गेम में 15-10 की बढ़त बना ली थी. तभी चेन युफेई हैमस्ट्रिंग चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर सकी. इस जीत के साथ सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी. फाइनल में सिंधु ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. उन्होंने लंबी रैलियों में धैर्य बनाकर रखा और सटीक स्मैश तथा बेहतरीन नेट प्ले के दम पर अकाने यागागुची को वापसी का मौका नहीं दिया. खास बात ये रही कि सिंधु ने लगभग 4 साल बाद यागागुची को हराया और अपने करियर की सबसे यादगार जीतों में से एक दर्ज की. ये खिताब सिंधु का 2022 में सिंगापुर ओपन के बाद भारत के बाहर पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है और 2019 के विश्व चैंपियन के करियर में एक और मील के पत्थर को जोड़ता है, जिन्होंने बेसल में ऐतिहासिक स्वर्ण सहित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 पदक जीते हैं. ये मील की पत्थर जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आई है. BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप नई दिल्ली 2026 के 17 साल बाद भारतीय धरती पर लौटने और एक महीने से भी कम समय बचे होने के साथ 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता और 2019 के विश्व चैंपियन खेल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में जीत की गति और नए आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी.

0: बैडमिंटन में तो भारत के लिए आई है एक बड़ी खुशखबरी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं फीफा वर्ल्ड कप की तरफ। महीने भर चला ये टूर्नामेंट एकदम बन गया सबका अजीज प्रेम, जहां पर फैंस एकदम खुश हैं, लेकिन साथ ही आज तय होगा कि इस फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा।
1: बात करेंगे उस खेल की जहां दो टीमें सामने वाली टीम के खेमे में घुसकर गोल मारना चाहती हैं और अपने खेमे में विरोधी टीम को गोल मारने नहीं देना चाहती। पैरों की रफ्तार, दिमागी जुनून, जज्बात। जी हाँ, अब बात करेंगे फुटबॉल की।
0: इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। दुनिया की दो फुटबॉल महाशक्तियां अर्जेंटीना और स्पेन आज विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने होंगी। एक तरफ है मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, जो वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी चैंपियन है, और दूसरी ओर है मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्पेन। 90 मिनट या शायद अतिरिक्त समय और पेनल्टी शूट आउट, अब बस इतना ही फासला है विश्व कप ट्रॉफी और इतिहास के बीच।
1: एक नजर डालते हैं अर्जेंटीना के इस विश्व कप के सफर में। अगर बात करें ग्रुप मैचेस की, तो अर्जेंटीना ने पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन जैसी मानसिकता दिखाई है। ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन के साथ टीम ने नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके बाद राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से हुआ। वहां भी टीम ने बेहतरीन आक्रामक फुटबॉल खेलते हुए 3-1 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में सामने थी मजबूत इंग्लैंड की चुनौती, लेकिन अर्जेंटीना ने धैर्य और अनुभव का परिचय देते हुए 2-1 की जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार विश्व कप फाइनल में जगह बना ली। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत रही है उसकी संतुलित टीम, मजबूत डिफेंस, तेज काउंटर अटैक और दबाव में संयम। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान रही है।
0: दूसरी ओर स्पेन ने अपने पारंपरिक टिकी टका अंदाज और बेहतरीन बॉल पोजीशन के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया है। राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला बेल

बेल्जियम से हुआ। बेहद रोमांचक मैच में स्पेन ने 2-1 से जीत हासिल की। सेमीफाइनल में स्पेन ने पूर्व विश्व चैंपियन फ्रांस को 2-0 से हराकर दुनिया को बता दिया कि वे सिर्फ फाइनल खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने आए हैं। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत है गेंद पर नियंत्रण। पूरे टूर्नामेंट में उसने विपक्षी टीमों को गेंद से दूर रखा और अपने तेज पासिंग गेम से लगातार मौके बनाए।

0: विश्व चैंपियन बन चुका है 1978, 1986 और 2022। ये तीन साल अर्जेंटीना के फुटबॉल इतिहास के सबसे सुनहरे अध्याय हैं। दूसरी ओर स्पेन ने साल 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था, जब आंद्रेस इनिएस्ता के अतिरिक्त समय में किए गए गोल ने नेदरलैंड्स को हराकर स्पेन को विश्व विजेता बनाया था। अर्जेंटीना जहां अपने चौथे विश्व कप खिताब की तलाश में है, वहीं स्पेन दूसरी बार दुनिया का चैंपियन बनने का सपना देख रहा है।
1: अगर बात करें दोनों टीमों के आमने सामने होने की, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं। दोनों टीमों के खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। अर्जेंटीना तेज काउंटर अटैक और व्यक्तिगत कौशल पर भरोसा करती है, जबकि स्पेन छोटे छोटे पास, गेंद पर नियंत्रण और सामूहिक खेल के लिए जानी जाती है। यानी आज का मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल दर्शन का भी है।
0: इस फाइनल में विश्व की नजरें कुछ खास खिलाड़ियों पर रहेंगी। अर्जेंटीना की बात करें तो सबसे ज्यादा निगाहें कप्तान लियोनेल मेसी पर होंगी। उनके अलावा लोतारो मार्टिनेज और जूलियन अल्वारेस से गोल करने की उम्मीद रहेगी, जबकि एंजो फर्नांडिस और रोड्रिगो डी पॉल मिडफील्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं स्पेन के लिए युवा स्टार लामिन यमाल सबसे बड़े आकर्षण होंगे। उनके साथ पेद्री और रोड्री मिडफील्ड में खेल की कमान संभालेंगे, जबकि निको विलियम्स और अल्वारो मोराटा आक्रमण को मजबूती देंगे। इस मुकाबले में मिडफील्ड की जंग बेहद अहम होगी। जिस टीम ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा और अपने स्टार खिलाड़ियों का बेहतर इस्तेमाल किया, उसके विश्व चैंपियन बनने की संभावना अधिक होगी।
1: अगर फाइनल के इस मुकाबले पर कुछ दिलचस्प तथ्यों पर नजर डालें, तो अर्जेंटीना लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में पहुंची है। स्पेन 2010 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल खेल रही है। अर्जेंटीना के नाम तीन विश्व कप खिताब हैं, जबकि स्पेन एक बार विश्व चैंपियन रह चुका है। अर्जेंटीना अपने आक्रामक खेल के लिए जानी जाती है, जबकि स्पेन का सबसे बड़ा हथियार उसका बॉल पोजीशन है। विश्व कप फाइनल में अक्सर एक गोल या शानदार बचाव इतिहास बदल देता है।
0: आज जीत किसकी होगी, अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है। कागज पर दोनों टीमें बेहद मजबूत दिखाई देती हैं। फाइनल तक पहुंचने से पहले अर्जेंटीना ने कुल 19 गोल दागे हैं और 7 गोल खाए हैं। दूसरी तरफ स्पेन ने 13 गोल किए हैं और केवल एक गोल खाया है। अगर अर्जेंटीना अपने तेज आक्रमण और अनुभव का फायदा उठाता है, तो स्पेन अपने अनुशासित खेल और गेंद पर नियंत्रण से मुकाबले की दिशा बदल सकता है। यह मुकाबला अनुभव बनाम युवा जोश, काउंटर अटैक बनाम पोजेशन फुटबॉल और दक्षिण अमेरिका बनाम यूरोप की प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होगा। वहीं जानते हैं फुटबॉल फैंस क्या कहते हैं।
2: Hi, I'm Tejaswini and currently I'm doing law. According to me, Argentina will win and it will create a good record. I support Messi.
3: Hi, this is Dipanshu this side and I'm supporting Spain just because of Yamal. And I think कि इस बार की prediction जो final की रहेगी, it's not gonna be a high scoring game. Maximum it's gonna be like 2-1 or 3-1 for Spain.
4: Hello, my name is Nigam. I like FIFA World Cup. And my opinion कि Messi की team जीतेगी Argentina because Messi is experienced player.
5: Hello, my name is Sunil Chopra. I am currently doing law. I think Spain will win.
6: Hi, this is Tezav and I think Spain would win because as I've seen Yamal paying homage to Ronaldo and as you can see with the match with Portugal, he also hugged Ronaldo, except no one in his team hugged Ronaldo except for Yamal. So I think Spain should win as they deserve to win.
1: बड़ी जानकारी की तो अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के सामने गोल्डन बूट जीतने के लिए किलियन एम्बापे की बराबरी करने की बड़ी चुनौती है। मेसी ने अपने करियर में फुटबॉल की लगभग हर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिए जाने वाले गोल्डन बूट पुरस्कार से अब तक वंचित रहे हैं। फ्रांस के स्ट्राइकर एम्बापे ने तीसरे स्थान के मुकाबले में 2 गोल करके इस विश्व कप में अपने कुल गोल की संख्या 10 कर ली, जिससे वे मेसी से 2 गोल आगे निकल गए। अगर मेसी गोल्डन बूट नहीं भी जीत पाते हैं, तब भी आज होने वाले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ होने वाले विश्व कप फाइनल में उनके पास टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ

0: खिलाड़ी को मिलने वाली गोल्डन बॉल तीसरी बार जीतने का सुनहरा मौका है।
1: फीफा विश्व कप 2026 के महामुकाबले फाइनल से पहले तीसरे स्थान के लिए आज प्रातः दो बार की पूर्व चैंपियन 2022 की उप विजेता टीम फ्रांस और 1966 की चैंपियन टीम इंग्लैंड के बीच खेला गया। इस ब्रॉन्ज फाइनल में इंग्लैंड ने फ्रांस को एक रोमांचक महामुकाबले में 6-4 के स्कोर से हरा दिया। पहले हाफ में 4-0 से पिछड़ने के बाद फ्रांस ने शानदार वापसी की और मुकाबला 5-4 तक पहुंचा दिया, लेकिन आखिरी पलों में इंग्लैंड के जूट बेलिंघम के गोल ने इंग्लैंड को तीसरा स्थान और कांस्य पदक पक्का करा दिया। फ्रांस की ओर से किलियान एम्बापे ने दो गोल, ब्रैडले बारकोला ने एक और उस्मान डेम्बेले ने एक गोल किया। वहीं इंग्लैंड की तरफ से डेक्लन राइस, एजरी कोंसा, जूट बेलिंघम ने एक एक गोल किए और बुकायो साका ने शानदार हैट्रिक जड़कर

0: अगली फरमाइश गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से आई है सुरेंद्र संधु, अनिता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश गरोर, बेबी गरोर, गौरव गरोर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश आई है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये की।
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है गांव फारासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी।
1: और भाई इन्होंने देखिए जो पुरुषोत्तम कुमार, सुदर्शन कुमार, नरेश कुमार ने गांव डंडी तहसील से भद्रवा से ही हमें एक खत भी भेजा है और ये लिखते हैं कि भाई आपका जो 9 तारीख का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा लगा और उसमें जो महफिल सजी, कहने लगे उसमें जो महफिल सजी वो हमें काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी जानकारी भी मिली और उसमें शिवनंदन लाल जी ने जो कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली वो बहुत ही अच्छी लगी।
0: और साथ में ब्रजेश और साथियों की आवाज़ में जो रागिनी सुनाई वो भी उन्हें बहुत पसंद आई।
1: बिल्कुल, तो आज के जो भाई अब अगले जो हमारे श्रोता हैं वो आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार की। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है चेक 5 MD रोड, इसको भेजने वाले मंगल, रोशनी और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और उनके परिवार के बाकी सदस्यों।
1: तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं नरदेव बेनीवाल से रागनी और रागनी का किस्सा रहेगा पिंगला भरथरी और किस्से की ये रागनी है और इस मौके की रागनी है जब राजा भरथरी अपनी पत्नी पिंगला के मोह में डूबे हुए थे। वह हर समय रानी के ख्यालों में खोए रहते थे, तब उन्हें संसार की नश्वरता और वैराग्य का एहसास होता है, तब सब कुछ त्याग कर जोगी बनने की राह पर जाने का मन बनाते हैं। इस रागनी में राजा भरथरी को समझाया जा रहा है कि वे स्वयं आत्म मंथन करें कि किसने देखा स्वर्ग आपा मारे बिना, यानी जिसका अर्थ है कि खुद मरे बिना या खुद तपस्या व कष्ट सहे बिना कोई व्यक्ति स्वर्ग को नहीं पा सकता। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी नरदेव बेनीवाल से, और किस्सा था पंगला बरतरी का। और देखिए भाई, आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो है राकेश त्यागी, और राकेश त्यागी को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है ये मिली है भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल से। इसको भेजने वाले हैं विजेंद्र कुमार, कांता रानी, गुंजन और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक आई है रोबर करनाल, ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। इसको भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगित परवीन और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हम तक आई है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है ये बलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवंगन, कौशल्या दिवंगन, हिमलता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: राकेश त्यागी को ही सुनना चाहते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान टाउन से। इसको भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद, समीम बेगम और उनका समस्त परिवार।
1: राकेश त्यागी को ही सुनने के लिए फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय। वहीं दुबिया नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और काफी और भी फरमाइश भाई हमें मिली है जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो आप 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहिए।
1: जी,
0: और अब राकेश त्यागी से सुनवाते हैं रागनी, किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का, और उस मौके की रागनी है जब जंगल में सत्यवान की मृत्यु होने वाली होती है और वह यमराज उसके प्राण लेने आते हैं। तब उस भावुक पल में सत्यवान अपनी पत्नी सावित्री से ये बात कहते हैं, सावित्री मेरा हाथ पकड़ ले। वे अपनी पत्नी सावित्री को समझाते हैं कि मेरे पीछे तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
2: सावित्री मेरा हाथ पकड़े, कोई पांच छह ने

0: सुनील भाई, अभी हमारे साथियों ने सुनी राकेश त्यागी से ये रागिनी।
1: और राकेश त्यागी या इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नन्नल्ला। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच

0: आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: हेमंत भाई देखिए, हमारे किसान भाई फसल लगाने से लेकर कटाई तक दिन रात मेहनत करते हैं
1: जी।
0: और ऐसे में यदि कोई प्राकृतिक आपदा, चाहे अधिक बारिश या बाढ़, चाहे सूखा पड़ना, चाहे ओले पड़ना, या फसल में आग लगने से लेकर फसल अगर खराब हो जाती है तो काफी नुकसान होता है।
1: बिल्कुल।
0: और भाई देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक भी नहीं सकते
1: जी।
0: लेकिन उनसे होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा से कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना में सभी फसलों को, चाहे फसल भाई की बात खरीफ की हो, रबी की हो, या बागवानी की हो, सभी फसलों को इसमें शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि देखिए, प्रीमियम राशि इसमें बहुत ही कम रखी गई है, जो किसान भाई आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही भाई देखिए, अगर बात करें तो देखिए, इस में जो फसल में, चाहे प्राकृतिक आपदा के कारण, चाहे ओले पड़ने से फसल खराब हो, चाहे भाई आग लगने से, या किसी भी तरह से अगर फसल खराब होती है तो इसका दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात हेमंत भाई, एक बात और भी है इसमें
1: जी,
0: कि किसी भी स्मार्टफोन से इससे जो नुकसान के होने वाली भरपाई का आसानी से किसान भाई,
1: मतलब छोटा सा प्रीमियम होता है लेकिन इसका जो लाभ है ना, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या बाकी जो भी इंश्योरेंस हम अपना कराते हैं, वैसे ही हम फसल का कराएंगे तो कहीं ना कहीं लाभ जो है किसान भाइयों को होगा।
0: और एक बात और हेमंत भाई देखिए, इस योजना में सभी किसानों को शामिल किया गया है
1: जी,
0: जिनकी अपनी जमीन है वो भी, और जो पट्टे पर लेकर जमीन उगाते। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि भी मैंने तो पट्टे पर जमीन ले रखी, तो सभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और इस योजना का फायदा सभी किसान भाई ले सकते हैं
1: जी। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी रही किसान भाइयों के लिए। और जैसा कि पहले कार्यक्रम में हमने बताया था कि हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारे किसान भाई फरमाइशी कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जो अब के कलाकार हैं वो हैं भुल्लन त्यागी, और उनको सुनने के लिए हमारे पास जो फरमाइश आई है, जो फरमाइश आई है वो कुगदा कुम्हारी छत्तीसगढ़ से, बलराम भया, दामनी भया, डोमेश भया और उनके परिवार के सदस्यों की आई है।
0: और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, ये फरमाइश हमें मिली है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, और भेजने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू।
1: और वहीं अगली फरमाइश रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आई है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: भुल्लन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हमारे पास है ये दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और अगली फरमाइश हमें मिले रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और इसको भेजने वाले पीएस नवांकर, निर्मला, विशाल और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश साले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से हमारे पास आई है जीतू ध्रुव, केबल, किरण, दिव्यांशी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और उनके परिवार के समस्त परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली हेमंत भाई नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, इसको भेजने वाले अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से आई है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: भुल्लन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं नूर महल महसूल सीतामढ़ी से, और इसको भेजने वाले मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
1: पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से फरमाइश आई है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
1: जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश जॉनी डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो।

0: लिस डिकैस्ट्रो और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की फरमाइश हम तक आई है।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और उनका समस्त परिवार, साथ ही डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और उनका समस्त परिवार।
0: गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, आकसा, नाजिया, आफिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने फरमाइश भेजी है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जैन वाले गली कुरावली से। इसको भेजने वाले राशिद हुसैन अंसारी, नरसीन अंसारी और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा अलका मिड्डा की आई है, जो सुनना चाहते हैं भूलन त्यागी को।
1: और ये फरमाइश हमें मिली नाईवाला जिला से और हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले वेद मिड्डा और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियान और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं गाँव लोअर ठाकरावाला से शरण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई आजाद ना लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेहराज जहां और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली गांव चौलदा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया की।
0: बाकी अब इनकी फरमाइश पर सुन लेते हैं भूलन त्यागी से ये
1: उपदेश।

0: मरण तय छुट जा एक ब्रह्म एक।
1: तो सुनील भाई हमारे साथी अभी सुन रहे थे उनकी फरमाइश पर आधारित बुलंद त्यागी को, और जैसा कि पत्रोत्तर पर आधारित ये हमारा कार्यक्रम है, और इसी कार्यक्रम में एक पत्र हमारे पास आया है और इसको लिखने वाले हैं। ये पत्र आया है गांव करथला जिला अलीगढ़ यूपी से, और लिखने वाले श्रोता हैं राम कुमार सिंह, हरिंद्र और अभय चौधरी।
2: तो राम कुमार भाई और हरिंद्र भाई क्या लिखते हैं?
1: वो कहते हैं कि मैं सरसों की फसल लगाना चाहता हूं, और इसकी बिजाई का सही समय क्या है, और इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, निराई गुड़ाई कब करें, और सिंचाई आदि की क्या व्यवस्था करें जिससे अच्छा उत्पादन मिले।
2: तो देखिए राम कुमार भाई, हरिंद्र भाई और अभय चौधरी, आपका खत मिला है, आप सरसों की बिजाई करना चाहते हैं। तो देखिए सरसों जो एक प्रमुख तिलहनी फसल है, यह फसल कम लागत में और कम सिंचाई सुविधा में अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। और भाई देखिए इसे अकेले भी लगाया जा सकता है और अन्य फसलों के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी लगाया जा सकता है। सरसों की बिजाई की जहाँ तक आपने बात की, तो देखिए सही समय की अगर बात करें तो 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर का अंतिम पखवाड़ा सबसे उचित और सही माना जाता है, यानी इस समय सरसों की बिजाई सही की जा सकती है। इसकी जो मुख्य उन्नत किस्मों की अगर बात करें या प्रजातियों की बात करें, तो उसमें सिंचित क्षेत्रों की अगर

0: बात करें तो 1858 क्रांति, रोहिणी पी आर 45 आर एच, 63 आर एच, 781 आर एच, 93-104 मुख्य हैं। और असिंचित क्षेत्रों की अगर बात करें तो किरण वी पी सी आर एच 819, आर एच 30, आर बी 99-101 गीता मुख्य किस्में हैं। और देखिए सरसों की जो बुआई है उससे 15 से 20 दिन के अंदर भाई आप निराई गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि देखिए खरपतवार नियंत्रण के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई से पहले वह एक बाद में करना जरूरी है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो देखिए पहली सिंचाई 30 से 40 दिन के बाद फूल आने के समय से पहले करें, उसके बाद आवश्यकता अनुसार वर्षा अगर न हो तो भाई दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन में करें। और कटाई मड़ाई की अगर बात करें तो जब फलियां जब 75% सुनहरे रंग की हो जाएं तो फसल को काट कर सुखा लेना चाहिए, उसके बाद मड़ाई करके बीज को अलग कर लें। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, उन्नत किस्म लेंगे तो आप ले पाएंगे सरसों फसल से भरपूर उत्पादन।
1: बिल्कुल, उम्मीद है कि जो पत्र भेजा था अभय चौधरी हरिंद्र और रामकुमार सिंह ने, उम्मीद है कि उनको सही जानकारी मिली है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठाएंगे। और जैसा कि कार्यक्रम हमारा चल ही रहा था, लोक संगीत पर आधारित ये, और इसमें अगले के जो कलाकार हैं हमारे योगेंद्र नीमचाना, और उनको सुनने के लिए जो हमारे पास जो फरमाइश बची हुई है, और ये फरमाइश है गांव नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामिन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली जो फरमाइश आई है सुनील भाई हमारे पास, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई है, बलकन वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है हमें भाई ढाणा नारसन भिवानी से, जगदीश चिंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: योगेंद्र निमचाना को ही सुनना चाहते हैं, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू और उनके परिवार के सदस्यों।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: योगेंद्र निमचाना को ही सुनना चाहते हैं, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश आई है हमारे पास, रामकुरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और उनके परिवार के सदस्यों।
0: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी की। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेंद्र निमचाना से ये उप।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना योगेंद्र निमचाना से। और मौसम की अगर बात करें तो देखिए, आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और साथ ही आने वाले दिनों में हल्की व मध्यम बारिश की जो उम्मीद जताई जा रही है।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, जब बारिश होती है तो हमारे किसान भाई को करना क्या है, जल निकासी का जो प्रबंध है बना के रखना है, खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने के रास्ते साफ रखें ताकि भारी बारिश से फसलों में पानी जमा ना हो सके। और एक और बात, खड़ी फसलों में खाद, कीटनाशक दवाएं आदि का मौसम साफ होने तक रोकें, इंतजार करें जब मौसम साफ हो जाए तभी उनमें खाद दवा वगैरह जो देना है दें।
0: बिल्कुल, और कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का।
1: वहीं 6:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा अपना ग्राम संसार, जिसमें बातचीत होगी डिजिटल भूमि अभिलेख और किसानों को उनके लाभ।
0: 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपायों के बारे में, साथ ही योजना के बारे में जानकारी देंगे मेरा गांव मेरा गौरव, और हरियाणा की जो चुनिंदा मंडियों के बाजार भाव के बारे में भी जानकारी देंगे। तो भाई, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया हमें अवश्य लिखें, और इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 1100001।
1: और श्रोता हमें मेल भी कर सकते हैं अपना जो फीडबैक है, जो हमारे feedback@gmail.com यानी कि feedback@gmail.com पर भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, कैसा लगा उन्हें ये कार्यक्रम।
0: तो देखिए भाई, इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है अब गजल और कव्वाली का कार्यक्रम। शुरुआत रूना लैला की इस गजल के साथ करते हैं।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ आज का गजल और कव्वाली से सजा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ।

0: क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दो नई पहलें शुरू की। दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीवर लाइन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी और अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल अभियान का 82वां संस्करण आयोजित हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट रहने का संदेश दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान के बजाय सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।
6: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
5: दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दो नई पहल शुरू की है। उन्होंने गांधीनगर में स्मार्ट पैड माउंटेन सबस्टेशन का उद्घाटन किया और सोलराइज ईस्ट अभियान की शुरुआत की।
7: सोलराइज ईस्ट अभियान का उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक वर्ष में बिजली क्षेत्र में 1,427 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि इस निवेश के माध्यम से ट्रांसमिशन और वितरण को सुदृढ़ किया जा रहा है, साथ ही नए सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुराने बिजली ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आधुनिक तकनीकी को तेजी से अपनाया जा रहा है। श्री सूद ने कहा कि किसी भी आधुनिक शहर के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी बिजली व्यवस्था होती है। उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम नागरिकों का दैनिक जीवन निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल बिजली उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि विश्वसनीय, किफायती, स्मार्ट और हरित बिजली सुनिश्चित करना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
5: दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीवर लाइन का लोकार्पण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना का निर्माण दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है।
8: इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, सड़कों का विस्तार और निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में सीवर व्यवस्था सुदृढ़ होगी, गंदे पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी तथा जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही गंदे पानी के जमाव से होने वाली बीमारियों की आशंका भी काफी हद तक कम होगी। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को भी आधुनिक शहरी क्षेत्रों के समान विकसित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
5: दिल्ली सरकार

0: ने जनकपुरी स्थित एक निजी विद्यालय को बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यदि कोई संस्था बाल यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर घटना को छिपाती है, आवासीय भवन के बेसमेंट में अवैध रूप से शाखा चलाती है और विद्यालय के धन का दुरुपयोग करती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर विद्यालय की भूमि की लीज रद्द कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। श्री सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गरिमा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न की घटना की जानकारी छिपाने, सभी 64 सीसीटीवी कैमरों के बंद होने, बिना अनुमति शाखा चलाने, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो सुरक्षा व्यवस्था के अभाव, फायर एनओसी समाप्त होने और करीब 6 करोड़ रुपए के वित्तीय दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ चलाने की तैयारी कर रही है। इस अभियान के लिए लगभग 2 लाख तिरंगे दिल्ली के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के जरिए महिलाओं और स्थानीय समूह को आजीविका तथा आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पूरी दिल्ली में 15 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी तिरंगे भारतीय ध्वज संहिता 2002 और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा जन भागीदारी की भावना को मजबूत करने का भी एक अवसर है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज नेताजी नगर स्थित महिला तकनीकी संस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगातार 33वें रविवार सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने AI, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग जैसे रोजगारमुखी पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित से 5,80,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजस्थान के मेवात क्षेत्र से संचालित एक संगठित गिरोह से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाला एक वाहन भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की बोतलों पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल था। मामले की जांच जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी भारतीय पहचान बनाकर दिल्ली में रह रहा था। जांच में पता चला कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता भी बनवा लिया था। पुलिस ने पासपोर्ट, आप्रवासन रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उसकी वास्तविक पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कल नई दिल्ली जिले में किसी भी अविरोध मार्च या जुलूस के लिए ना तो कोई इजाजत मांगी गई है और ना ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए यहां विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है। उन्होंने कहा कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ जंतर मंतर पर तय विरोध स्थल पर ही पहले से इजाजत लेकर प्रदर्शन करने की अनुमति है। चूंकि कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए आम लोगों की सुरक्षा, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर कल से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार संसद सत्र के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख

0: मार्गों तथा चौराहों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पशुपालन विभाग का अधिकारी बनकर रिश्वत मांगने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पशुपालन और डेयरी विभाग का अधिकारी बताकर पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत ऋण आवेदकों से लोन मंजूरी के नाम पर रिश्वत वसूलता था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने उत्तराखंड के एक पोल्ट्री फार्म संचालक से 22,50,000 रुपये के ऋण को मंजूरी दिलाने के बदले 45,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। खेल और युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। देश भर में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि आज के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
1: आज संडे ऑन साइकिल की 82वीं एडिशन है। देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े है।
0: इस दौरान खेल मंत्री ने साइकिल चलाने के 4 प्रमुख फायदे भी बताए।
1: साइकिलिंग एक छोटा प्रयास बट बहुत बड़ा परिणाम देता है। हर संडे 1 घंटे साइकिलिंग से आप स्वयं को फिट रख सकते हो, पोल्यूशन का सॉल्यूशन कर सकते हो, देश का तेल को बचा सकते हो। एक साइकिलिंग से इतना फायदा होने से और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए आज देश के लाखों युवाओं साइकिलिंग के और प्रेरित हो रहा है और साइकिलिंग कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि शहर भर के रेस्तरां, कैफे और अन्य कई स्थान कल सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला फुटबॉल प्रेमियों को बड़े मुकाबलों का आनंद लेने का मौका देगा, साथ ही शहर की जीवंत नाइट लाइफ और स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया। महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता जापान की अकाने यामागुची को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की ये जीत देश भर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और पीवी सिंधु ने देश का मान बढ़ाया है। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम साफ रहने के साथ साथ लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में 2 नई पहलें शुरू की। दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर 26 में 65 लाख रूपये की लागत से निर्मित सीवर लाइन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी और अवैध शराब तस्करी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। और नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल अभियान का 82वां संस्करण आयोजित हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्री रंजय अत्रिशे, श्रीमती रचना सिंह, श्री चंदन कुमार सिंह और श्रीमती चंद्रकांता सिवाल। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती चंद्रकांता सिवाल।

नमस्कार। आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आज के आमंत्रित कवि हैं श्री चंदन कुमार जी, जो एक मंचीय कवि है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी है। और हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं कवि रंजय अत्रिशे जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं कवित्री और लेखिका श्रीमती रचना सिंह जी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की ये काव्य गोष्ठी। और आज की ये काव्य गोष्ठी विशेष रूप से बापू स्टूडियो में आयोजित की गई है। और हम सबसे पहले बापू जी को ही नमन करते हुए उनको भाव विशेष समर्पित करते हैं। बापू गांधी आपका

0: और आज के इस काव्य गोष्ठी में मैं आमंत्रित करती हूँ चंदन कुमार जी को, जो एक कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता है। आपकी कविताएं साहित्य और समाज संवेदनाओं, राष्ट्र प्रेम और रिश्तों की भावनाओं को सहज ही उजागर करती हैं। आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा पहले अपने बारे में। करीब 30 साल पहले बिहार से दिल्ली आया था पढ़ाई के लिए, और उन्हीं संवेदनाओं को मैंने कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। उस कविता का शीर्षक है बाकी सब ले आया था। कविता कुछ ऐसे है कि माँ का आंचल वही रह गया, माँ का आंचल वही रह गया, पापा का दुलार भी समेट ना पाया था।
2: बहुत बढ़िया।
1: माँ का आंचल वही रह गया, पापा का दुलार भी समेट ना पाया था, गलियां दोस्त भी वही रह गए, लेकिन बाकी सब ले आया था।
2: क्या बात,
0: बहुत खूब बात।
1: किताबे सिताबे कपड़ा लत्ता, तीन का बक्सा पूरा भर आया था, बस मेरा लड़कपन हठपन वही रह गया, बाकी सब ले आया था।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: दादी का प्यार, बहन का मनोहार, उनके आंसुओं को तो नहीं रोक पाया था, पर आंसुओं के निशान वही छोड़कर बाकी सब ले आया था।
2: क्या बात है।
1: और सच तो ये है कि बहुत हिसाब से पैकिंग की थी
2: जी,
1: बहुत हिसाब से पैकिंग की थी, वैसे कुछ ज्यादा छूट नहीं पाया था, बस होली दिवाली वही रह गया, बाकी सब ले आया था। बाकी सब ले आया था, जब घर छोड़ दिल्ली में आया था, बाकी सब ले आया था।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
0: बहुत सुंदर। आपने अपनी बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की। चंदन कुमार जी से हम एक कविता और सुनेंगे।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रचना मैंने लिखी है, मेरी उम्र करीब 50 साल होने वाली है
2: जी।
1: और हमने ऐसा देखा है कि जो संबंधों में पति पत्नी के जो संबंध होते हैं
2: जी,
1: वो जीवन की आपाधापी में कहीं ना कहीं 40-50 आते आते एक बड़ा ही फॉर्मल सा हो जाता है। तो ये कविता उसी संदर्भ में है कि चलो इश्क दोबारा करते हैं
0: जी।
1: तो कविता का शीर्षक है इश्क दोबारा, होने दो ना, अपनी आंखों में खोने दो ना
2: जी,
1: अपनी आंखों में खोने दो ना, अपने आंचल में सोने दो ना। एक उम्र परी है अभी जीने को, अभी तो फिर 50 साल ही हुए हैं, एक उम्र परी है अभी जीने को, इश्क दोबारा होने दो ना।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: मैं देखूं तुम शर्मा जाओ,
2: क्या कहने,
1: मैं देखूं तुम शर्मा जाओ, कंधे पर जो हाथ रखूं तुम मन ही मन इतरा जाओ, मैं देखूं तुम शर्मा जाओ, कंधे पर जो हाथ रखूं तुम मन ही मन इतरा जाओ, तुम्हें छू लूं तो दिल में कुछ कुछ होने दो ना।
2: क्या बात,
1: इश्क दोबारा
0: होने दो ना,
2: होने दो।
1: घंटों करते हैं बातें फिर से, बहुत समय है अब तो, सारी जिम्मेवारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है
2: जी, जी।
1: तो घंटों करते हैं बातें फिर से, आओ गढ़ते हैं यादें फिर से, कुछ रात बिना नींद कटने दो ना, कुछ रात बिना नींद कटने दो ना, इश्क दोबारा होने दो ना। चलो भूल जाते हैं दुनिया के गम, चलो भूल जाते हैं दुनिया के गम, छोड़ो दुनियादारी क्या ज्यादा क्या कम, समझदारी का बोझ जरा हटने दो ना, समझदारी का बोझ जरा हटने दो ना, इश्क दोबारा होने दो ना। सुबह की चाय चलो साथ बनाते हैं, सुबह की चाय चलो साथ बनाते हैं, रात को टहलते हुए आइसक्रीम भी खा आते हैं
2: जी।
1: सुबह की चाय चलो साथ बना देते हैं, रात को टहलते हुए आइसक्रीम भी खा आते हैं, उन लम्हों को फिर से जीने दो ना, इश्क दोबारा होने दो ना।

0: चंदन से इश्क दोबारा होने दो ना, इश्क दोबारा होने दो।
1: बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, कमाल के,
2: बहुत सुंदर, इश्क दोबारा होने दो ना। अब मैं अगले कवि के रूप में श्री रंजय अतरीशे को आमंत्रित करती हूँ, जो दिल्ली पुलिस में ACP के पद पर कार्यरत हैं और समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इनसे कविताएं इनकी।
1: धन्यवाद चंद्रेश जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरी नज्म है, इसका उन्वान है वर्दी
2: जी। स्वागत है।
1: मेरी नज्म देश के सभी सैनिकों को समर्पित है। तो इसका आगाज करते हैं कि हमारी आन है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, अगर हम सच कहें तो सारा हिंदुस्तान है वर्दी।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: हमारी आन है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, अगर हम सच कहें तो सारा हिंदुस्तान है वर्दी। वो कसम खाई है जो हमने, करेंगे मिट के भी वो पूरी।
0: क्या बात।
1: कसम खाई है जो हमने, करेंगे मिट के भी पूरी, हमारे खुद से वादे की अमिट पहचान है वर्दी।
2: बहुत
1: शुक्रिया। हमारे खुद के वादे से अमिट पहचान है वर्दी, न देखे दिन न देखे रात, न ही धूप और बरसात।
0: बहुत सुंदर।
1: न देखे दिन न देखे रात, न ही धूप और बरसात, खड़ी हो कर्तव्य पथ पर हर जगह, यही अरमान है वर्दी।
2: बहुत सुंदर।
1: यही अरमान है वर्दी। और नजर से दुष्ट कोई बच नहीं सकता किसी सूरत, नजर से दुष्ट कोई बच नहीं सकता किसी सूरत, हमारे राष्ट्र का गौरव है निगहबान ये वर्दी।
0: वाह वाह।
1: है निगहबान ये वर्दी, और जमी से आसमानों तक रचा इतिहास है जिसने। बोल करने
0: जी जी, जी
2: बिल्कुल।
1: जमी से आसमानों तक रचा इतिहास है जिसने, वतन के जर्रे जर्रे का है गौरव गान ये वर्दी।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: है गौरव गान ये वर्दी, और मने त्योहार घर घर में रहे सद्भाव जन जन में
0: जी।
1: मने त्योहार घर घर में रहे सद्भाव जन जन में, रहे मुस्कान चेहरों पर, वही दिन मान है वर्दी।
0: बहुत बढ़िया,
2: बहुत खूब।
1: रहे मुस्कान चेहरों पर, वही दिन मान है वर्दी। वो भले अवरोध हों कितने,
0: भले अवरोध हो कितने,
1: भले अवरोध हों कितने, भले हों इम्तहां कितने।
0: बहुत अच्छा,
2: बहुत।
1: भले अवरोध हों कितने, भले हों इम्तहां कितने, इरादे से नहीं डिगती वो एक चट्टान है वर्दी।
2: शुक्रिया।
1: इरादे से नहीं डिगती वो एक चट्टान है वर्दी, और नहीं है रंग प्यारा कोई भी, नहीं है रंग प्यारा कोई भी इस रंग से हमको, नहीं है रंग प्यारा कोई भी
2: इस रंग से
1: हमको, बदन पर है सजी खाकी मेरा अभिमान है वर्दी।
0: बहुत अच्छा।
1: बदन पर है सजी खाकी मेरा अभिमान है वर्दी, और जमाने भर में केवल एक ही चाहत है बस, जमाने भर में केवल एक ही चाहत है बस, समझ लेना, समझ लेना
2: जी,
1: समझ लेना, धड़कता दिल है इसमें।
0: क्या बात है,
1: धड़कता दिल है इसमें, ये भी तो एक इंसान है वर्दी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: धड़कता दिल है इसमें, ये भी तो एक इंसान है वर्दी।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया।
1: ये मेरी नज्म है, इसका उन्वान है हम फिर मिलेंगे,
0: हम फिर मिलेंगे,
1: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। चांदनी रातों में, प्यार की बातों में, दहकती चट्टानों में, खुले आसमानों में, हम फिर मिलेंगे।
0: वाह, बहुत अच्छा।
1: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, तेरी सांसों की महकती हुई खुशबुओं में, और फुर्सत के उन्हीं लम्हों में। हम फिर मिलेंगे, तेरी सांसों की महकती हुई खुशबुओं में, और फुर्सत के खूबसूरत लम्हों में, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, बरसात की बूंदों में, बरसात की बूंदों में, पहाड़ों पे फैली हुई सूरज की किरणों में, अलसाई हुई धूप में, बादलों में, हवाओं में, खलाओं में, हम फिर मिलेंगे।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: शुक्रिया। बादलों में, हवाओं में, खलाओं में, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। दूर वो जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे।
0: वाह,
2: बहुत सुंदर
1: जी, एक साथ
0: बहुत खूब।
1: आप जहां जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहां वहां चले मेरे साथ
0: जी,
1: कि हम फिर मिलेंगे। दूर

0: जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे, छत पे, चौबारे पे और मन के द्वारे पे,
1: बहुत
0: हम
1: सुंदर,
0: फिर मिलेंगे,
1: बहुत सुंदर।
0: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे पर्वतों पे बिखरी बर्फ पर और अनंत रेगिस्तानों की गर्म रेत पर।
1: वाह
0: हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे उस जगह जहाँ वक्त ठहरा हुआ है सैकड़ों सदियों से, जहाँ कश्तियाँ बातें करती हैं मदमस्त नदियों से। हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे सच और झूठ के पर्दे से बहुत आगे।
1: वाह, बहुत सुंदर,
0: हम फिर मिलेंगे सच और झूठ के पर्दे से
1: बहुत
0: बहुत
1: आगे।
0: आगे। हम फिर मिलेंगे क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है।
2: बहुत खूब,
1: बहुत खूब,
0: हम
1: बहुत
0: फिर
1: खूब।
0: मिलेंगे क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है, और जो ना मिल पाए तो इंतजार करना मेरा।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत
0: और
2: खूब।
0: जो ना मिल पाए तो इंतजार करना मेरा, बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में,
1: वाह
0: हर अधूरी कहानी में।
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: सुंदर,
1: वाह,
0: क्या बात,
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: शुक्रिया।
1: अच्छे।
0: और जो ना मिल पाए तो इंतजार करना मेरा, बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में, हर अधूरी कहानी में। फिर तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे,
1: क्या क्या बात, क्या बात,
0: फिर तुम और मैं मिलकर
1: हम हो
0: हम हो
1: जाएंगे।
0: जाएंगे, और मिल जाएंगे हवाओं में, कंदराओं में, नाचती लहरों में, बेलोस बातों में, सुबह में, रातों में।
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: सुंदर,
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: और मिल जाएंगे हवाओं में, कंदराओं में, नाचती लहरों में, बेलोस बातों में, सुबह में, रातों में। हम फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे।
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: सुंदर,
1: बहुत सुंदर,
0: हम फिर मिलेंगे
2: और
0: और फिर
2: मिलते
0: मिलते
1: मिलते
0: रहेंगे,
1: रहेंगे।
0: बस एतबार करना मेरा, इंतजार
1: यार
0: करना,
1: करना, वाह वाह
0: हम
1: वाह
0: फिर
1: वाह,
0: मिलेंगे। आप दोहे सुनाता हूँ मैं आपको।
2: जी, स्वागत है।
0: हजारों ख्वाब हैं और हैं ख्वाहिशें हजार, हजारों ख्वाब हैं और हैं ख्वाहिशें हजार, है छोटी सी जिंदगी और छोटा सा घर द्वार।
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छे,
1: खूब,
0: है छोटी सी जिंदगी, छोटा सा घर
1: घर
0: द्वार,
1: द्वार।
0: और बात बात में हो गया जीवन से संवाद। बात बात में हो गया
1: जीवन से
0: जीवन से संवाद, तुम हमसे जो आ मिले फिर कैसा अवसाद।
1: क्या बात है,
0: तुम हमसे जो आ मिले फिर कैसा अवसाद, और तेरे मेरे बीच में है कितना विस्तार, तेरे मेरे बीच में है कितना विस्तार, दिल से दिल को रोशनी फिर काहे बेजार, फिर काहे। वो कोरे कागज पर लिखी कोमल मन की पीर, कोरे कागज पर लिखी
1: कोमल
0: कोमल मन
1: मन
0: की
1: की
0: पीर,
1: पीर।
0: याद करूं जब भी तुझे नैनन बरसे नीर।
1: हाँ हाँ बहुत
2: बहुत
1: अच्छा।
2: सुंदर।
0: वो जग के पालनहार हैं सबके राजा राम,
1: जग के
0: जग
1: पालनहार,
0: के पालनहार हैं सबके राजा राम, उनको है अभिमान कब करते सबके काम,
1: वाह वाह।
0: उनको है अभिमान कब करते सबके काम। ओ हम दोनों के बीच में वो बातों बातों में हुआ प्यारा सा आभास, बातों बातों में हुआ प्यारा सा आभास, पाया है मैंने तुम्हें आया है उल्लास।
1: क्या बात है,
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: और कहने को लाखों मगर ज्ञानी वही विशेष,
1: कहने को लाखों मगर
0: कहने को लाखों मगर ज्ञानी वही विशेष,
1: विशेष,
0: रंजे जिसमें ज्ञान की रहे पिपासा शेष।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छा,
0: सुंदर, रंजे जिसमें ज्ञान की रहे पिपासा शेष।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर,
0: धन्यवाद,
2: बहुत
1: बहुत सुंदर,
2: सुंदर,
1: बहुत
2: बहुत
1: शुक्रिया,
2: सुंदर,
1: खूब
2: खूब,
1: खूब।
2: बहुत बढ़िया। अभी हम रंजय अतरिशय की कविताओं से रूबरू हो रहे थे, और अब हम आमंत्रित करते हैं रचना पथिक जी को, जो एक व्यंग्यकार समीक्षक है। आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ,
2: जी, स्वागत है।
3: सुनिएगा। धन्यवाद।

जल्दी ये बैरी जाने की बेला पहुंची, कितनी जल्दी।

0: तुमसे छुप कर दृश्य
1: जी
0: सभी रो आए हैं ये
1: क्या
0: लगता
1: बात, बहुत बढ़िया,
0: है।
1: क्या बात
0: बहुत
1: है,
0: बहुत
1: बहुत खूब।
0: शुक्रिया, बहुत सुंदर।

पर रीत पगे पन्ने दोनों रोज

0: चाहे दिल का लगाना ठीक नहीं,
1: दिल का लगाना ठीक नहीं,
0: रहे जमाना चाहे दिल का लगाना ठीक नहीं। सुनिएगा
1: जी जी।

0: हाँ पल पल बीज प्रतीक्षा का
1: जी
0: बोआए
1: हैं। बहुत बढ़िया,
2: ओह बहुत अच्छा, बहुत
0: बढ़िया। तुमको पाकर हम
1: जी
0: खुद को, धन्यवाद,
1: बहुत
2: बहुत अच्छा,
1: बहुत बहुत।
0: एक गीत से जोड़ती हूँ, यूँ तो मैं सुनाती हूँ, ऐसे गाकर ही सुनाती हूँ, लेकिन अभी मैं
3: स्वागत।
0: अब तो लगता है पता जैसे हमारा खो गया है, अब तो लगता है पता जैसे
2: हमारा
0: खो गया है, दिल तुम्हारा और तुम्हारा बस
1: तुम्हारा हो गया।
2: क्या
3: बात सुंदर।
0: हार कर आना लगा है जीत सा, हार कर आना लगा है जीत,
1: जीत
0: सा,
3: क्या बात।
0: प्राण में झंकृत हुआ संगीत सा,
3: बहुत
0: आपको तो शौक गीतों का रहा, हम भी देखो कह रहे कुछ प्रीत सा, रेत में जैसे हरी सी दूब कोई बो गया है, रेत में जैसे हरी सी दूब कोई
1: बो
0: गया है, दिल तुम्हारा और तुम्हारा
3: हो गया,
0: बस तुम्हारा हो,
2: बहुत बढ़िया,
3: बहुत खूब,
1: बहुत खूब।
0: दीप का भी आज उद्दीपन प्रबल, ज्योति की रेखा अमावस पर सबल, चांद तारे सब हमारी गोद में, प्रेम की तप भूमि है मन आजकल, साधना से सिद्धि पाकर एक योगी सो गया है, दिल तुम्हारा और तुम्हारा बस
1: तुम्हारा,
0: तुम्हारा
2: हो गया, बहुत अच्छा।
0: मौन से है मौन का अनुबंध अब,
1: क्या बात है,
0: बाँचते नैना मृदुल संबंध, रेख अपने भाग्य की अब मिल गई, हो गई ध्वनि धड़कनों की छंद, मुख तुम्हारा आजकल प्रतिबिंब मेरा हो गया है, दिल तुम्हारा।

0: और तुम्हारा, बस
1: तुम्हारा हो
0: तुम्हारा,
1: गया,
0: हो गया,
2: बहुत अच्छे, बहुत
0: बस
2: बढ़िया,
0: तुम्हारा हो गया,
1: बहुत
2: बहुत
1: बढ़िया,
2: अच्छे,
1: बहुत
2: बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद।
1: अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकांता सिवाल, चंद्रेश जी को। आप कवित्री हैं, अभिनेत्री हैं, चंद्रेश जी आपका स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रंजय अतरिषे जी, आज की ये काव्य गोष्ठी प्रेम को समर्पित विशेष, और उसी माँ को याद करते हुए मेरे भाव विशेष।
1: स्वागत है।
0: माँ

बहुत बहुत शुक्रिया जूही चंपासी जुमे की फुलवारी। और माँ हमारे जीवन को कैसे जोड़ती है, संवारती है।

0: और एक मुक्तक प्रेम विशेष
1: स्वागत।
0: प्रेम की अविरल बहेगी धार जब, प्रेम की अविरल बहेगी धार जब, खिल खिलाएगा सकल संसार
1: बहुत
0: जब।
1: बढ़िया।
0: प्रेम की अविरल बहेगी धार जब, खिल खिलाएगा सकल संसार जब, तब किसी मन में ना होगी कामना, तब किसी मन में ना होगी कामना, सत्य से हो जाओगे दो चार जब,
1: क्या बात,
0: सत्य से हो जाओगे दो चार जब। और एक गजल, फिर किस में है कितनी कमी देखिए,
1: जी
0: फिर किस में है कितनी

0: सुंदर।
1: औषे देखिएगा, चुप हो क्यों कुछ ही कहो, बोलते क्यों
0: बोलते क्यों नहीं।
1: नहीं, चुप हो क्यों कुछ ही कहो, बोलते क्यों।

0: और शेर पेशे खिदमत है, भीगी पलकों पे मत जाइए मेहरबान, भीगी
1: बहुत सुंदर।
0: पलकों

0: बहुत बढ़िया,
1: देखिए,
0: बहुत बढ़िया।
1: और माँ को ही समर्पित मेरे भाव विशेष, मेरी किताब माँ फूलों में
0: जी
1: जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, मैं उसी से माँ को समर्पित आज आकाशवाणी के माध्यम से ये अपने भाव विशेष समर्पित करती हूँ। माँ मेरी महतारी है, माँ मेरी
0: महतारी।
1: महतारी है, मुझको बेहद प्यारी है। माँ मेरी महतारी है, मुझको बेहद प्यारी है, देख देख के दम भरती, देख देख के दम भरती, सुंदर मुख बलिहारी है,
0: बहुत बढ़िया।
1: देख देख के दम भरती, सुंदर मुख बलिहारी है, क्या बताऊं उसकी बातें,
0: क्या बताऊँ उसकी
1: क्या
0: बातें।
1: बताऊं उसकी बातें, हर एक बात ही न्यारी है,
0: बहुत अच्छा।
1: क्या बताऊं उसकी बातें, हर एक बात ही न्यारी है, जान लेती वो कोसों से, जान लेती वो कोसों से, मुझ पे विपदा भारी है, और माँ की ममता छाँव घनी, माँ की ममता छाँव घनी, तन मन मुझ पे वारी है, माँ
0: जी
1: की ममता छाँव घनी, तन मन मुझ पे वारी है, और दोनों आलम में चंद्रेश,
0: क्या बात है,
1: दोनों आलम में
0: मैच है।
1: चंद्रेश, माँ ही दौलत प्यारी है,
0: बहुत बढ़िया,
1: माँ ही दौलत
0: बहुत
1: प्यारी
0: क्या
1: है,
0: बात है, क्या बात है,
1: माँ
0: बहुत
1: मेरी
0: सुंदर
1: महतारी है, मुझको बेहद
0: प्यारी
1: प्यारी
0: है,
1: है।
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर,
1: सुंदर,
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर।
1: सुंदर। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्री रंजय अत्रेशय, श्रीमती रचना सिंह, श्री चंदन कुमार सिंह और श्रीमती चंद्रकांता सिवाल। कवि गोष्ठी का संचालन कर रही थी श्रीमती चंद्रकांता सिवाल। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मेणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओ लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आपकी परछाइयाँ, इस फिल्म से लिया हुआ गीत। आवाज़ थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, और इस गीत को संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। श्रोताओं, बिल्कुल सही बात इस गीत में लिखी गई है, कही गई है कि आप भी अपनी ज़िंदगी को अपने ही अंदाज़ में जिएं। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह की बातें बनाएंगे, इस बात में बिल्कुल भी ना उलझें। अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज के साथ जिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं आसमां फिल्म से लिया गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना देवोजित और महालक्ष्मी की आवाज़ में ये गीत। चलिए श्रोताओं, चलते हैं। राहें खुद बन जाएंगी, चलना शुरू तो कीजिए। और राहें जब मिलेंगी तो धूप भी होगी और छांव भी, यानी जो अनुभव इन रास्तों पर मिलेंगे वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। लेकिन अनुभव जैसे भी हों, हमें परिपक्व बनाते हैं। तो आइए चलते हैं अनुभव की इन राहों पर, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, सिर उठा के चलना है और ऊंचे आसमान की तरह सपनों को भी ऊंचाइयां देना है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आप

0: तो श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है ना कि मन करता है कि एक बार हम अपनी जिंदगी का रीस्टार्ट बटन दबाएं और फिर एक बार जीरो से शुरुआत कर दें। चलिए फिर जीरो पर चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चलते चलते जब हम अपनी मंजिल को पा जाते हैं, अपने उद्देश्यों को पा लेते हैं, तो फिर मन करता है उसी दुनिया में लौट जाने का जो हमें मस्ती से भर देती है, वो यारों की यारी, वो दोस्तों की दोस्ती। और श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में

0: 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility. But in our house, it has become regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है।

0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के

0: सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods

0: 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जानें चली गईं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान के पासदारा ने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी ओडीआई में मेजबान इंग्लैंड ने भारत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मानसून इजलास कल से शुरू हो जाएगा जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे जिन पर बहस मुबहसा होगा। मानसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवू श्रीकृष्ण देवरायलु, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात चुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामाधिकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बायकॉट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने ओपोजिशन पार्टियों की इस कुल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी बीएसी की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहस व मुबाहिसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र नई दिल्ली ज़िले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफ़ा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी जिससे

पर करीबी नजर रख रहे हैं और उनका इलाज मुआवजा उनकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। अदालत वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमू की एक दरखास्त की समाहत कर रही थी जिसमें उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। अमरीकी फौज ने आज ईरान पर फजाई हमले किए जिनमें ईरान के नीम फौजी दस्ते सिपाहे पासदारन इनकलाब IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि यह कार्रवाई उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमलों में ईरान की साहिली निगरानी, फजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि पहली मरतबा उसकी कार्रवाई का खसूसी निशाना IRGC थी जो ईरान के मजहबी निज़ाम में एक ताकतवर इदारा है और मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल रखती है। ईरान ने अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। अमरीकी फौज मुहिम अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भारत की सरकर्दा खातून बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय के तौर पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन की तारीख में ये कामयाबी एक अहम संग मील है। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने सिंधु की इस हसूलियाबी को तारीखी करार दिया है और कहा है कि इस कामयाबी से कौम को फख्र हासिल हुआ है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने पर PV सिंधु को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस कामयाबी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक तारीख साज कारनामा करार दिया। वजीर अजम ने कहा कि सिंधु ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अजम और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और उनकी ये कामयाबी निहायत अहम है। फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज रात अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा जिसमें दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में अर्जेंटीना का शुमार कामयाब तरीन टीमों में होता है जो 3 मरतबा आलमी खिताब जीत चुका है। लियोनेल मेसी की क्यादत में अर्जेंटीना की टीम ब्राज़ील के बाद पहली ऐसी टीम बनने की कोशिश करेगी जिसने मुसलसल 2री मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है। ब्राज़ील ने 1958 और 1962 में लगातार 2 मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद 2री मरतबा आलमी खिताब जीतने के अज़म के साथ मैदान में उतरेगी। मर्दों की क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में खेले जाने वाले 3 एक रोज़ा बैन अलावा मैचों की सीरीज़ के 3रे फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 20 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के 109 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल जो कल से शुरू हो रहा है कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुशउसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज उड़ीसा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफ़र को फ़रोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से ज़मीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जानें चली गईं। अमरीकी फ़ौज ने उर्दुन में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान की पासदारन इनकलाब फ़ौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं।

0: الخليجية في الآونة الأخيرة في حين كثفت الولايات المتحدة حملة القصف التي تستهدف إيران بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. في إقليم جامو وكشمير لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم وفقد 7 آخرون جراء انهارات نردية وفيضانات مفاجئة نجمت عن أمطار غزيرة حطلت في وقت مبكر من صباح اليوم على منطقة راجوري وبونش الحدوديتين. من جانبه أفاد مراسل وكاشفاني بأن منظمة سوران كوت في مقاطعة بونش شهدت أسوأ الأضرار مع تسجيلها معظم الوفيات. في غويانا انقلبت عبارة تقل 116 راكبا وأفراد الطاقم بالقرب من نهر بوميرون. من جهتها ذكرت السلطات أنه تم إنقاذ 67 شخصا بينهم 15 طفلا، في حين صرح رئيس وزراء غويانا السيد مارك فيليبس بأن العبارة كانت في رحلة من العاصمة جورج تاون عبر ساحل شمال المحيط الأطلسي متجهة إلى ميناء كايتوما. تعرضت ناقلة ترفع علامة تنزانية للاكتتاف على يد قراصنة صوماليين مشتبه بهم قبالة السواحل اليمنية.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और

खूबसूरत गीत और सत्य पर आधारित। जी हाँ, जब हम नहीं होंगे तो हम क्या होंगे, ये इस गीत में बयां था। और कौन हमारे चाहने वाले होंगे। खैर, अगली गीत की ओर बढ़ते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जीवन मृत्यु फिल्म से आ रहा है ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के।

सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीत। आइए चलते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ की तरफ।

मुकेश की आवाज़ में फिल्म पूरब और पश्चिम से आप सुन रहे थे ये गीत। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से पिरोया था। अगले गीत की तरफ रुख करते हैं और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, बोल राजेंद्र कृष्ण की हैं, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। आइए सुनते हैं फिल्म धरती से ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम में ये बेहद खूबसूरत नगमे। अगला गीत लता मंगेशकर व अन्य आवाज़ों में फिल्म मुगले आजम से।

भी आपने सुना चौधरी का चांद, फिल्म का टाइटल ट्रैक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, बोल थे शकील बदायूं के और संगीत दिया था रवि ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ही स्वर में सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है आराधना, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत बद किया था एस डी बर्मन ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने वाले हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म गाइड से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष की बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर निकासी और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए वे तैयार हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क

0: odds in London. England had set a target of 388 runs for India in the third ODI. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 750 overs. Opting to bat first, England scored 387 runs for the loss of 3 wickets in the allocated 50 overs. PM Modi has congratulated the Indian team for securing 4 gold medals at the 58th International Chemistry Olympiad. In a social media post, Mr. Modi said that this was India's best ever performance at the prestigious global competition. Mr. Modi also congratulated all 4 members of the Indian team for winning medals, including 1 gold at the 37th International Biology Olympiad held in Vilnius, Lithuania. And that is the end. That is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 2:10। अब समय है उस कार्यक्रम का, जी हाँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी गीत बहार का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। और हमेशा की तरह गीतों की जो फेहरिस्त है वो तैयार है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति। चलते हैं इन गीतों के सफर पर और आनंद लेते हैं बैक टू बैक गीतों का

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: इसी गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक यहीं अब समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का भी उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर है। जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुयाना के सरकार की ओर से बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने बताया कि एमवी बारिमा नौका राजधानी जॉर्ज टाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के किनारे पोर्ट कैटुमा की ओर जा रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
3: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. Recalling the rich contribution of Bengal to the nation in every way, including independence movement, religion, literature, Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the then government of West Bengal has ruined the legacy of the Bengal. He stressed that Bharatiya Janata Party will make Bengal great again. Amit Shah yesterday laid the foundation stone virtually of Amul Bengal Dairy's curd-making facility at Sankrail in Howrah district in West Bengal from the Biswas Bangla Convention Center in Kolkata. This is the world's largest curd-making facility. Amit Shah said by buying cooperative products, the people could contribute towards farmers' empowerment. Besides, Amit Shah distributed certificates to various cooperators in West Bengal and virtually laid the foundation stone of 14 godowns of total 1,400 metric tons capacity in 9 districts and inaugurated 2 godowns of 100 metric tons capacity each in Cooch Bihar and South 24 Parganas districts under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY. A cooperative portal WBERCS has also been initiated by the cooperative minister. India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu Kashmir and Uttarakhand today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha and parts of Northeast India during the next 2 days. For Delhi, IMD has forecast a generally cloudy sky today. In men's cricket, England beat India by 27 runs in the third ODI and sealed a 2-1 series win at Lord's in London. England had set a target of 388 runs for India in the third ODI. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Opting to bat first, England scored 387 runs for the loss of 3 wickets in the allotted 50 overs. PM Modi has congratulated the Indian team for securing 4 gold medals at the 58th International Chemistry Olympiad. In a social media post, Mr. Modi

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 4:19:35। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए चरण्या लक्ष्मी कुमारन ये प्रस्तुति।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने चरण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में। पांच बजकर बीस मिनट पर आप आनंद ले सकते हैं देशभक्ति गीत का, जबकि पांच बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप दिनकर शर्मा के बजाय हारमोनियम पर राग नट भैरव का आनंद ले सकते हैं।

सुबह 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचार साझा किए। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही ऐसी कोई अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया है। ये जब्ती पिछले 3 सप्ताह में कोयला क्षेत्रों में CISF के गहन अभियानों के दौरान हुई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों तेज बारिश का अनुमान है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टेरोस ने विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब जीता है। और इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। लंदन के लॉर्ड्स में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 388 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारी

आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं। घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतु